0: अब आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है भाई, अभी तक तो हम एक फ़ोटो एक कैप्शन या कई सारी फ़ोटोज़ और एक कैप्शन था, बट ऐसा पॉसिबल होने वाला है क्योंकि इंस्टाग्राम ने फीचर दे दिया है कि अगर 10 फोटो सो 10 कैप्शंस।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.

जी हाँ, इंस्टाग्राम का नया फीचर आया है कि 10 फोटो और 10 कैप्शंस। अभी तक मल्टीपल फोटोज होती थी बट कैप्शन सिर्फ एक होता था, बट अभी इंस्टाग्राम ने ये नया फीचर ऐड किया है। सो क्या है, आइए बताते हैं। दरअसल इंस्टाग्राम ने अपने यूज़र्स के लिए एक नया और बहुत इस्तेमाल करने वाला फीचर जारी किया है। सो कंपनी ने कैजुअल पोस्ट के ज़रिए मल्टीपल कैप्शन फीचर रोल आउट किया है, जिसे अब एक ही पोस्ट में मौजूद हर फोटोज़ और वीडियो के साथ साथ अलग अलग कैप्शन से जोड़ा जा सकेगा। सो पहले पूरे कैरोसेल पोस्ट के लिए सिर्फ एक कैप्शन लिखने का विकल्प मिलता था, बट अभी नए अपडेट के बाद कंटेंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाना और पेश करना आसान हो गया है। सो भैया, उनके लिए जो कहते थे अलग अलग फ़ोटो का हमारे मायने अलग अलग है, लेकिन अब कैप्शन तो एक ही है तो क्या दिया जाए। एंड लिटरली मतलब मैं भी जब डालता था कई सारी मल्टीपल फ़ोटोज़ तो उसको कंसोलिडेट करना पड़ता था कि इसका क्या एक ऐसा नाम दिया जाए जो सब पे फिट बैठ जाए, जो सारे फ़ोटोज़ के लिए ये एक कॉमन कैप्शन बन जाए। सो कॉमन कैप्शन बनाना थोड़ा सा सोचने वाला काम रहा करता था। अभी क्या है कि जैसी फ़ोटो या जैसी थीम होगी उसके अकॉर्डिंगली आप कैप्शन दे देंगे, एंड अगली नेक्स्ट फ़ोटो जो होगी उसके अकॉर्डिंगली आप उसका कैप्शन दे देंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी इजी हो गया, और जब से ये नया फीचर रोल आउट किया गया है उसके बाद से ये माना जा रहा है कि भाई अब थोड़ा सा आसानी और बढ़ जाएगी इंस्टाग्राम यूज़र्स के लिए, और स्पेशली उनकी ये प्रॉब्लम थोड़ी सी दूर होगी जिसमें वो सोचा करते थे कि भाई मल्टीपल फ़ोटोज़ के लिए सिंगल कैप्शन आखिर क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आ गया है आपका अपना इंस्टाग्राम। सो इंस्टाग्राम के इस नए फीचर को हमने आपको बताया। आई होप कि भाई आपको ये काफ़ी ज़्यादा काम का लगा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम का रहता है। सो चलिए, फ़िलहाल वक्त हो गया है अगले म्यूज़िकल ब्रेक से आपको जोड़ने का, यानी अगला ज़बरदस्त सॉन्ग सुनाने का। सो लेट्स गो ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: मजा कर ले, लेकिन बस टीवी चालू मत करना।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉ का जो नाना आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda with your favorite RJ Khan.

उन सलाखों के पीछे कोई जादूगर तो नहीं था, लेकिन उसकी कहानियों ने काम कुछ वैसा ही किया। बिल्कुल सही सुना आपने, कहानियां सिर्फ अच्छी नींद का दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि कई बार इवन जीने की भी वजह बन जाती है। सो ये कहानी एक ऐसे यूक्रेनी सैनिक की है जिन्होंने साथी कैदियों को हैरी पॉटर की कहानी सुनाकर कैद में टूटने से बचाया। 1495 दिनों तक ओलेक्सांद इवानोव की दुनिया कंक्रीट के एक छोटे से कमरे में सिमट गई। यूक्रेन के इस मरीन सैनिक को 2022 में मारियोपोल की लड़ाई के दौरान बंदी बना लिया गया था, जिसके बाद रूस की एक सीलन भरी काली कोठरी में रखा गया, जहां बाहर की दुनिया से उसका हर रिश्ता टूट चुका था। सो इवानोव को तो ये अभी तक पता भी नहीं चल पा रहा था कि उनका देश अब भी मैदान में बना हुआ है या नहीं। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि उनकी पत्नी और बेटा जिंदा है या नहीं। लेकिन उन अंधेरों निराशा से भरे दिनों में ओलेक्सांद को एक ऐसी चीज़ मिली जिसने उनके अंदर की उम्मीद को मरने नहीं दिया। एक दिन उन्होंने अपने साथियों से कहा कि ये हैरी पॉटर के फ़ैन हैं। फिर उन सब ने मिलकर तय किया कि हैरी पॉटर की सातों किताबों को जितनी कहानी उन्हें याद है वो उसे अपने साथियों को सुनाएंगे, कोशिश करेंगे कि वो बिल्कुल सटीक हो। हर दिन 6 से 7 घंटे तक जेल में वो खामोश कोठरी में एक अलग ही दुनिया बन जाती थी। ओलेक्सांद फुसफुसाते हुए हैरी पॉटर की कहानियाँ सुनाते और रोमांचक मोड़ पर कहानी को रोक देते, ताकि अगले दिन के लिए कैदियों में उत्सुकता बनी रहे। सो बचपन से ही हैरी पॉटर से प्यार था इनको। जी हाँ, जेके रोलिंग की हैरी पॉटर सीरीज ओलेक्सांद की ज़िंदगी में 2005 में आई। जब वो 7 साल के थे तो इन्होंने एक टीवी क्विज शो में हिस्सा लिया और यूं हैरी पॉटर को अपना टॉपिक चुन लिया। वैसे तो पहले ही राउंड में बाहर हो गए थे, लेकिन इसके बाद वो किताबों की उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। सर, जब ओलेक्सांद हैरी पॉटर की कहानी सुनाते थे, दिन के उन घंटों के लिए कैदी अपनी तकलीफ भूल जाया करते थे। उन्हें लगता था मानो वो जेल की कोठरी में नहीं बल्कि हॉगवर्ट्स की गलियों में हैं। सो ओलेक्सांद के हाथ पैर पर बने हैरी पॉटर वाले टैटू देखकर कुछ गार्ड्स भी उनके प्रति थोड़ा नरम हो गए थे। सो मई में कैदियों की अदला बदली के तहत ओलेक्सांद को रिहा किया गया। कैद में लगभग 4 साल बिताने के बाद उनके लिए सिर्फ आज़ादी नहीं थी, ये उनके अपनों के पास लौटने का सफ़र था। रिहाई के बाद उन्हें दुनिया से संदेश मिल रहे, लोग उन्हें हैरी पॉटर से जुड़ी यादगार चीज़ें भेज रहे हैं। ओलेक्सांद कहते हैं, ये मेरे लिए क्या मायने रखता है इसे मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। सो कई बार ऐसा होता है ना कि कहानियाँ सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं करती बल्कि जीने की वजह भी बन जाती है। कई सारी ऐसी स्टोरी, कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स आपको याद ही होंगे जिन्होंने आपको ज़िंदगी में कुछ नई जगहों पे ले जाने के लिए इंस्पायर किया होगा, कुछ नया करने के लिए, या यूँ कहें कि टूटती हुई उम्मीदों को बचा लिया होगा, मुट्ठी भर उम्मीद जिंदा रखा होगा उन कैरेक्टर्स ने आपकी लाइफ की। रही ओलेक्सांद की कहानी है जो कि हैरी पॉटर की इंस्पायरिंग स्टोरी इनको इंस्पायर करती है। वो 4 साल जब कैद में थे तो अपने कैदियों के साथियों के साथ हैरी पॉटर की स्टोरी सुनाया करते थे और इस तरह से लोग अपने गम, अपनी तकलीफ़ें भूल जाया करते थे। इसीलिए कहते हैं कि कहानियाँ कई बार सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि ज़िंदगी में भी आपको एक नयापन दे देती है। हमारे ख्याल से ऐसे कुछ कैरेक्टर्स आपकी लाइफ में भी होंगे, कुछ कहानियाँ आपकी भी होंगी जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती होगी और जीने के लिए थोड़ा सा और उम्मीद देती होंगी, है ना।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में, क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
1: अरे सुना?
0: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
0: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हाँ जी, तो भाई नहीं, गानों के बीच में आपको बता दे कि आ चुके हैं आपके भेजे गए कंटेंट्स, और हम बस इसी म्यूजिकल ब्रेक के उस पार जैसे ही वापस आएंगे आपके इन कंटेंट्स को लेने वाले हैं। सो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये आपके ही तरफ से आते हैं हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के मैसेंजर्स पर। सो फिलहाल आज किसने और क्या कुछ लिखा है, अपने जज्बात हम पहुँचाएंगे आप तक।

0: हाँ जी, तो भाई आपके बहुत सारे मैसेजेस भी हैं और साथ ही साथ कंटेंट्स भी आ गए हैं, तो चलिए चलते हैं आपके मैसेजेस पढ़ते हुए आप ही के भेजे गए कंटेंट्स की तरफ, क्योंकि आप हमें फेसबुक पर ADNAN AHMAD के नाम से सर्च करके और फेसबुक मैसेंजर पर भेजते हैं, जबकि हम आपको मिलते हैं इंस्टाग्राम पर smallrj_ यानी कि नीचे वाला डैश ADNAN RJ Adnan इस नाम से मिलते हैं, और वहाँ भी आप हमको डायरेक्ट अपने कंटेंट्स सेंड कर सकते हैं। फिलहाल किन लोगों ने क्या किया है ये तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैसेजेस।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan.

लवली का है। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। प्रीति जी बहराइच से बोलती हैं। सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग। हाँ, टेक्निकल इशू हुआ था और टेक्निकल इशू में इंटरनेट का नेटवर्क बिल्कुल नहीं था, इस वजह से एप्लीकेशन पर उतनी देर का ट्रांसमिशन नहीं जा पाया। एंड सविता दुबे जी ने भी सेम वही कहा कि मोबाइल पर नहीं बज रहा है। सुप्रभात, सुप्रभात आपको भी। जी हाँ, वही सेम प्रॉब्लम थी। शिल्पी बैनर्जी जी हैं, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। लवली ने बोला अदनान सर गुड मॉर्निंग, हैप्पी डे आपको। थैंक यू सो मच लवली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशु जी लखनऊ से लिखती हैं, आपकी नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए, दुखों की सारी बातें आपकी पुरानी हो जाए, चेहरे पर हो इतनी मुस्कान आपके कि मुस्कान भी आपकी दीवानी हो जाए। क्या बात है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। मुकेश यादव हैं गोंडा से, गुड मॉर्निंग सर जी, दिल से गुड मॉर्निंग टू यू मुकेश। सबलू सावंत हैं सांता क्रूज मुंबई से, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। एंड सभी का स्वागत करते हैं जो फ्रिक्वेंसी से रेडियो गार्डन से और साथ ही साथ सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट। आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग शो का अर्जुन नान। और कल चूंकि पितृ दिवस था यानी फादर्स डे, जिस पर भेजा है हमारी प्रीति जी ने बहराइच से कि पिता एक मजबूत स्तंभ, ये उनवान है। लिखती हैं कि पिता होते अपने बच्चों के लिए एक मजबूत स्तंभ, वैसे तो माँ बाप के बिना अधूरी है उनके बच्चों की ज़िंदगी, इसलिए बच्चों के लिए दोनों पहियों का होना है ज़िंदगी में ज़रूरी। ऊंची ऊंची उड़ान भरने का सदा हौसला बढ़ाते मेरे पिता, अक्सर कहते वो अत्यधिक परिश्रम करो कि सफलता तुम्हारा कदम चूमे। पापा स्वयं करते अथक परिश्रम और कहते हम भाई बहनों से कि तुम सब परिश्रमी बाप के बच्चे हो, इसलिए कभी ना घबराना परिश्रम से। अथक परिश्रम का मार्ग जब अपनाओगे तो खुद ब खुद अपनी मंजिल स्वयं बनाओगे। अभी भी पापा की प्यारी हैं हम बेटियाँ, बट पापा हैं हमारे बड़े ही कड़क मिजाज, फिर भी हम भाई बहनों के लिए पापा ही हैं दोनों माँ बाप। क्या बात है, बहुत सच्चाई के साथ, चूँकि फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है। और उसके बाद आपने बयां किया इन बातों को, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। थैंक यू सो मच टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल और भी कॉन्टेंट्स आ चुके हैं और देखते हैं क्या कुछ लिखा है आप सभी लोगों ने आज के स्पेशल एपिसोड को लेकर के। अधूरी ही ठीक लगती है, कुंदन राज दत्त और निश्चल जी फ्रॉम बिहार भेजते हैं। मोहब्बत अधूरी ही ठीक लगती है, मुकम्मल हो जाने पर मोहब्बत कहाँ रहती है। वो जो एक अधूरापन है दरमियाँ, वही जो जिंदा रखती है दास्तां। जो मिल गए तुम और हम मुकम्मल होकर, तो ढल जाएगी इस इश्क की जवां सुबह शाम। पा लेने की चाह में जो तड़प है बाकी, उसी तड़प से तो सांसें चलती है। मिल जाने पर तो बस खामोशी छा जाती है, फिर वो बेचैन कर देने वाली चाहत कहाँ रहती है। ख्वाबों में तेरा आना और आकर चले जाना, वो एक पल की मुलाकात के लिए हफ्तों तरसना। अगर रोज़ का मिलना मुकम्मल हो जाए, तो उस एक पल के दीदार की शिद्दत कहाँ रहती है। फासले ही तो इस आग को हवा देते हैं, दूर रहकर भी हम एक दूसरे को दुआ करते हैं। पास आकर जब आदत बन जाते हैं लोग, तो वो इबादत जैसे पाकीज़ा उल्फत कहाँ रहती है। वो ख़त में छिपे लफ्ज़ों का इंतज़ार करना, तेरी आवाज़ सुनने को हर लम्हा बेकरार रहना। जब हर वक्त तो तुम ही पास रहोगे मेरे, तो मिलने की वो बेहिसाब फुर्सत कहाँ रहती है। अधूरे पन्नों पर ही तो सबसे हसीन नज़्म लिखी जाती है, अधूरी गुफ्तगू ही तो उम्र भर जहन में दोहराई जाती है। जो मुकम्मल हो जाए किताब ज़िंदगी की, तो फिर उसे दोबारा पढ़ने की हसरत कहाँ रहती है। कच्ची उम्र का वो एक अधूरा सा वादा, जिसमें चाहत कम न थी पर दर्द था ज़्यादा। वही दर्द तो शायर बनाता है ज़माने को, वरना सुकून में तो शायरी की लज्जत कहाँ रहती है। हासिल हो जाने पर हर चीज़ आम हो जाती है, इश्क की वो शाही सल्तनत ग़ुलाम हो जाती है। ताजगी जो रहती है महज एक अनकहे एहसास में, वो रस्मों के बाज़ारों में फिर बिका करती है। चलो अच्छा है कि हम पूरे ना हो सके, एक दूसरे के होकर भी पूरी तरह खो ना सके। ये जो अधूरी कसक हमारी दौलत है, वरना मुकम्मल होने पर इश्क में ये बरकत कहाँ रहती है। मोहब्बत अधूरी ही ठीक लगती है, मुकम्मल हो जाने पर मोहब्बत कहाँ रहती है। क्या बात है, क्या बात है, कितनी खूबसूरती से ना मिल पाने को भी आपने बयां किया है, बहुत उम्दा। मिस्टर आकाश नवदीप वेस्ट बंगाल से लिखते हैं,
गर्मी का आलम है, दिल तो पसीने में भीग गया। अर्ज है, गर्मी का आलम है, दिल तो पसीने में ही भीग गया। न नींद है आँखों में, स्वाद तो भाई साहब कप का ज़ुबान से फिसल गया। और रातें भी तपती है, दिन जैसे आग उगलते हैं। कि रातें भी तपती है, दिन तो जैसे आग उगलते हैं। इस मौसम में एक पंखा ही है जो बेवफाई किए बिना दिल का हाल समझ गया। वाह, क्या बात है। वर्षा कुमारी पायल जी लिखती हैं कि हमने भीड़ में रहकर तन्हाई सीखी है, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे सच्चाई सीखी है। अब किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि उम्मीदों से ही सबसे गहरी जुदाई सीखी है। हमने हर दर्द को चुपचाप छिपाया सीखा है, अपनी आँखों को हर रोज़ मनाना सीखा है। अब किसी से अपने हाल की बात नहीं करते, क्योंकि अपनों से ही खुद को भुलाना सीखा है। नरेंद्र छाऊ जी लिखते हैं, खुद से बेखबर हूँ, आती है तेरी खुशबू लिबास रूह से। सड़क से गुजरते हैं लोग, कहने लगते हैं पागल तेरे दिल दिलाने को। इस तरह कैसे छोड़ दूँ तेरे शहर की गली तमाम, कर्ज बाकी रह न जाए दीवानगी वाला प्यार का। लहू से सींचे हैं वो दरख्त तमाम, जिनके बारे में गुजरी थी कई शाम। कमीज़ भी होके चीथड़े चीथड़े साथ भी अब छोड़ने लगा है। तुम तो सिमट जाती थी बाहों में मेरी, मिलते हुए आँखों से आँख मेरी। छोड़ कर जाते ही तेरे दरवाजे खुलते नहीं थी फिरदौस के अब मेरे लिए। क्या बात है, बहुत खूब। यामिनी चौहान जी लिखती हैं, हर घाव शोर नहीं करता, कुछ दर्द खामोशियों में सांस लेते हैं। लबों पर मुस्कान सजाए रखते हैं लोग, और भीतर अनगिनत मातम पालते हैं। जो कह नहीं पाते अपना दर्द किसी से, वो रातों को चांद से बातें करते हैं। दुनिया समझती है सब ठीक है उनके साथ, मगर कुछ लोग खामोशी में ही बिखरते और संभलते हैं। जो मुस्कुराते दिखते हैं हर महफिल में, अक्सर वही तन्हाइयों में सबसे ज़्यादा रोते हैं। क्या बात है, बहुत फैक्चुअल बात है। थैंक यू सो मच टू यू। इसके बाद हमारी गुंजन जौहरी जी की तरफ से भी आया है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। अलमारी के कोने से जब धूल को मैंने हटाया था, सालों पुराना एक किस्सा मेरे हाथों में मुस्काया था। वो धुंधली सी एक डायरी थी जिसमें कुछ पन्ने कोरे थे, कुछ पन्नों पर लिखे पिता ने अपने सुख दुख थोड़े थे। उस डायरी के हर पन्ने पर संघर्षों की स्याही थी, कैसे उन्होंने घर संभाला इसकी वो गवाही थी। अपनी खुशियां पीछे छोड़ हमारे ख्वाब सजाते रहे, वो चुपके से रो लेते थे पर हंसना हमें सिखाते रहे। पास ही रखी थी वो घड़ी जिसकी सुइयां अब थक चुकी थी, पर पापा के कड़े वक्त की यादें अब उसमें अटक चुकी थी। उसी घड़ी के समय के साथ वो सुबह शाम काम पर जाते थे, खुद चाहे जितने थक जाए घर खुशियां लेकर आते थे। और कौन रखे वो जूते जो थोड़े घिस गए से थे, बच्चों की हर एक जिद के आगे जाने कितनी बार झुके थे। उन जूतों की घिसी हुई तली उनके थकने की कहानी थी, पर हमारे कदमों की सही राह दिखानी उनकी जिद पुरानी थी। ये डायरी घड़ी जूते महज पुरानी वस्तुएं नहीं, ये तो पिता का वो प्यार है जो शब्दों में कभी ढला ही नहीं। सहकर हर तूफान वो चुपचाप हमारे जीवन का स्तंभ बने, उनके इस मौन समर्पण के आगे आज मेरे शब्द भी कम पड़े। बहुत सच्चाई है, बहुत फैक्ट है, बहुत इमोशन है, बहुत गहराई है, सब कुछ है इस बात में, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है। बहुत ही उम्दा लिखा है आप सभी लोगों ने, गुंजन जौहरी जी बहुत शुक्रिया, यामिनी चौहान जी, नरेंद्र छाऊ जी, वर्षा कुमारी पायल जी, मिस्टर आकाश जी, कुंदन राज दत्ता जी और हमारी प्रीति जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारा आप लिखते हैं और हम तक पहुँचाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि ये आपकी बातें बाकी दुनिया तक भी पहुँचे। इसी तरह हम जुड़े रहेंगे और अपने जज्बातों को बयां करते रहेंगे। फिलहाल आज का शो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इजाज़त दें, चलने का वक्त आ गया है, लेकिन आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
9: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
10: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
9: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
10: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
9: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
10: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
11: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर आपका अपना पसंदीदा शो गांव की गूंज, और मैं हूं आपकी दोस्त जया।
12: और मैं हूं समता। आज की शाम थोड़ी खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं संगीत की उस विधा की, जिसमें प्यार भी है, शरारत भी है और थोड़ी सी नजाकत भी है।
13: जी हाँ, आज हमारा विषय ठुमरी है। ठुमरी यानी कि ऐसा गाना जो दिल से निकल कर सीधे दिल तक पहुंचता है। और जया, मुझे लगता है ठुमरी सुनकर कुछ लोगों को अपनी पुरानी मोहब्बत भी याद आ जाती है।
12: अरे गीता दी, ये आप अपने अनुभव से बोल रही हैं क्या? ठुमरी असल में उत्तर भारत की एक बहुत ही मधुर शास्त्रीय गायन शैली है, जिसका संबंध खास तौर से बनारस और लखनऊ से माना जाता है।
13: ठुमरी की खास बात ये है कि इसमें भाव बहुत होते हैं। गायक या गायिका अपने चेहरे और आवाज से कहानी सुनाते हैं। यानी अगर दिल में भाव नहीं है तो ठुमरी अधूरी लगती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत ठुमरी से।

0: आप लोग जानते हैं, ठुमरी की शुरुआत लगभग 18वीं सदी में मानी जाती है और लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने इसे बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था।
1: हाँ, और इसीलिए तो कहते हैं कि लखनऊ की तहजीब और ठुमरी दोनों में बड़ी नजाकत होती है। ठुमरी के बोल अक्सर राधा कृष्ण की प्रेम कथाओं पर आधारित होती है,
0: जैसे राधा का शाम से रूठना या शाम का मनाना।
2: हाँ, ड्रामा तो होता ही है, लेकिन बेहद मीठा ड्रामा। और पता है, ठुमरी गायन में शब्दों के भाव को सुरों के जरिए बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उभारा जाता है। इसमें कजरी, चैती, होली, झूला गीत जैसे स्थानीय लोक रूपों का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसमें भक्ति और श्रृंगार यानी प्रेम का भी सुंदर मिश्रण होता है।
1: इसे पूरब अंग की ठुमरी के नाम से भी जाना जाता है। बनारस की ठुमरी में उत्तर प्रदेश के लोक गीतों की मिठास और गंगा तट की आध्यात्मिकता का संगम मिलता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए ठुमरी के साथ कथक नृत्य भी होता है। किरण दी, आप प्लीज थोड़ा सा ये गीत गुनगुना कर कथक भी दिखा दो ना।
1: अच्छा, बताती हूँ बाबा, बताती हूँ। लखनऊ की ठुमरी का विकास अवध के नवाबों, विशेष रूप से नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। लखनऊ की ठुमरी में शब्दों को लय के साथ बांट कर गाने पर जोर दिया जाता है।
2: और हाँ किरण, लखनऊ की ठुमरी का कथक नृत्य के साथ गहरा संबंध है। नृत्य के साथ अभिनय के माध्यम से ठुमरी का अर्थ समझाया जाता है।

0: तो ठुमरी गाने से पहले मैं ठुमरी के बारे में कुछ और बताना चाहती हूँ। भारतीय ठुमरी अर्धशास्त्रीय संगीत यानी सेमी क्लासिकल की एक बेहद भावपूर्ण शैली है, जिसे भारतीय शास्त्रीय संगीत की कविता भी कहा जाता है। इसमें राग के व्याकरण से ज्यादा महत्व भाव और शब्दों के अर्थ को दिया जाता है। कुछ समझ में आया समता जी और जया जी?
1: हाँ हाँ किरण दी, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया है, तो क्यों नहीं समझ में आएगी हम लोगों को, क्यों समता दी?
2: अच्छा किरण दी, ये बताइए कि अगर आपसे ठुमरी गाने के लिए कहा जाए तो आप कौन सी ठुमरी गाएंगी?
0: मैं तो गाऊंगी कि मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। वैसे जानती हो ठुमरी गाना बहुत आसान नहीं होता, इसको आवाज की मिठास के साथ हाव भाव और अभिनय भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
3: यानी आधा गाना और आधा अभिनय।
2: किरण दी, बनारस घराने की ठुमरी के बारे में आपने समझाया, अब थोड़ा लखनऊ घराने के बारे में भी बता दीजिए ना।
1: हाँ किरण दी प्लीज, आपकी ठुमरी और कथक ने नेहा के संगीत में रंग जमा दिया था, और तो और सब लोग अपना मोबाइल निकाल कर आपका वीडियो बना रहे थे।
0: अच्छा बाबा, करती हूँ, सुनाती भी हूँ और थोड़ा सा कथक भी करके दिखाती हूँ, आप लोग तो बस पीछे ही पड़ जाते हैं। सुनिए।

0: समता दी, एक बात बताइए, अगर ठुमरी की चर्चा हो और बनारस का नाम ना आए तो क्या वो चर्चा पूरी मानी जाएगी? नहीं ना?
1: बिल्कुल नहीं। ठुमरी और बनारस का रिश्ता तो चाय और इलायची जैसा है, एक दूसरे के बिना स्वाद बेहद अधूरा सा लगता है।
2: किरण, बिल्कुल सही कहा तुमने। बनारस घराने की ठुमरी में जो गहराई और भाव है वो सुनने वालों को सीधे दिल तक छू जाता है।
3: हाँ हाँ, और बनारस की गलियों में तो सचमुच ऐसा लगता है जैसे संगीत खुद सांस ले रहा हो।
0: हाँ, अगर आप शाम के समय गंगा घाट पर खड़े हो, हल्की हल्की हवा चल रही हो, आरती की घंटियां बज रही हो और कोई धीमे धीमे ठुमरी गुनगुना रहा हो तो बस समझ लीजिएगा कि वो पल यादों में सदा के लिए बस गया है।
1: ठुमरी में कभी राधा का इंतजार होता है तो कभी कृष्ण की शरारत होती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे गायक अपनी ही कहानी सुना रहा है।
2: तो चलिए श्रोताओं, अब इसी बनारसी माहौल के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत सी ठुमरी।

0: तो श्रोताओं, आज की इस प्यारी सी शाम में हमने ठुमरी की मिठास को महसूस किया।
1: सही कहा तुमने, ठुमरी सुनते सुनते दिल खुद ब खुद उस भावनाओं में बहने लगता है।
2: और मुझे तो लगता है कि ठुमरी में जो नजाकत है वो हमारी संस्कृति की सबसे सुंदर पहचान है। उसमें शब्द कम होते हैं लेकिन एहसास बहुत गहरे होते हैं। तो गांव की गूंज के श्रोतागण, आप भी सोच रहे होंगे, क्या ठुमरी सिर्फ बड़े कलाकार ही गा सकते हैं?
0: बिल्कुल नहीं, अगर दिल में संगीत है तो हर कोई गुनगुना सकता है।
1: अगर आप में से कोई ठुमरी गाता है, बनारस की कोई याद को साझा करना चाहता है तो आप हमें जरूर लिखिएगा।
3: और हो सकता है अगली बार आपकी कहानी भी गांव की गूंज में सुनाई दे।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: हो कैसे खेलन जइबो सावन मा कजेरिया, बदरिया घेरिया इलना नदी।

0: अरे अरे वेट, ज्ञानस्थली लाइव जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ खास जानकारियाँ आपके अपने ज्ञानस्थली डिपार्टमेंट से, और सुनते हैं मोटिवेशनल स्टोरी। सो ये सब आपको मिलेगा आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम ज्ञानस्थली लाइव में रोज दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। सो सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
7: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
8: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
9: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
11: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
12: मतलब
11: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
13: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: चांद आसमानों से लापता हो या ना हो, लेकिन आपके आसपास कुछ ऐसे रिचुअल्स, कुछ ऐसे फेस्टिवल्स, कुछ ऐसे त्योहार मनाए जा रहे हैं जिनको सुनने के बाद आप जरूर यहां से लापता होकर उस देश में पहुंचने वाले हैं। भाई मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मेरी को होस्ट और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जिनका नाम है सुहानी एंड संध्या। आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली लाइव और आपके अपने एफएम पर ऑफ कोर्स, क्योंकि आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली। क्या हाल है आपके?
1: मैं ठीक हूँ मैम, आप बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ, आप बताइए।
1: मतलब मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप ठीक ठाक हैं?
0: और मैं उससे भी बढ़िया हूँ।
1: लेकिन मैम मैं गर्मी से परेशान हूँ।
0: वो तो हर कोई परेशान है।
1: अच्छा, तब आप बढ़िया कैसे हुई?
0: अब गर्मी से परेशान होना इज अ डिफरेंट थिंग और बढ़िया होना इज अ डिफरेंट थिंग। है ना, गर्मी से तो हर कोई परेशान है और हम जैसे लोग जिनका गर्मियों में हेयर फॉल बढ़ जाता है वो तो और ज़्यादा परेशान होते हैं। गर्मी का महीना शुरू होते ही हमारी आत्मा रो आती है कि क्यों क्यों आ रहा है ये गर्मी, मैं सीधे मार्च अप्रैल पढ़ने के बाद दिसंबर क्यों नहीं ला सकती, बीच वाले मंथ में क्यों नहीं गायब कर सकती।
1: ये दिमाग में चलता रहता है, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ये मंथ गायब करवा देती।
0: हाँ,
1: कैलेंडर में आने ही ना देती।
0: नहीं, कैलेंडर में तो आने देती लेकिन आसमान में नहीं आने देती।
1: अच्छा अच्छा,
0: कैलेंडर में क्या लेना देना है, कैलेंडर में पन्ने तो पलटने में अभी जाके पलट आऊं।
1: ऐसे तो आप दिसंबर ही खोल के रखिए।
0: वही तो, मेरे दिल के तसल्ली के लिए कैलेंडर में दिसंबर दिख रहा है लेकिन बाहर की गर्मी तो गर्मी है और स्पेशली ये गर्मी पड़ भी हमारी वजह से रही है सच बताऊं तो। जिस तरह से हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, पेड़ों को काटा है, कहीं ना कहीं पानी को इतना गंदा किया, इतना बहाया है बेफालतू में, और उसी का आज हम भुगताना देख रहे हैं।
1: जिसकी करनी उसकी भरनी, जो करेगा भुगतेगा।
0: बिल्कुल, आसमान में बादल नजर नहीं आ रहे हैं और मुझे लगता है ना कि गोंडा में चिपचिपाहट वाली गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है।
1: हर जगह गर्मी तो बहुत ज्यादा,
0: गर्मी हर जगह होती है लेकिन हर जगह की गर्मी अलग होती है, ये बात तुमको पता है कभी?
1: नहीं।
0: अब हमारे यहाँ जब गर्मी होती है तो लगातार हवा चलती है जिसको हम आम भाषा में लू कहते हैं, बट उस लू में चिपचिपाहट नहीं होती है जिसकी वजह से मुझे कहीं भी मेरा फेस चिपचिप चिपचिप नहीं करता हुआ नजर आता। पसीना आता है वो ठीक है, गर्मी लग रही है वो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद हवा भी तो लग रही है।
1: हाँ हाँ,
0: और यहाँ पर हवा नहीं चल रही है, वहाँ पर उड़ते हुए बादल तो नजर आ रहे थे, फिलहाल अब तो मुझे आसमान में बादल नजर ही नहीं आता है। ऐसा लगता है कि बादलों ने आसमान से टाटा बाय बाय कह दिया है और सूरज देवता से कोई डील वील कर ली है कि आप ही रहिए, हम आएंगे ही नहीं,
1: हम जा रहे हैं,
0: हम जा रहे हैं। ये बेमौसम बरसात, बेमौसम गर्मी, अब बेमौसम सर्दी होती जा रही है, वो कहाँ गए मेरे पसंदीदा मौसम? फिलहाल जिन्हें आम पसंद है वो गर्मियों की शिकायत बिल्कुल ना करें।
1: नहीं मैम, आम पसंद होना अलग बात है पर गर्मी से परेशान होना बहुत।
0: हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, जिनको आम पसंद है वो गर्मियों से शिकायत ना करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है।
1: नहीं पसंद तो है लेकिन
0: बताओ, गर्मी नहीं आएगी, बारिश नहीं होगी तो आम कहाँ से खाओगे?
1: मैम गर्मी होनी चाहिए पर एक लिमिट में हो, तो लिमिट से बाहर जा रहा है।
0: तो लिमिट से बाहर करने वाला कौन?
1: मैं।
0: ऑफ कोर्स, पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, पानी बचाइए, मदर नेचर आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रही है, और बताइए कैसे बताए वो? इससे पहले कि आप पॉपकॉर्न बन के फुट जाएं, मैं यही कहूंगी कि आप पेड़ लगाएं।
1: मुझे तो लगता है हम लोग बिना तेल के तल जाते हैं गर्मी में।
0: बेशक, अगर अब मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर से आ रही हूँ और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरी स्किन को रोस्ट कर रहा है, वो भी विदाउट ऑयल।
1: मुझे तो लग रहा है मैं नहा के निकलती हूँ, उसके बाद दोबारा से नहा लेती हूँ।
0: फिलहाल के लिए हम लोगों ने तो बहुत बातें कर ली लेकिन एक खामोश शख्सियत और बैठी है, उनसे भी पूछ लेते हैं। हेलो, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है।
2: अभी भी नहीं आ रही क्या?
0: अभी आ रही है, आई थिंक मेरे लिसनर को भी आ रही होगी अब तो।
2: कैसी है मैम?
0: मैं ठीक हूँ और हम लोग गर्मी पे चर्चा कर रहे थे, हालांकि हम लेकर कुछ और आए हैं बट जब हम दोस्तों के साथ बैठते हैं तो वो अचानक से टॉपिक ही बदल जाता है।
2: हाँ, लेकिन सच में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन अभी आप बता रही थी ना पेड़ लगाओ पानी दो, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम लोग इलेक्ट्रिक चीजें यूज करते हैं ना इसके भी साइड इफेक्ट इसमें ज्यादा ऐड होते
0: हैं। बात तो सही,
2: कूलर एसी तो ये सब भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
2: हमारी ओजोन लेयर अफेक्टेड हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और मैंने सुना है भाई कि मुंबई में पानी का क्राइसिस बढ़ता जा रहा है।
2: सही, आपने सही सुना, मैंने भी सुना।
0: तो भाई इस दुनिया में मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और मुझे लगता है कि इन मुसीबतों को रोकने का जिम्मा भी आप ही को लेना चाहिए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हो तो सबसे पहले आप अपनी ही नुकसान करते हो। जैसे कि हमारे कल एक योगा इंस्ट्रक्टर आए थे और उन्होंने भी सेम यही लाइन कही थी कि नेचर हमारे साथ साथ चलती है, नेचर हम में चलती है, और अगर हम नेचर को नुकसान करते हैं तो नेचर को नहीं, हम खुद को नुकसान करते हैं। तो इस नुकसान के बीच में, क्योंकि मंडे हमारा काफ़ी लाइट होता है, सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे यूनिक और मैसिव फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस जिनको सुनकर आप पेट पकड़ कर हंसेंगे। गर्मी को दो मिनट के लिए सही, लेकिन भूल जरूर जाएंगे। कुछ ऐसे रिचुअल्स अगर आप 30 साल के हो गए हैं तो आपसे अलग अलग देशों में क्या कराया जाएगा, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप सुनते रहिए आपका अपना शो ज्ञान सी लाइव अपनी आरजी होती के साथ, और मेरी कोहोस्ट सुहानी संध्या। एंड इन खूबसूरत नामों के बीच में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप एंजॉय करते रहिए जीत गंगोली का गाना अलोन फिल्म से, चांद आसमानों से लापता हो गया। स्टे ट्यून्ड।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: और हम भी इसी मोहब्बत की बरसात का इंतजार कर रहे हैं, न जाने कब कब आसमान से मोहब्बत बरसाएगा और कब ये ज़मीन वापस से भीग जाएगी और माहौल में थोड़ी ठंडक आएगी,
1: मौसम भी ठंडा हो जाएगा।
0: हाँ, तो यही तो मेरा कहने का अर्थात था, कवि का तात्पर्य यही था एक्चुअल में।
1: मैंने मौसम बता दिया कि जो ना समझता है वो ऐसे समझे।
0: ऑल राइट, तो भाई आप सुन रहे हैं ज्ञानासली लाइव, आपके अपने एफएम रेडियो ज्ञानासली 99.6 एफएम, यही गोला शहर की धड़कन पर आपकी आरजे मौजूद है आप सभी के साथ। और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट सुहानी एंड संध्या। सुहानी जिनकी आवाज़ आप अक्सर सुन रहे हैं और संध्या जो हमेशा खामोश रहती हैं, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट की जोड़ी।
1: नहीं मैम, मैं बताऊँ वो वाली माइक ही ऐसी है कि वहाँ पे बैठने के बाद सब चुप ही रहते हैं।
0: ओह रियली?
2: मतलब आपसे थोड़ा दूर हो जाती है ना।
0: ओह माय गुडनेस। फिलहाल के लिए ये जो आपकी अदा है और मुझे लगता है इसी अदा से जुड़े हुए हमारे अलग अलग देशों में कुछ ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे हैं जिसको सुन के आपको बड़ा मजा आने वाला है। पहले तो आपसे मेरा एक सवाल है, शादी करने का क्या प्लान है? ओके, अगर आपका बैड प्लान है और अगर आप 30 साल से ऊपर के कभी हो जाते हैं तो आपको दो तीन जगह है, जगह अगर वहाँ पर आप रहते तो आपके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें परफॉर्म की जाती। एक रस्म है जर्मनी में अगर आप 30 साल के हो जाते हैं और सिंगल होते हैं तो दोस्तों के बीच ये बहुत पुरानी रस्म चल रही है। लड़कों से कहा जाता है, जो सिंगल लड़के होते हैं जिनकी शादी नहीं होती, 30 साल के हो चुके होते हैं, उनसे कहते हैं शहर के टाउन हॉल या किसी पब्लिक जगह की जो सबसे लंबी सीढ़ियाँ होंगी उन पर झाड़ू लगाओ, उनको साफ करो।
1: क्यों?
0: ये रस्म है।
1: ये मतलब ऐसा कौन सा, पता नहीं उसको कोई लड़की ना पसंद आए या फिर वो किसी लड़की को पसंद ना आए।
0: हाँ, तो इसके लिए आपको सीढ़ियों पर झाड़ू लगानी है।
1: ये तो
2: गेम है या पनिशमेंट?
0: एक्चुअली ये रस्म है, ये गेम है और ये बहुत फनी पनिशमेंट टाइप है। और लड़कियों से कहा जाता है, सिंगल लड़कियों के लिए जिन्हें वहाँ ओल्ड बॉक्सेस कहा जाता है, या उनसे कहते हैं कि आप कोई पुराना जो बॉक्स है उसकी सफाई करो, उसकी सफाई करवाई जाती है उनसे। कहने मैं जो, अगर आप जा रहे हो, आप 30 साल के हो गए, आपने शादी नहीं की, आपकी अपनी मर्जी से आप शादी नहीं कर रहे हो और आपसे कह रहे हैं सीढ़ियों पे झाड़ू लगा, उन्होंने शादी नहीं की तो।
1: अब नहीं, इंडिया में होता तो ज़्यादातर लोग लगाते ही मिलते।
0: नहीं, ऐसा होता तो शायद आधा इंडिया साफ हो चुका होता, क्योंकि आगे सुनो इस रिचुअल में होता क्या है। अगर ये झाड़ू लगाना आप तब तक नहीं रोक सकते हो जब तक कोई पर्सन आकर आपको किस नहीं कर लेता है।
1: ये कौन सी बात है, किसी करना होता तो शादी ना कर लेता।
0: एंड जस्ट इमेजिन, क्योंकि हमारे यहाँ पब्लिक बहुत शाय है और हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, पब्लिक प्लेस पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हमारे यहाँ पर ऐसा होता तो आज आधा इंडिया साफ होता। स्पेशली मेरी मम्मी तो मुझसे पूरा गोड़ा साफ करवा चुकी होती है अब तक।
1: मैम ये चांस आपको नहीं मिलता।
0: क्योंकि मेरी मम्मी तो ऐसा कुछ करने वाली नहीं है। मम्मी कहती सफाई हो रही है, होने तो क्या दिक्कत है तुमको। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा जुगाड़ू भी लगा। मतलब अच्छा रिचुअल है, अगर देखा जाए तो काफ़ी फनी है। और जो इंसान अकेला सीढ़ियों पर या बॉक्सेस को साफ कर रहा होगा उसके फेस को देखने लायक भी है।
1: नहीं लेकिन क्या पता उसी दिन उसका उसकी ड्रीम क्वीन मिल जाए।
0: अब मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। सोचिए अगर नहीं मिलेगी तो आप पूरी रात पूरे दिन झाड़ू लगा।
2: और फिर आप ये सोचिए, 30 साल नहीं किया है, वो झाड़ू लगा रहा है, फिर वो कोई आके कुछ करेगा, फिर सोचिए क्या होगा।
0: तो भाई ये एक रिचुअल था जिसको थोड़ा सा इसको फनी कह सकते हैं, हंसते गाते पार्टी जैसा एक रिचुअल होता है, एक बहुत मज़ेदार स्ट्रीट पार्टी होती है जिसमें सब लोग हंसते हैं, गाते हैं, इन्जॉय करते हैं, कोई किसी से लड़ता नहीं है इस बात को लेकर के, कोई झगड़ता नहीं है, क्योंकि एक रस्म है तो रस्म को उसी की तरह लिया जाता है, एक पार्टी की तरह लिया जाता है, हर कोई इसको इन्जॉय कर रहा होता है, जो भी उसमें होता है, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे उसको देखने वाला हो, दोनों ही इन्जॉय करते हैं। और ये कहीं और नहीं, जर्मनी में शैट स्वैपिंग के नाम से जाना जाता है। अब आप बताइए रिचुअल आपको कैसा लगा, क्या आप कभी इसको परफॉर्म करना चाहेंगे?
1: नहीं करना तो नहीं चाहेंगे, पर है बहुत अच्छा।
0: है बहुत अच्छा। चलिए एक और बताएं, एक ऐसी चीज जिसको आई थिंक ये रस्म में ना आप लोग छींकते ही रह जाओगे। हाँ
1: क्यों?
0: क्योंकि ये रस्म डेनमार्क में की जाती है, दाल चीनी जिसको हम सिनेमन कहते हैं और पेपर जिसको मिर्च कहा जाता है उसकी बारिश की जाती है। चलिए अब आपको बता दें, 25 साल पर दालचीनी डेनमार्क में, अगर आप 25 साल के हो जाते हो और आपकी शादी नहीं होती, आप किसी को डेट नहीं कर रहे होते हो, आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता, ऐसा कोई सीन है ही नहीं आपके आसपास, तो आपके दोस्त आपको खंबे से बांध कर ऊपर से नीचे तक दालचीनी से नहला देते हैं। Can you imagine? आप वहां जा रहे हो और आप 25 साल के हो चुके हो और आपके पास कोई नहीं है, आप सिंगल घूम रहे हो क्योंकि आपको मजा आ रहा है सिंगल घूमने में, और आपके दोस्तों को वो नहीं मजा ले रहे पा रहे हैं, तो वो आपको एक खंबे से बांधेंगे और आपको ऊपर से लिखा है दालचीनी से नहला देंगे, और आपको बचना है नहीं कैसे? तो नाक में चली जाएगी भाई।
1: अच्छा
0: क्या नाकों में जाने दोगे?
1: नहीं, मैं ये सोच रही थी बचना है, मतलब कोई इसमें भी बचाने आएगी?
0: नहीं, इसमें कोई बचाने नहीं आता है, आपको नहाना है लेकिन अपने नाक और कान और मुंह को बंद करके।
1: अच्छा,
0: पता चले आपकी नाक और कान के अंदर चला जाए या आपकी आंखों के अंदर चला जाए, तो दालचीनी बहुत ज्यादा मिर्ची दे सकती है, वो दिखने में थोड़ी सी टेस्ट में ही मीठी मीठी होती है, अदरवाइज अगर वो कहीं लग जाती है तो जलन होती है। और अगर आप 30 साल की हो जाते हो तो आपको काली मिर्च नहलाया जाता है। अगर आप 30 की उम्र में भी सिंगल है, मतलब तो दालचीनी की जगह पर काली मिर्च डाली जाती है।
1: मैं मतलब वो 25 में भी नहाए और 30 में भी नहाए।
0: हाँ, ये तो है कि 25 में अगर आपने शादी नहीं की है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आप किसी को डेट नहीं कर रहे हो इस इरादे से कि आपको शादी करनी है, तो आप कर क्या रहे हो, आप काली मिर्च नहा लो।
2: इससे अच्छा है कि वो भले शादी ना करे लेकिन तो वो जरूर बना रहे, बचा तो रहे।
0: चले अब आपको बता देते हैं इन दोनों रिचुअल्स का नाम क्या है। अगर आप 30 साल के हो और आप लड़के हो और आपकी शादी नहीं हुई है, या फिर आपके आसपास कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप हो, तो उसको हम पेपर बैचलर कहते हैं, और लड़कियों को पेपर मेड कहा जाता है। दोस्त अक्सर उनके घर के बाहर मिर्च पीसने वाली बड़ी बड़ी मशीनें और उनके पुतले खड़े कर देते हैं, क्योंकि काली मिर्च से नहाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उनके पुतलों को खड़ा कर, मतलब दोस्त अच्छे होते हैं, देखा दोस्त हर जगह अच्छे होते हैं, वो अलग बात है आप लोगों ने जज पहले कर लिया था उन्हें।
2: तो भाई एक्चुअल में इंसान को ही नहलाया
0: जाए, अब ये तो दालचीनी में होता है फिलहाल के लिए, क्योंकि काली मिर्च ऑफ कोर्स ज्यादा ही हो जाती है, तो जो दोस्त नहीं चाहते हैं अपने दोस्त को पनिशमेंट देना, तो वो उनके बड़े बड़े पुतले बनाकर खड़ा कर देते हैं और उसको ही नहला देते हैं काली मिर्च से। अपने पुतलों को काली मिर्च से नहलाता देखना,
1: कांड में फंसाते दोस्त ही हैं।
0: अब एक्चुअल में हर एक जगह पर आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं उसकी जो मेमोरीज होती है ना, उसको बनाने वाले भी दोस्त ही होते हैं। तो ये रिचुअल आपको कैसे लगे? आप इनमें से किस वाले के पास ज्यादा पसंद करेंगे, झाड़ू वाले में या फिर दालचीनी वाले में? मुझे जरूर से बताइए।
1: झाड़ू वाले में।
0: चलिए तो आपकी पसंद आ गई कि आपको झाड़ू लगाना पसंद है, लेकिन हमारे लिस्नर क्या पसंद कर रहे हैं ये चैट बॉक्स में आप जरूर से बताएं, एंजॉय करते रहें, और हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए सुनते रहिए मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। स्टे ट्यून्ड।

0: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सबका हम आपके अपने वाले प्रोग्राम ज्ञान असली लाइफ में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन।
1: और आपके साथ में आपकी को-होस्ट सुहानी संध्या,
0: इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, और हम तो एम्बीवर्ट हैं। मूड पे डिपेंड करता है कि मैं बक बक बक बक करने वाली हूँ या मैं खामोश बैठने वाली हूँ।
1: मैम, पर यहाँ पे जो दिख रहा है वैसा है नहीं, क्योंकि आप जिसको इंट्रोवर्ट समझ रही हैं
0: वो एक्सट्रोवर्ट है और जो एक्सट्रोवर्ट समझ रही है वो इंट्रोवर्ट है। हाँ, एक्चुअली ये है,
1: क्योंकि अगर सामने से कोई आ जाए फिर देखिए आप।
0: समझ रहे हैं। तो क्या ख्याल है अगली चीज के बारे में बताया जाए, एक ऐसा रिचुअल जो मुझे बड़ा पसंद आया। ओके, नेकी और पूछ ना करते हुए आइए चलते हैं इतिहास में 90s की तरफ, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर बच्चों ने एक डेट चुनी। डेट थी 11/11, और ये डेट इसलिए चुनी गई थी क्योंकि इसमें एक नंबर आता है और एक नंबर हमेशा सिंगल होता है, यानी कि अकेला होता है, और वो हमेशा अकेले व्यक्ति को दिखाता है कि तुम अकेले हो। इसीलिए 11 तारीख 11वां महीना चुन लिया गया, और उस दिन होता है दुनिया का वो हसीन काम जो हर किसी को पसंद है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। पूछो क्या?
1: क्या?
0: शॉपिंग। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल बन चुका है। ये दिन सिंगल लोग खुद के लिए महंगे तोहफे खरीदते हैं, पार्टीज करते हैं और लंबी सी फ्राइड डिश को ऑर्डर करते हैं जो बिल्कुल मन जैसी दिखती है, उसको खाते हैं। नहीं तो क्या पड़ोसी पैसे देंगे?
1: मैं वही सोच रही हूँ, ये सब फ्री में मिलने वाला है।
0: नो, इट्स नॉट फ्री। ये फ्री नहीं है, लेकिन ये सिंगल लोग अपने लिए एंजॉय करें, अपनी लाइफ के उन चंद हसीन लम्हों को एंजॉय करने का तरीका है जो शायद 11/11 को किया जाता है।
1: मैम, सिंगल लोगों के लिए तो हर वक्त हसीन ही होता है मेरे ख्याल से।
0: नहीं, ऐसा नहीं होता, उनको भी टेंशन होती है, कभी करियर की टेंशन है, कभी फैमिली की टेंशन है, कभी चीजों की टेंशन है, कभी मेरे जैसे हेयर फॉल की टेंशन है। और एक मौका ऐसा होता है कि जब वो अपने लिए पैसे खर्च करते हैं, और 11/11 वो एक ऐसा दिन है जहां पर लोग बहुत बड़े लेवल पर जाकर के ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सबसे महंगी चीजों को खरीदते हैं।
1: ये भी बहुत अच्छी है।
0: और बताओ ये कहाँ हो रहा है?
1: पता नहीं। हाँ,
0: ये हो रहा है चाइना में।
1: चाइना में?
0: हाँ,
1: वहाँ भी अच्छे अच्छे रूल है। मतलब इंडिया में क्या है मैम?
0: अब ये तो आप बताने वाली हैं इंडिया में क्या है। क्या इंडिया कहिए? ओहो,
1: चाइना का माल। चाइना,
0: चलिए ओके। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं, कभी खुद से शादी करने का ख्याल आया कि मुझ जैसा इंसान कहीं नहीं होगा, मैं खुद ही से शादी कर लूं?
1: मैम, शादी वाला ख्याल तो फिलहाल भी आता नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं आया है।
0: ओके, ऐसा भी नहीं आया है, वैसा भी नहीं आया है, लेकिन हम आपको बता दें अमेरिका और यूरोप में जो लोग सिंगल रहते हैं वो खुद से शादी कर लेते हैं।
1: खुद से शादी कर लेते हैं?
0: हाँ, आजकल अमेरिका एंड यूरोप में ये चीज काफी पॉपुलर हो रही है कि लोग खुद से ही शादी कर रहे हैं, सेल्फ मैरिज। जैसे आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं ना, ऐसे ही लोग सेल्फ मैरिज कर रहे हैं।
1: मतलब मंगलसूत्र भी खुद पहनेंगे और क्या होता है वो भी मारा
0: अब
1: भी।
0: वो प्रॉपर गाउन पहनते हैं या वेडिंग सूट पहनते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं और खुद से हमेशा प्यार करने की कसमें खाते हैं कि मैं स्वयं को हमेशा प्यार करता रहूंगा, मैं स्वयं का हमेशा ख्याल रखता रहूंगा, और दुनिया की कोई भी बुरी चीज मुझे छू नहीं पाएगी, और ये सारे वादे खुद से, मतलब सेल्फ लव को एक सीढ़ी ऊपर ले गए हैं।
1: बड़ा अजीब है मैम।
0: बट अजीब क्या है जब आपको
1: सेल्फ,
0: देखो यूं तो आपको हमेशा ताने मिलते रहते हैं ना कि शादी करो शादी करो, खुद से कर लो शादी, कहो मैंने कर तो ली शादी।
1: अब ये नहीं करेगी, कहेगी मुझे खुद से शादी करनी है।
0: तो मुझे लगता है आई थिंक ये थोड़ा अच्छा सा एक हो भी सकता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है खुद के साथ। जैसे कपल्स अपनी शादी पर दोस्तों से गिफ्ट मंगवाते हैं, वैसे ही 30s में जो सिंगल लोग होते हैं वो अपने घर या गाड़ी लेने पर दोस्तों से अपनी विश लिस्ट के मुताबिक तोहफे मंगवाते हैं। यानी कि अगर मैं सिंगल हूँ और मैंने अभी तक शादी नहीं की है और मैं 30 साल के ऊपर निकल गई हूँ, मैंने अपना घर खरीद लिया है या अपनी कोई गाड़ी ही खरीद ली है, तो आप मुझे तोहफा देंगे और तोहफा मेरी पसंद का होगा।
1: बढ़िया बढ़िया।
0: मैं बताऊंगी कि मुझे तोहफे में क्या चाहिए। हो सकता है मुझे तोहफे में कुछ बढ़िया चीज चाहिए,
1: क्या पता वो घर खरीद के कार मांग ले।
0: ओ, कुछ भी हो सकता है। विशलिस्ट मेरे विशलिस्ट में हो सकता है कि मैं वर्ल्ड टूर पे जाना पसंद करूँ, तो आप मुझे वो टिकट ला के देंगे। बिल्कुल, क्योंकि उसके मुताबिक ही आपके दोस्त आपको तोहफा देते हैं। क्या ही खूबसूरत लुक रस्म और रिवाज निभा रहे हैं। ओह माय गॉड,
1: तो ये कहां से हुआ? वो तो फिर शादी वाला
0: रोमांटिक
1: मतलब लोगों को पागल बनाने का ठीका इन्होंने ले रखा है
0: जी। और वहीं पर फ्रांस में कुछ इस तरह से होता है कि कैथरीन्स डे मनाया जाता है। जो लड़कियां 25 या उससे ज्यादा उम्र की हो चुकी होती हैं, वो पीले रंग के कपड़े पहनती हैं उम्मीदों में। उस दिन उन्हें उम्मीद का माना जाता है, होप का माना जाता है। और उस दिन पूरी फैमिली पीले रंग के कपड़े पहनती है, पीले रंग से बनी हुई बड़ी सी अजीबो गरीब टोपियां पहनती है, खूबसूरत टोपी पहने जाती हैं और पूरे शहर में घूमती है। ये उनकी समझदारी और आज़ादी को सेलिब्रेट करता है।
1: अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है।
0: तो मुझे लगता है सब दालचीनी वाला को छोड़ के ऑलमोस्ट हर एक रिचुअल अच्छा है अगर परफॉर्म किया जाए तो। और चाइना वाला तो आई थिंक हर कोई करना चाह रहा होगा इस वक्त। एक चाइना वाला और एक यूरोप वाला, कि मतलब मैंने शादी नहीं की है तो तोहफे तो मिलने चाहिए ना, तोहफों में क्या है।
1: हाँ, यहाँ पे शादी करने पे मिलते हैं, वहाँ पे नहीं करने पे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा है। और ये किए हैं जो ना करके भी उनको वही चाहिए।
0: हाँ। फिलहाल के लिए अब इनमें से आपका पसंदीदा रिचुअल कौन सा था, पसंदीदा रस्म कौन सी थी, मुझे जरूर से बताइएगा। चैट बॉक्स में घड़ी ने शक कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा, मेरी को होस्ट के साथ आपने भी इंजॉय किया होगा। और आपने तो इंजॉय किया ही होगा।
1: मैंने बहुत किया है मैम।
0: ऑलराइट, तो इससे पहले कि मैं आप लोगों से झाड़ू लगवाने लग जाऊं, आइए चलते हैं इस गाने की तरफ जो हम सुन रहे थे हमारी अधूरी कहानी से, मिथुन का गाना हमनवा। एंजॉय करते रहिए, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान 89.6 FM, यही गोंदा शहर की धड़कन पर। आपका अगला कार्यक्रम है सेहत या सही, सुनना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

नमस्कार श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच में हमारी यानी आपकी और हमारी सभी की प्यारी वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो हमारे हर एक

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: पहले घंटे से शुरू होती है बच्चे के दिमाग और जीवन की मजबूत नींव। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जुड़ी है एक नन्ही सी जान से और उसकी जिंदगी से, यानी कि उसकी जिंदगी के पहले घंटे से। जी हाँ, ये नवजात शिशु के बारे में है, उसके इस संसार में सांस लेने के पहले घंटे के बारे में। इसमें बहुत सारे पहल शामिल हैं। बच्चे का पहली बार इस दुनिया में सांस लेना, पहला घंटा, माँ का पहला दूध, माँ और पिता का पहला स्पर्श, परिवार के सदस्यों का स्पर्श, और फिर शुरुआती महीनों में उसका शारीरिक और मानसिक विकास। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पोषण पखवाड़े का विषय है नवजात शिशु के पहले 6 महीने में उसकी देखभाल। और इसके लिए आज हमने दोनों, यानी के सेहतिया भैया और टीकन भाभी को स्टूडियो में आमंत्रित किया है। नमस्कार भैया जी, और भाभी आपका भी स्वागत है।
2: नमस्ते आरजी
1: जी, स्वागत है आपका भाभी और भैया। तो इस मृत्यु दर का कारण क्या है?
3: आप दोनों लोग हमें ना बुलाते तो भी हम आ जाते हैं, क्योंकि हम अभी दिल्ली से आए हैं एक सेमिनार अटेंड करके। वहाँ पूरी चर्चा इसी मुद्दे पर थी कि नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी कैसे लाई जाए। नवजात बच्चों के लिए सबसे जोखिम भरा समय जन्म के बाद का पहला महीना, खासकर पहला दिन और पहला सप्ताह होता है। हमें बताया गया है कि WHO के अनुसार अधिकतर नवजात मौतें जीवन के पहले सप्ताह में होती हैं और इनके प्रमुख कारण हैं समय से पहले जन्म, जन्म के समय सांस लेने में दिक्कत, संक्रमण और जन्मजात समस्याएं।
2: अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो गया है तो अब सबसे बड़ा काम हो गया है, बच्चा और माँ दोनों ठीक हैं। लेकिन सच तो ये है कि बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा उसकी पूरी जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर कम हुई है, लेकिन आज भी कई नवजात बच्चे ऐसी वजहों से अपनी जान गंवा देते हैं जिन्हें सही जानकारी और समय पर देखभाल से रोका जा सकता है।
1: तो सेहतिया भैया, आप ये बताइए कि ये गोल्डन आवर और या ये सुनहरा घंटा क्या है? क्या पहला घंटा ही गोल्डन आवर कहलाता है?
3: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे, बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत अहम होता है। इसी समय ये तय होता है कि बच्चा सुरक्षित रहेगा या उसे संक्रमण, ठंड लगने से सांस की दिक्कत या दूसरी परेशानियों का खतरा बढ़ जाएगा।
1: यानी ये सिर्फ एक घंटा नहीं बल्कि बच्चे के पूरे भविष्य की नींव है।
2: जी हाँ, इस पहले घंटे में कुछ बहुत जरूरी काम किए जाते हैं, जैसे बच्चे को तुरंत माँ के सीने से लगाना, उसे गर्म रखना, सांस चल रही है सही से या नहीं ये भी देखना, और सबसे जरूरी जन्म के पहले घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चा का पहला टीका माना जाता है। ये बच्चे के रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है और कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है।
3: और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें बहुत सरल हैं। सही जानकारी, परिवार का सहयोग, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग, ये सब मिलकर नवजात बच्चों की जान बचा सकते हैं।
1: तो साथियों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम विस्तार से समझेंगे नवजात बच्चे की देखभाल कैसे करें, बच्चे को गर्म क्यों रखना जरूरी है, स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं और परिवार क्या सावधानियां रख सकता है इन सभी से बचाव के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ।

0: स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम यानी कि सेहत सही और लाभकारी में। आज हमारी अपनी टीकन देवी और सेहतिया भैया दोनों हमें बताएंगे कि जन्म के पहले घंटे में क्या करना जरूरी है, माँ का पहला दूध क्यों इतना महत्वपूर्ण है और परिवार नवजात बच्चों को सबसे मजबूत शुरुआत कैसे दे सकता है। लेकिन सेहतिया भैया, अक्सर लोग पूछते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चों को कौन कौन से टीके लगते हैं, क्या ये भी उतने ही ज़रूरी हैं?
1: बिल्कुल ज़रूरी है। जिस तरह माँ का पहला दूध बच्चे की पहली सुरक्षा है, उसी तरह जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी बच्चे को कई गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में पहला कदम होते हैं।
2: भारत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जन्म के समय कुछ महत्वपूर्ण टीके मुफ्त में दिए जाते हैं। इनमें BCG, हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक और ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV की शून्य खुराक शामिल है।
1: इन टीकों से बच्चे को TB, हेपेटाइटिस बी और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलनी शुरू होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जन्म के बाद बच्चे का टीकाकरण समय पर करवाया जाए और उसका टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखा जाए।
0: यानी बच्चे की मजबूत शुरुआत के लिए दो बातें साथ साथ जरूरी हैं, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और समय पर जन्म खुराक वाले टीके।
1: मैं भी यहाँ एक बात साफ करना चाहूँगा, बच्चे के दिमाग का विकास बाद में शुरू नहीं होता है, बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। वह माँ की आवाज़ पहचानता है, स्पर्श महसूस करता है, दूध पीता है, सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए नवजात देखभाल केवल बीमारी से बचने की बात नहीं है, यह बच्चे के दिमाग, शरीर और भावनात्मक विकास की नींव है।
0: टीकन भाभी, बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे अभी क्या समझ आता होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे के विकास की शुरुआत होने लगती है।
2: बिल्कुल, बच्चा भले ही बोल ना सकता लेकिन वो महसूस तो कर सकता है ना। माँ की छाती से लगना, माँ की आवाज़ सुनना, पहला दूध पीना, ये सब उसके लिए सुरक्षा और जीवन की शुरुआत है। शुरुआती वर्षों की मजबूत नींव जन्म के पहले घंटे से ही पड़नी शुरू हो जाती है, इसलिए जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत कीमती है और इसलिए इसे गोल्डन आवर कहा जाता है।
0: तो अब बताइए कि ये गोल्डन आवर इतना जरूरी क्यों है?
1: जन्म के बाद पहले घंटे में कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा माँ की छाती से लगे और स्तनपान शुरू हो। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, या बच्चे को शुरुआती जरूरी आहार देता है, संक्रमण से बचाने में मदद करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। माँ के दूध में ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों के विकास के लिए जरूरी हैं।
2: और यहाँ एक बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है।
0: वो क्या भाभी?
2: वो ये कि कई जगह पहला पीला गाढ़ा दूध देखकर लोग कहते हैं कि ये खराब है, इसे फेंक दो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पहला पीला दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा है, इसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि ये बच्चे की पहली सुरक्षा कवच है।
0: तो साफ संदेश ये है आपका कि पहला पीला दूध फेंकना नहीं है, बच्चे को देना है।
2: जी बिल्कुल, और जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बच्चा तुरंत दूध नहीं पकड़ पा रहा है तो घबराना नहीं है, माँ भी सीख रही होती है और बच्चा भी सीख रहा होता है, तो ऐसे में नर्स, आशा दीदी, ANM या डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए।
1: सही पकड़, सही स्थिति और धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार परिवार जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है कि माँ का दूध नहीं आ रहा है। शुरुआती दिनों में दूध थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन नवजात बच्चे का पेट भी छोटा होता है, इसलिए माँ को दोष देने की जगह सहयोग देना चाहिए।
0: बहुत से घरों में जन्म के बाद बच्चे को शहद, घुट्टी, पानी या कोई और चीज देने की परंपरा होती है। टीकन भाभी, क्या इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी?
2: हाँ, नवजात बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए जब तक डॉक्टर कोई अलग से सलाह न दे। शहद, घुट्टी, पानी या कोई भी बाहर की चीज बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, न पानी, न शहद, न घुट्टी। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा भोजन है।
0: और जब गर्मी है और गर्मी में बच्चे का गला सूखे या उसको प्यास लगे तो गर्मी में भी पानी नहीं देना चाहिए।
1: पहले 6 महीने तक माँ का दूध ही पर्याप्त होता है, जब तक डॉक्टर किसी विशेष स्थिति में अलग सलाह न दे। माँ के दूध में पानी भी होता है और जरूरी तत्व भी, इसलिए अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती है।
0: लेकिन अगर बच्चा बार बार रोता है तो परिवार सोचता है कि बच्चा भूखा है।
2: हर रोना भूखा नहीं होता। बच्चा गीलापन, गर्मी, ठंडक, नींद या पेट की असहजता या गोद की जरूरत से भी रो सकता है। शुरुआती दिनों में बार बार दूध पीना भी सामान्य है। माँ को शांत माहौल, पानी, खाना, आराम और परिवार का भावनात्मक साथ चाहिए, ताने नहीं चाहिए।
0: यानी माँ की सेहत और बच्चे की सेहत अलग अलग नहीं है।
2: बिल्कुल, अगर माँ थकी है, भूखी है, डरी हुई है या लगातार दबाव में है तो स्तनपान भी प्रभावित हो सकता है। परिवार को माँ को संभालना चाहिए। सिर्फ सलाह देना काफी नहीं बल्कि काम में हाथ बटाना भी जरूरी है।
1: पिता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिता माँ को पानी दे सकता है, खाना खिला सकता है, रात में सहयोग कर सकता है, रिश्तेदारों की अनावश्यक सलाह से माँ को बचा सकता है और बच्चे की देखभाल में शामिल हो सकता है। नवजात देखभाल केवल माँ का काम नहीं है।
0: अब बात करते हैं त्वचा से त्वचा संपर्क की। सेहतिया जी, ये क्या होता है और आखिर में इसकी जरूरत क्यों है?
1: त्वचा से त्वचा संपर्क का मतलब है कि बच्चे को माँ या देखभाल करता की छाती से सीधे लगाया जाए सुरक्षित तरीके से। इसी को कांगारू केयर कहते हैं। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है, वह सुरक्षित महसूस करता है और स्तनपान में भी मदद मिलती है। यह खासकर कम वजन वाले या समय से पहले जन्म बच्चों के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है।
2: बच्चा माँ की धड़कन सुनता है, माँ की गर्माहट महसूस करता है और शांत होता है। ये केवल शरीर की गर्माहट नहीं है बल्कि ये भरोसे की गर्माहट है। बच्चे के दिमाग और भावनात्मक विकास के लिए भी ये बहुत अच्छा है।
0: भैया, क्या पिता भी ऐसा कर सकता है?
1: हाँ, सही तरीका सीखकर पिता भी त्वचा से त्वचा संपर्क दे सकते हैं। खासकर जब माँ को आराम चाहिए या वह थकी हुई हो। लेकिन तरीका स्वास्थ्य कर्मी से सीखना चाहिए। बच्चे की नाक और मुंह खुले रहें, बच्चा दबे नहीं और वह आराम से सांस ले रहा हो, ये ध्यान रखना जरूरी है।
2: पिता की भूमिका जन्म के पहले दिन से शुरू हो जाती है। सिर्फ खर्च उठाना पिता की भूमिका नहीं है। बच्चे को गोद में लेना, माँ का साथ देना, बच्चे को गर्म रखना और माँ को भावनात्मक सहारा देना, ये भी पिता की जिम्मेदारी है।
0: साथियों, अब हम कुछ आम गलतफहमियां दूर करते हैं। पहली गलतफहमी, पहला पीला दूध खराब होता है।
2: और सच्चाई कि पहला पीला दूध बहुत लाभकारी होता है, इसे बच्चे को जरूर देना चाहिए।
0: और अब दूसरी गलतफहमी, नवजात को शहद या घुट्टी देना जरूरी है।
1: पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, जब तक डॉक्टर अलग सलाह न दे।
0: तीसरी गलतफहमी, माँ का दूध कम है तो तुरंत ऊपर का दूध शुरू कर दें।
2: और सच्चाई ये है कि पहले सही स्तनपान की सहायता लें। माँ को दोष ना दें, स्वास्थ्य कर्मी से मदद लें।
0: अब आते हैं चौथी गलतफहमी पर, नवजात देखभाल सिर्फ माँ का काम है।
2: बिल्कुल नहीं, पिता, दादी, नानी, परिवार और स्वास्थ्य कर्मी, ये सब की भूमिका होती है।
0: अब एक जरूरी सवाल, किन संकेतों पर परिवार को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए?
1: अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बहुत सुस्त है, तेज या कठिन सांस ले रहा है, शरीर बहुत ठंडा है या बहुत गर्म लग रहा है, त्वचा नीली पड़ रही है, दौरा जैसा लग रहा है, लगातार रो रहा है या बिल्कुल नहीं रो रहा है, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। नवजात बच्चे पर घरेलू प्रयोग नहीं करने चाहिए।
2: और अगर बच्चा समय से पहले जन्मा है या उसका वजन कम है तो और सतर्क रहना चाहिए। ऐसे बच्चों को नियमित जांच, स्तनपान, गर्माहट और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह की जरूरत होती है।
0: ये पूरी बातचीत हमें क्या याद दिलाती है?
1: ये याद दिलाती है कि बच्चे का दिमाग, शरीर और भविष्य शुरुआती देखभाल से बनता है। अच्छी देखभाल केवल खाना नहीं है, इसमें स्तनपान, सुरक्षा, स्पर्श, साफ सफाई, टीकाकरण, माँ का स्वास्थ्य और परिवार का सहयोग सब शामिल है।
2: हर घर 5 संकल्प ले सकता है। गर्भवती महिला को अच्छा भोजन और आराम देंगे, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने में मदद करेंगे, पहला पीला दूध नहीं फेंकेंगे, पहले 6 महीने केवल और केवल माँ का दूध ही देंगे और माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे।
1: 6वां संकल्प भी जोड़ लीजिए, बच्चे के जन्म के बाद दिए जाने वाले सभी जन्म खुराक टीके समय पर लगवाएं और आगे का पूरा टीकाकरण कैलेंडर भी पूरा करवाएंगे।
2: सही कहा, माँ का दूध और समय पर टीकाकरण दोनों मिलकर बच्चे को जीवन की सुरक्षित शुरुआत देते हैं।
0: बहुत स्पष्ट बात है कि बच्चे के जीवन का पहला घंटा पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। माँ का दूध, माँ पिता का स्पर्श, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवा, यही बच्चे की मजबूत शुरुआत है।
1: और मैं एक बात फिर कहूँगा, अगर स्तनपान में दिक्कत हो तो शर्म या डर की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी से सहायता ले, ये सीखने की प्रक्रिया है।
2: माँ को ताना नहीं, सहारा चाहिए। बच्चे को घुट्टी नहीं, माँ का दूध चाहिए। परिवार को अफवाह नहीं, बल्कि सही जानकारी चाहिए।
0: साथियों, आज की 5 जरूरी बात याद रखिए। पहली, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की कोशिश करें। दूसरी, पहला पीला दूध बच्चे को दें और उसे फेंके नहीं। तीसरा, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दे। चौथा, त्वचा से त्वचा संपर्क बच्चे को गर्माहट और सुरक्षा देती है, जिसे कंगारू केयर विधि भी कहते हैं। पांचवा, पिता और परिवार की भूमिका बहुत जरूरी है।
2: और 6ठी बात, खतरे के संकेत दिखे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं, इंतजार न करें।
0: इसी संदेश के साथ आज का सेहत सही लाभ कई यहीं समाप्त करते हैं। याद रखिए, बच्चे की अच्छी शुरुआत महंगे साधनों से नहीं, सही जानकारी और सही देखभाल से होती है। पर जाने से पहले हम सब मिल कर लेंगे सेहत की शपथ।
3: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
4: प्राथमिकता देंगे,
3: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
4: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
3: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
4: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
3: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
0: पहला दूध पहला प्यार,
2: पहला घंटा जीवन का आधार,
0: माँ का साथ पिता का हाथ,
2: बच्चे को मिले सुरक्षित शुरुआत,
0: सेहत सही लाभ कई।

0: निभाए।
1: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश
1: जीतेगा। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाए।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

बिल्कुल, दुनिया हसीनों का मेला और मेले में ये दिल अकेला, और दिल अकेला है तो ढूंढता है कुछ दोस्तों को। भाई दिल हमारा भी अकेला है और प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारी प्यारी अपनी सखियों को ढूंढते हुए आ गया है। और आपका अपना पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अंशिका। और आज आप सोच रहे होंगे कि भाई सुन सहेली है, और सुन सहेली में आज एक ही सहेली क्यों, यानी कि दूसरी सहेली कहाँ है? तो मैं आपको बता दूँ, आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि आपकी दूसरी सहेली यानी कि हमारी और आप सभी की प्यारी आरजे समता जी जो हैं वो आज हैं छुट्टी पे। छुट्टी पे इसलिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट उन्हें काम था और वो तो बिल्कुल नहीं जा रही थी। कह रही थी कि नहीं मुझे नहीं जाना है, लेकिन मैंने ही उनसे कहा कि नहीं मैम, आपका काम थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप काम करके आइए और फिर आप हमें ज्वाइन करिए। तब तक के लिए कोई बात नहीं, हम आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपकी बातें करते हैं और आपकी बातें करते हुए ही शो को शुरू करते हैं। क्योंकि भाई देखिए, जब कोई बड़ा घर में नहीं होता है ना, और कहते हैं ना कि जब बड़ों की बातों से शुरुआत हो तो शुरुआत बहुत ही प्यारी सी होती है, इसलिए हम हमारी शुरुआत भी कुछ प्यारी सी ही करना चाहेंगे। और आज तो बहुत ही प्यारा सा दिन भी है। आप सभी को पता है लिसनर्स कि आज का दिन यानी कि हमारा टेस्टी टेस्टी लजीज वाला मंडे, भाई मुझे तो बहुत बहुत बहुत पसंद है। क्योंकि मंडे ऐसा होता है ना कि मंडे में हमें फील आता है कि आज तो हमें कुछ टेस्टी खाने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा आपको टेस्टी टेस्टी हमारे किचन से, यानी ज्ञानस्थली की रसोई से आपको बिल्कुल बहुत ही टेस्टी टेस्टी डिश खाने को मिलने वाली है। क्योंकि हमारी मास्टर शेफ़ भी आने वाली हैं, और मास्टर शेफ़ आपको क्या बताएंगी ये तो भाई अभी राज है। क्योंकि राज देखिए क्या होता है ना, खाने की जब हम बात करते हैं तो खाने में क्या मिलने वाला है इसकी एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होती है। तो मैं आपको क्या बताऊंगी, हमारी मास्टर शेफ़ क्या बताएंगी, ये सब अभी के लिए राज रखते हैं। और अभी हम अपने शो का पहला पॉइंट जो है, यानी कि हमारा होता है पहला पॉइंट प्यारी सी पोइट्री। और आज पोइट्री भी होने वाली है खाने पे, क्योंकि आज पूरे शो में हम बात करने वाले हैं खाना खजाना पे। बिल्कुल खाना खजाना। और चलिए खाने खजाने की शुरुआत करते हैं पोयम को सुना करके। तो बहुत ही प्यारी सी है और शुरू करती हूँ, आप सभी को सुनाना चाहूँगी और आप सभी सुनें और बताएं कि आप सभी को ये कैसी लगी है। लेकिन उससे पहले पहले पहले आपका पसंदीदा शो सुन सहेली तो शुरू हो ही चुका है। और जैसा कि सुन सहेली का दस्तूर है कि भाई शुभ दोपहरिया बोले बिना हम शो को शुरू कैसे कर सकते हैं, तो आप सभी को तहे दिल से दोनों की तरफ से, यानी मेरी तरफ से भी और आपकी अपनी आरजे समता की तरफ से भी शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया, दोपहरिया शुभ हो, स्वस्थ हो, बहुत अच्छी हो आप सभी की। चलिए शुरुआत करते हैं पोएम की। तो आज जो हमारा हमारी प्यारी सी पोएम है उसका जो शीर्षक है वो है जीवन का संगीत। सजी है थाल महक रही है, सजी है थाल महक रही है, यह महज सिर्फ आहार नहीं है। थके हुए इस तन मन के लिए, थके हुए इस तन मन के लिए इससे बड़ा कोई उपहार नहीं है। अन्न का एक छोटा सा दाना, अन्न का एक छोटा सा दाना मेहनत की एक लंबी कहानी कहता है। किसान के पसीने की बूंदें, किसान के पसीने की बूंदें और धरती का या खुला आसमां है, या ईंधन है उस ख्वाब का, या ईंधन है उस ख्वाब का जिसे पूरा करने तुम दौड़े हो, या ऊर्जा है उस संकल्प की जिससे तुम हर दिन जुड़े हो। मत करो तिरस्कार, मत करो तिरस्कार इस बरकत का, या तन का सच्चा पोषण है। भर कर पेट पाकर नई शक्ति करना तुम्हें हर बाधा का दमन है। चखो हर स्वाद को आदर से, चखो हर स्वाद को आदर से, या तृप्ति ही जीवन का सार है। स्वस्थ रहेगा जब यह जीवन, तभी तो हर सपना साकार है। स्वस्थ रहेगा जब यह जीवन, तभी तो हर सपना साकार है। बिल्कुल सही। जैसे कि अभी आपने पोएट्री की पंक्तियों को सुना कि उसमें क्या कहते हैं वो, कि जितना आपका जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं बिल्कुल सही, क्योंकि हमारा हर सपना हमारे स्वस्थ शरीर से होता है। क्योंकि जब आपका शरीर सही रहेगा फिर ही आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आप चलते हैं सीधा चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे वो कौन कौन से लिसनर्स हैं जिन्होंने कि अपनी हाजिरी लगा ली है।
तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ दीपांशी तिवारी जी को जो लिख रही है शुभ दोपहरिया दोनों प्यारी न्यारी मैम को, शुभ दोपहरिया आपको भी लिख रही है, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून आपको भी, और साथ ही में सॉन्ग्स भी बहुत पसंद आए, लिख रही है सुपर सॉन्ग, थैंक यू। और प्रबल मिश्रा जी आ चुके हैं, लिखते हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून प्रबल जी, कैसे हैं आप? आप सभी फटाफट से आएं, हालचाल बताएं कि आप सभी कैसे हैं। और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सेगमेंट की तरफ जो कि हमारा है रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। तो भाई देखते हैं कि आज हमारे खाना खजाना के दिन, हमारा इतना प्यारा सा दिन है, तो आज क्या निकला है रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में, तो आज का हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ क्या कहता है, तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कहता है आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। आज हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है कि हमेशा हमेशा जब भी आप बात करते हैं जीवन की सच्चाई की, बात करते हैं कि हमें लाइफ में कुछ मोटिवेट करना है, कुछ जानना है, तो हमेशा कहते हैं ना कि शुरुआत हमेशा खुद से करनी चाहिए। यानी कि हम कोई भी बदलाव चाहते हैं, कोई भी नई चीज़ चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत हमेशा खुद से होनी चाहिए। तो आज का हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ भी यही कहता है कि हर सुधार की शुरुआत खुद से करो। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि कोई भी बुराई है जो आपके भी अंदर है, सभी के अंदर बुराई नहीं कहेंगे बट कुछ गलत आदतें हो सकती हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कुछ आपके बिहेवियर में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें आप चेंज करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि मुझे इन्हें सुधारना चाहिए, या कई बार हम कभी दूसरे को देखते हैं गुस्सा करते हुए तो हम कहते हैं अरे यार वो बहुत गुस्सा करते हैं और उसे कम गुस्सा करना चाहिए, या फिर हम कहते हैं कि अरे उनकी तो ओवर ईटिंग की हैबिट है ना, उन्हें कम खाना चाहिए, या किसी का वज़न बहुत ज़्यादा होता है और उसे उसकी वजह से कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम कहते हैं आपको आपका वज़न कम करना चाहिए ताकि आपको हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। तो इन सारी ही कमियों, या कोई कभी अपने समय का सदुपयोग नहीं करता है तो हम हमेशा उससे कहते हैं कि आप अपने समय का सदुपयोग करिए, क्योंकि समय का असली यूटिलाइज़ करना, उसे अच्छे से यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सारी ही चीज़ों में हम दूसरे को तो सुधार करने के लिए कहते हैं बट क्या हम खुद सुधार करते हैं? हमें ये सोचना होगा कि आप जो भी चीज़ें दूसरे में सुधार देखना चाहते हैं सबसे पहले उसका सुधार खुद में लाएं, क्योंकि अगर हम कोई भी चेंज चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हमें खुद के घर से करनी चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि हर फीमेल जो है वो खुश रहे, उसको इंडिपेंडेंस मिले, उसको रिस्पेक्ट मिले, तो वो शुरुआत आप अपने घर से कीजिए। अपने घर की महिला को आप रिस्पेक्ट दीजिए, उसे इंडिपेंडेंस दीजिए, उसे खुश रखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम खुद से शुरुआत करते हैं और एक आदमी से शुरुआत होती है तो वो धीरे धीरे धीरे धीरे फैलते हुए एक सोच बनती है और पूरे समाज में जाती है। इसलिए बात हो आदतों की या सोच बदलने की, जो भी बदलना है शुरुआत हमेशा सबसे पहले खुद से करनी है, क्योंकि जब खुद से शुरुआत होती है तो अच्छी भी होती है और सफल भी होती है। क्योंकि हमें क्या होता है ना कि हम हमेशा कहते हैं ना अरे मेरा खुद पे बहुत कंट्रोल है। अगर आपका खुद पे कंट्रोल है तो इसका मतलब ये है कि आप खुद की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि हम जो भी अपने अंदर चाहें वो बदलाव हम ला सकते हैं, बदल सकते हैं अपने आप को। तो अगर वो पोटेंशियल आप भी चाहते हैं अपने अंदर तो सुधार करें, कोशिश करें गलत आदतों गलत चीज़ों को छोड़ने की और सारी सही चीज़ों को अपने अंदर लाने की, अपनाने की और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की। वैसे तो हम सभी बेहतर होते हैं पर फिर भी सिर्फ कुछ चीज़ों को, कुछ ऐसी चीज़ों को जो आपके नेचर में ख़राब हैं या ख़राब नहीं भी हैं बट आपको गलती से वो आदतें पड़ गई हैं, तो आप उन्हें चेंज करके खुद को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले करके जा सकते हैं। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं बेहतर से बेहतरीन की तरफ, यानी कि बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ। इस सॉन्ग को सुनते हैं लिसनर्स और सॉन्ग के उस पार आऊँगी, बहुत ही टेस्टी सी एक मेरे पास आज रेसिपी है वो लेकर के, और आपको बताऊँगी कि मतलब क्या कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं ना बहुत लोगों के लिए, मतलब मैंने सुना है और सभी के लिए सुना है कि अगर आपका पेट भरा हुआ हो, अन्न आपके पेट में हो और अगर आपने खाना अच्छे से खाया है तो जब अन्न पेट भरा होता है ना तो मन जो है वो खुश होता है। तो आएंगे सॉन्ग के उस पार और आपके पेट को भरने के लिए, आपके मन को खुश करने के लिए बहुत ही अच्छी सी टेस्टी सी डिश बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये प्यारा सा सॉन्ग सुनेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतराला रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: डिलीशियस
5: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
4: और क्या क्या है खास?
5: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
4: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
8: बिल्कुल, प्यार कभी ना कम होगा, चाहे तुम कितने भी सितम कर लो। मतलब बहुत ही प्यारा सा गाना। और कितने भी तू कर ले सितम, ये प्यार नहीं होगा कम। प्यार तो बिल्कुल भी कम नहीं होगा, और प्यार हम कम होने भी नहीं देंगे, क्योंकि ये प्यार ही है जो आपको और हमें जोड़ कर रखता है। तो चलिए भाई, वादा किया था और वादा किया है तो वादा निभाना भी पड़ेगा। तो वादा निभाते हैं और आपको बताते हैं कि आज हमारे लजीज मंडे में आपको सबसे पहले क्या खाने के लिए मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले सवाल है, तो सवाल का दे देती हूँ मैं जवाब, जो कि सवाल पूछा है दीपांशी जी ने कि समता मैम कहाँ गई हैं मैम जी। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैम कुछ इम्पोर्टेंट काम से बाहर गई हैं, और इसलिए उन्होंने छुट्टी ली है। लेकिन बहुत ही जल्द वो आप सभी के पास वापस आ जाएंगी, क्योंकि मैं जैसे हम मैम को याद करते हैं, उनकी बातें करते हैं, वैसे वो भी हमें याद करती हैं, और याद करेंगी तो जल्दी आएंगी, तो फटाफट से आएंगी, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है। और वैसे मिस तो मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि आज क्या है ना कि जब वो मैम होती है और बैठी रहती है तो मुझे अच्छा लगता है उनके साथ मस्ती करने में, उनको बोलने में कि आप बड़ी हो ना, और फिर जब वो मुझे रिप्लाई करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, याद करते हैं, और याद करते हुए मीठी सी प्यारी सी याद के साथ आज मीठी मीठी डिश बताऊंगी, जो कि है आपके लिए आज सूजी का केक। आज हम आपको सूजी का केक बनाना बताएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सूजी का केक अचानक क्यों बताने वाली है मैम, तो इसके पीछे है कहानी। और कहानी है, मैं आपको बताऊं कि थोड़ी सी पर्सनल, जो कि थी लॉकडाउन के टाइम की। लॉकडाउन यानी कि जब कोविड था, और उस टाइम मेरा बर्थडे पड़ा था, और फिर हमें केक चाहिए था, और केक उस टाइम पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था, मिल नहीं रहा था। तो हमने क्या किया कि हमने सोचा कि पूरा घर में ही केक बनाते हैं, और फिर हमने सूजी का केक घर में ही बनाया। तो आज घर में बनने वाला, बहुत ही आसानी से बन जाने वाला सूजी वाला केक बताऊंगी। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ आपको। तो आपको ले लेनी है सूजी, 1 कप ले लीजिएगा, लेकिन बारीक वाली, जो महीन वाली होती है ना, वो लेनी है। और उसके बाद में आपको ले लेनी है 3 से 4 कप चीनी। चीनी ले लीजिएगा और उसे पीस लीजिएगा अच्छे से और उसका फाइन पाउडर बना लीजिएगा। उसके बाद में आपको ताजी दही लेनी है। याद रखिएगा दही ताजी ही होनी चाहिए, 1 से 2 कप आप आराम से ले सकते हैं। उसके बाद में आपको लेना है मक्खन, मक्खन आपको पूरा 1 ले लेना है। और उसके बाद में दूध लेना है। अब दूध कितना लेना है ये बताते हैं आपको, तो दूध ले लेना है 3 से 4 कप आपको, और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए आपका दूध। इसके बाद आता है मेन हमारा जो कि इंग्रेडिएंट है, जो कि सबसे ज़्यादा इसमें हेल्प करता है, मतलब सूजी का केक बनाने में ना आपको सबसे ज़्यादा मदद यही करने वाला है, जो कि आपको लेना है 1 पैकेट इनो। बिल्कुल सही सुना आपने, आपको 1 पैकेट इनो ले लेना है। वैसे तो आप इनो की जगह बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन इन केस अगर आपके पास बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे आपको 1 पैकेट पूरा इनो का ले लेना है, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, अब आपको लेना है इलायची पाउडर, और इलायची पाउडर के साथ थोड़ा सा वेनिला एसेंस। और इसके बाद आपको ड्राई फ्रूट्स ले लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, जो भी आपके पास है सब ले लीजिए, सारे ड्राई फ्रूट्स। और अब बारी आती है हमारी खट्टी मीठी, जिनका स्वाद थोड़ा खट्टा मीठा होता है और जिनके बिना केक कुछ अधूरा सा होता है, और भाई अगर वो नहीं है ना, उनकी जोड़ी नहीं है तो मज़ा नहीं आता। अब बता देते हैं वो क्या है, तो वो है टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी आपको ज़रूर ले लेनी है, रेड वाली भी ले लीजिएगा, ग्रीन वाली भी ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है केक में जब आप पीस को कट करेंगे और उसमें बीच में टूटी फ्रूटी आएगी ना, ओ माय गॉड, मतलब क्या कहूँ मैं, ऐसा लग रहा है कि मुझे ही मन है मैं घर जाऊँ बनाऊँ और खा लूँ, लेकिन ऐसा अभी मैं नहीं कर सकती हूँ फिलहाल मुझे आपको बताना है। तो चलिए अब हमने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए, अब बताते हैं कि बनाना कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सूजी जो आपने बारीक पाउडर सूजी का लिया हुआ है, अगर वो आपको हल्की आपको क्या करना है, हल्का सा उसे बहुत हल्का सा रोस्ट कर लेना है, मतलब भून लेना है, बहुत हल्का सा, ज़्यादा मत भूनिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपने एक बड़े बाउल में पिसी हुई चीनी लेनी है, दही लेना है, और मक्खन जो आपके पास है वो आपको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेना है। और उसे मेल्ट कर लेने के बाद में इन तीनों ही चीज़ों को डाल करके आपको इसको फेंट लेना है, अच्छी तरीके से फेंट के एक क्रीमी टेक्स्चर वाला बैटर आपको तैयार करना है। जब आप इसे काफ़ी देर तक, मतलब 10 मिनट तक एक ही साइड में इसको फेंटेंगे ना, तो वो आपका एक बढ़िया सा फूला हुआ बैटर तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इस सूजी में आपको इलायची पाउडर डालना है और थोड़ा थोड़ा सा दूध मिलाते हुए आपको इस बैटर को थोड़ा सा घोल जैसा तैयार कर लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको जब ये पूरा दूध आपने डाल दिया और ये बैटर घोल जैसा बन करके तैयार हो गया है, हल्का सा थिन रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रहेगा, थिन रहेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 15 से 20 मिनट के लिए इस बैटर को ढक करके रख देना है ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए। जब ये अच्छी तरीके से फूल जाएगा ना, उसमें खमीर उठ जाएगी, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर क्या होता है ना, सूजी में फूलने के बाद अगर बैटर आपको ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप उसमें 2-3 चम्मच दूध मिला सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितना अच्छा ये बैटर आप रेस्ट पे देंगे फूलेगा ना, उतना ही अच्छा बनेगा। अगर बहुत गाढ़ा है तो ही आप दूध डालिएगा, अदरवाइज़ दूध डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि आपको एक गोल डिब्बा हो या केक टिन हो आपके यहाँ पे, जैसे जो भी हो, कोई अच्छा सा चिकना सा कंटेनर हो बड़ा, उसको ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा बटर नीचे से लगा करके ग्रेसिंग कर लीजिए और थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क दीजिए। आप चाहें तो वो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपका बैटर जो है वो तुरंत आपको इसमें उसमें बटर पेपर लगा करके और फिर आपको इसमें डालना है। डाल दीजिए बैटर को अच्छे से केक टिन में और ऊपर से उसमें टूटी फ्रूटी और कटे हुए बादाम, पिस्ता आपके पास जो भी हैं वो सब आपको डाल देने हैं। और सॉरी, एक स्टेप मुझसे मिस हो गया है कि जब आप इसमें बटर पेपर आप लगा उगा चुकेंगे, उसके बाद आपको बैटर में इनो डाल करके ऊपर से 1 चम्मच दूध डाल, हल्के हाथ से उसको एक ही दिशा में थोड़ी देर के लिए मिलाना है। और मिलाने के बाद आपका ये बैटर जब रेडी हो जाएगा तब आपको इसे केक टिन में डालना है। लेकिन याद रखिएगा कि जब आपने सूखा हुआ मैदा छिड़क लिया है और आपका केक टिन पूरी तरीके से रेडी हो गया है, उसके बाद ही आपको इस बैटर में इनो डालना है और ऊपर से 1 चम्मच दूध डाल करके इसे हल्के हाथों से चलाना है और फिर इसको केक टिन में डाल देना है। ऊपर से टूटी फ्रूटी और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आपको सारे डाल देने हैं। अब बारी आती है कि हमें इसे बनाना कैसे है। तो अब आप चाहें तो एक कुकर ले सकते हैं और कुकर में आपको नीचे नमक डाल दीजिएगा, नमक बिछा दीजिएगा पूरा उस पर और नीचे की परत पे, पूरी वो परत ढक जानी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक स्टैंड लेना है और उस स्टैंड पे उस केक टिन को रख देना है। अब इसे ढक कर आपको तेज आंच पे 10 मिनट के लिए इसको गर्म करना है। अब केक के टिन को पहले स्टैंड को अच्छे से 10 मिनट के लिए आप फुल आंच पे, मतलब फुल आपकी स्टीम रहेगी उस पे गर्म कर लीजिए। अब आपको क्या करना है कि आपको केक को स्टैंड पे रख देना है। अब कुकर की सीटी और रबड़ निकाल दीजिए और उसे अच्छी तरीके से बंद कर दीजिए। अब आपको 35 से 45 मिनट मुझे लगता है लगेंगे, हाँ 35 से 45 मिनट में आपका केक जो है वो पूरी तरीके से बेक होकर के रेडी हो जाएगा। अब 35 मिनट के बाद आप केक के बीच में चाकू या टूथपिक डाल करके देख लें, अगर साफ निकलती है तो आपका केक जो है वो रेडी है, अगर साफ नहीं निकलती है, मान लीजिए उसमें थोड़ा सा लग रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपका केक अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है, आप उसको थोड़ी देर और बेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 35 से 45 मिनट में ना आपका केक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इस केक को पूरी तरीके से ठंडा होने दीजिए। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए फिर किनारों से और चाकू की मदद से आप इसे प्लेट में निकाल लीजिए और अपना स्पंजी बटर वाला सूजी केक एंजॉय करिए। और बहुत ही अच्छा ये इंस्टेंट घर पे बन जाता है। जिन्हें भी मीठा खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है ना कि नहीं मुझे कुछ मीठा खाना है, मुझे कुछ मीठा खाना है, या कभी कभी हमारा मन करता है ना कि चलो केक खाते हैं, तो हर बार हमें नहीं मन होता है कि हम बाज़ार जाएँ लेकर के आएँ। तो अगर आपको भी ऐसी वाली क्रेविंग होती है और केक खाने का मन होता है और बिना बर्थडे के भी बर्थडे मनाने का मन होता है, भाई बिल्कुल आज केक जब भी आता है तो ऐसा ही लगता है कि बिना बर्थडे के हमने बर्थडे मना लिया। तो अगर बिना बर्थडे के बर्थडे मनाना चाहते हैं आप और केक खाना चाहते हैं तो अपने घर पे इंस्टेंट इस केक को बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। और हमारे साथ ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग भी सुने, चलिए चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। बस यूं गए और यूं आए, वापस आऊंगी मास्टर शेफ, यानी कि भाई हमारी मास्टर शेफ का जो समय है वो हो गया है। मंडे और मास्टर शेफ ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इस सॉन्ग के उस पार वापस आएंगे हमारी मास्टर शेफ के साथ और उनकी बहुत ही प्यारी प्यारी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए सुनिए और इंजॉय करिए। स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली। हम आ गए हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के बाद वापस सीधा हमारी मास्टर शेफ के साथ। तो सबसे पहले तो मैम का वेलकम कर लेते हैं। वेलकम मैम, कैसी हैं आप?
4: बिल्कुल ठीक है, सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
3: तो आइए चलते हैं लिसनर्स, जानते हैं कि आज हमारी मास्टर शेफ के पास हमारे लिए पहली रेसिपी क्या है।
4: भाई देखो, इस समय तो सब लोग चिकन की बड़ी डिमांड है।
3: हाँ।
4: तो आज सबसे सरल हम चिकन मंचूरियन सिखाते
3: हैं। ओ वाओ, चिकन मंचूरियन।
4: जी, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉपी पेन ले लीजिए और सामान लिख लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन लेंगे 200 ग्राम।
3: जी मैम।
4: और पत्ता गोभी लगभग वो भी 200 ग्राम करीब लेंगे। हल्का सा पत्ता गोभी उबाल के, भाप देकर के, बहुत गलाना नहीं है, पानी में डाल के उबाल के अलग रख लीजिए। चिकन को आप करके कि मिक्सी में डालिए, जो उसके फ्लैश वाले पीस हैं, हड्डी
3: जी।
4: आप 200 ग्राम ला रहे हैं तो आप उसके फ्लैश वाले पीस लीजिए, मांस वाले, उसको आप मिक्सी में डाल करके और पीस दीजिए और पीस करके अलग थाली में निकाल लीजिए। इतना काम आप सबसे पहले कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे आप, जो सॉस जिसमें हमारा चिकन गोली पड़ेगी सबसे पहले वो बना लें। अब आप क्या करेंगी, टमाटर 6 पके ले लीजिए, खूब अच्छे लाल लाल से, मीडियम साइज लीजिए, ना बहुत बड़ा लीजिए ना छोटे। बड़ा लीजिए तो आप 2 ले लीजिए, और मीडियम साइज ले रहे हैं, छोटे छोटे जैसे आजकल आ रहे हैं
3: जी,
4: वो कम से कम 6 टमाटर लीजिए। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लीजिए, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट लीजिए। अब आप टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ढक दीजिए। ढकने से ये होगा, जो टमाटर का छिलका है वो ऊपर से निकलने लग जाएगा। जब वो निकलने लग जाए तब आप जो है उसको निकाल लीजिए और ठंडा होने दीजिए।
3: जी मैम।
4: उसके बाद आप उसको मिक्सी में डालकर चला लीजिए।
3: जी।
4: जब उसमें वो हो जाए तब आप उसको मतलब पीस करके अलग रख लीजिए। अब आप क्या करेंगी, 1 से 2 चाय का चम्मच आप बटर लेंगी, बटर को कढ़ाई में डाल लेंगी और उसमें जरा सा तेल भी डाल लीजिएगा। अगर अकेला बटर रहता है तो वो जलने लगता है, तो आप बटर को में पहले तेल डालिए फिर बटर डाल दीजिए 2 चाय के चम्मच। उसके बाद उसमें जीरा जरा सा डालें, उसके बाद जो आपने टमाटर पीसा है वो उसमें मिला दीजिए, थोड़ा नमक मिला दीजिए, काली मिर्च मिला दीजिए।
3: जी मैम।
4: और जो कश्मीरी लाल मिर्च आता है, कड़वा तो होता नहीं है, वो थोड़ा 1 चाय का चम्मच वो भी डाल लीजिए
3: कलर के लिए।
4: हाँ, थोड़ा सा पानी दीजिए और कम से कम 2 या 3 उबाल आने दीजिए मध्यम आंच पे, खूब तेज आंच मत करिएगा।
3: जी मैम।
4: अब इसको आप अलग रख लीजिए या उबालते, गैस में तो 2 चूल्हे रहते हैं, 3 चूल्हे रहते हैं, तो धीमी आंच में उबलने दीजिए। अब आप क्या करेंगी, जो आपने चिकन पीस के रखा था और बंद गोभी उबाल के रखी थी, उसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिलाइए।
3: 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर
4: मिलाइए।
3: जी मैम।
4: और उसको नमक मिलाइए, अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाइए, काली मिर्च मिलाइए और उसको ये देख लीजिए आपकी छोटी छोटी गोलियाँ बन रही हैं, आराम से बन जाती हैं। सबको मिला करके एक डो बना लीजिए। डो बनाने के बाद आप अपनी मनपसंद आकार की गोली बना लीजिए। गोलियाँ बना करके डीप फ्राई, उसमें कढ़ैया में तेल डालिए और

0: ये वैसे पुदीना है
1: जी,
0: ये डाल करके आप सूखी पत्तियों में उसको सर्व कर दीजिए
1: जी,
0: जिसको चाहिए तो लीजिए। आपका चिकन मंचूरियन तैयार है। ऊपर से आप जो है प्याज का सागा है, चीज अच्छा लगता है
1: जी,
0: और लहसुन अच्छा लगता है जो महीन महीन चिकन मंचूरियन में ज्यादा था
1: जी, जी।
0: आप उसको अलग अलग से काट करके जब उबाल देनी है उस समय उनको भी दे दीजिए और चीज डाल करके सर्व करिए। जब डोंगे में आप सब निकाल लीजिए तब ऊपर से कद्दूकस करके चीज डाल दीजिए गरम गरम, तो सुंदर भी लगेगा और स्वाद भी आएगा। तो लीजिए आपका चिकन मंचूरियन तैयार है।
1: वाह, मतलब ये तो बहुत ही अच्छी रेसिपी बताई मैम ने चिकन मंचूरियन की। तो लिसनर्स आप भी इसे ट्राई करिए और मैं तो जरूर से ट्राई करूंगी। चलिए चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, बस यूं लौटेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। डिलीशियस
2: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
1: और क्या क्या है खास?
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
1: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवर नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, हम वापस आ गए हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के बाद, फिर से हमारी मास्टर शेफ के साथ। और अभी अभी आप सभी ने सुने टेस्टी टेस्टी चिकन मंचूरियन। तो चलिए अब सीधा चलते हैं और जानते हैं कि नेक्स्ट क्या मिलने वाला है हमें।
5: भाई, अब दूसरा जो है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, गर्मी की छुट्टी आने वाली है
4: जी मैम,
5: तो चॉकलेट केक बिना अंडे का सिखा दे।
4: चॉकलेट केक,
5: क्योंकि बच्चे तो खाते ही रहते।
4: ये तो मुझे भी बहुत पसंद है।
5: तो चलिए, आप लोग कॉपी पेन रखे ही अपने पास। चलिए आप लिखिए, मैदा 2.25 कप। हम इसको ग्राम राम से नहीं लिखा रहे हैं, बिल्कुल सरल उसमें लिखा रहे हैं कि आपके पास जो भी चीज है उससे आप नाप लीजिए। तो मैदा 2.25 कप ले लीजिए, अमूल मक्खन 100 ग्राम पूरा ले लीजिए, थम्सअप की जो थोड़ी बॉटल आती है 100 ग्राम की
4: छोटी वाली जो
5: 100 ml की,
4: जी जी,
5: वो ले लीजिए। सोडा मीठा जो हम लोग घर में चाय, वो छोले ओले उबालते हैं उसमें डालते
4: जी
5: हैं, तो 1 चाय का चम्मच आप मीठा सोडा ले लीजिए। बेकिंग पाउडर भी 1 चाय का चम्मच ले लीजिए, बहुत भर के नहीं, बिल्कुल चम्मच बराबर करके ले लीजिएगा। चीनी पीसी 1 टेबल स्पून ले लीजिएगा
4: जी मैम,
5: मतलब पीस लीजिएगा 1 टेबल स्पून चीनी। मिल्क मेड या मिठाई मेड जो 400 ग्राम का टिन होता आता है उसको आप पूरा टिन ले लीजिएगा। चॉकलेट या कोको पाउडर 2 से 2.5 चम्मच, बाजार में कोको कोका पाउडर या ऐसे करके कोको पाउडर करके मिलता है, वो आप ले लीजिए 2 से 2.5 चम्मच। फिर चॉकलेट एसेंस, क्योंकि चॉकलेट केक बन रहा है इसलिए चॉकलेट एसेंस जरूरी है, 1 चाय का चम्मच। ऊपर से चेरी और थोड़ी से ड्राई फ्रूट्स सजाने के लिए, जो भी आपकी श्रद्धा,
4: जैम वगैरह,
5: चेरी तो जरूर रख लीजिएगा। तो सबसे पहला नंबर क्या करेंगे, मैदे में बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा, चॉकलेट पाउडर डालकर आप 2 बार छानेंगे।
4: जी,
5: 2 बार छानने से ये होता है कि उसमें लगभग हवा सी भर जाती है। एक बार नहीं, हमेशा 2 बार छानना चाहिए। दूसरा नंबर डालिए आप, मक्खन की टिकिया पूरी लेकर उसे मुलायम करें, और जो आपने 1 टेबल स्पून पीसी चीनी है उसको मिलाकर खूब फेंटे। फिर तीसरा, मिल्क मेड डाल करके खूब पूरा मिल्क मेड मिल जाएगा जो 400 ग्राम आपने डाला, चाहे वो मिठाई मेड हो चाहे मिल्क मेड
4: जी मैम।
5: इसके बाद एसेंस मिलाएं, फिर आप उसमें जो आपका थम्सअप है उसको मिला लें, और आराम से खूब एक ही तरफ फेंटिएगा, बार बार नहीं। फिर थोड़ा थोड़ा करके मैदा चम्मच से आप उसमें डालती जाइएगा, जब सब मैदा पड़ जाए तब तक आप देखिएगा कि ये जो है खूब हल्का हो गया है। अगर आपको लगे कि ये गाढ़ा है तो थोड़ा सा दूध मिला लीजिएगा, लगभग 1 टेबल स्पून
4: जी मैम।
5: वैसे मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें थम्सअप भी पड़ा हुआ है। इन सबको करके आप एक केक टिन तैयार कर लीजिए। केक टिन तैयार करने के लिए क्या है कि जो टिन है उसमें आप चारों तरफ घी या डालडा या जो भी आपके पास हो रिफाइंड वो लगा दीजिए। उसके बाद हाथ में वो लीजिए मैदा और चारों तरफ उसकी दीवार पे उस पे जमीन पे आप मतलब टिन की ये
4: जी
5: नहीं
4: जी।
5: है कि आप दीवालों जमीन पे करें है ना, उसमें आप खूब अच्छे
4: जो
5: से,
4: आपने बर्तन लिया हाँ, उस पे।
5: उसमें खूब अच्छे से छिड़क दीजिए। उसके बाद उसको परात में झाड़ लीजिए तो जो एक्स्ट्रा मैदा होगा
4: वो
5: निकल
4: जाए।
5: जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप बटर पेपर ले लीजिए, उसको उसी साइज का काट लीजिए जिस तरह का आपका केक टिन है
4: जी।
5: उसको लगा लीजिए, उसके बाद आप जो ये बैटर तैयार किया है वो उसमें डाल दीजिए खूब अच्छे से, और ऊपर से खूब अच्छे से चेरी और जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो डाल दीजिए। अब आप इसको जो है कुकर ले लीजिए, कुकर में एक वो डालिए क्या कहते हैं
4: जाली जैसा होता है ना मैम, वो जो
5: स्टैंड या कोई कटोरी या उसके ऊपर आप तस्तरी रख दीजिए या जाली रख दीजिए, और जो ये आपका ऐसा लीजिएगा केक टिन जो आपके कुकर में चला जा रहा नहीं है तो आप कढ़ैया में रख के बना सकती हैं, गरम कर सकती हैं
4: जी।
5: आप सब विधि एक ही है कि उसको स्टीम मिलनी गरम मिलनी चाहिए,
4: गरम मिलना है, बेक होना है,
5: बेक होना है, फिर उसको आप कुकर में रख दीजिए और ढक्कन रख दीजिए, पर उसमें सीटी ना लगाइएगा ना उसमें प्रेशर दीजिएगा। कर है तो सीटी आप रबड़ भी निकाल दीजिए, सीटी भी निकाल दीजिए, ढक्कन बंद कर दीजिए और 10 से 15 मिनट आप इसको ऐसे ही धीमी आंच पे छोड़ दीजिए। 15 मिनट बाद आप ढक्कन खोलेंगी तब आपको पता रहेगा कितना आपका केक फूल रहा है या फूल चुका है। वैसे ये लगता है 30 से 35 मिनट एक कुकर में केक बनने में लगता ही लगता है
4: जी मैम,
5: और उससे ये होता है जलता भी नहीं है, खूब अच्छा फूल जाता है। और तुरंत आप निकालिएगा नहीं, जब फूल जाए तो थोड़ा वेट करिएगा, ढक्कन हटा के उसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आप कपड़े से पकड़कर उस डब्बे को आप जिसमें आपने केक बनाया उसको बहुत आसानी से बाहर निकालेंगी। बाहर निकाल के आप देखिएगा अगर गर्म ना हो तो उसके दीवारों पे हाथ से थपथपा करके उसको ढीला कर दीजिए
4: जी।
5: अब जब ढीला हो जाए तब आप क्या करेंगे किसी थाली या किसी में वो उसको उल्टा कर देंगे, फिर आप उसकी जो तलहटी है बर्तन की उसको धीरे धीरे थपथपाएंगी, देखिएगा पूरा केक आपका बाहर आ जाएगा खूब सुंदर सा। तो अब मान लीजिए इधर ऊपर है सजावट करनी है आपको, तब आप नीचे की तरफ कर लीजिए सजावट। अब ड्राई फ्रूट जो अंदर पड़े थे उसको जाने दीजिए, ऊपर से नया सजा लीजिए, चाहे क्रीम ले लीजिए, नहीं तो अब आजकल तो हमने देखा है कि लोग आइसक्रीम डाल देते हैं उसके केक के ऊपर,
4: घर की मलाई से भी आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं।
5: लेकिन ये है तो हाँ घर की मलाई ले लीजिए अच्छे से, उसको थोड़ा सा बटर में डाल के फेंट लीजिए, और आप बच्चों को क्या है बच्चों को घर में देना रहता है इतनी आइसिंग शुगर की जरूरत
4: नहीं होती है।
5: तो सिंपल सा आप केक बनाइए, बच्चों को आप गिलास में या उसमें बाउल में दीजिए, ऊपर से आइसक्रीम दीजिए, कोल्ड ड्रिंक भी डाल के आजकल बच्चे केक को खाते हैं
4: जी मैम।
5: अब आजकल सबका टेस्ट अलग अलग
4: है।
5: तो चलिए आप इसको बनाइए, बहुत सरल है केक। चलिए ठीक है, फिर अब हम फिर से मिलेंगे आपको अगले मंडे को।
4: थैंक यू मैम, और बहुत ही अच्छा केक बताया मैम ने, मतलब मेरे तो सुन के ही मुंह में पानी आ गया। तो लिसनर्स आप भी ज़रूर बनाइएगा इस केक को, और मैं तो ज़रूर से बनाऊंगी, और बना करके फिर हम अपने गेस्ट को भी खिला सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं, बहुत सारी तारीफें भी ले सकते हैं।
5: बिल्कुल।
4: तो चलिए चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में, क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा शहर की धड़कन।
7: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
8: आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा वाला शो सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। बिल्कुल भाई, वापस आ गए हैं हम फिर से आपसे बातें करने के लिए। अभी अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपने सुनी हमारी मास्टर शेफ की रेसिपी, तो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और आप सभी भी इसे अपने किचन में बना के ट्राई करिए। तो चलिए सीधे चलते हैं चैट बॉक्स में, और उसके बाद हम आएंगे आज के कुछ किचन टिप्स पे। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ प्रीति शुक्ला जी आ चुकी हैं, जो कि लिख रही हैं शुभ दोपहरिया मैम। शुभ दोपहरिया आपको भी प्रीति जी, और साथ में लिख रही हैं वाओ टेस्टी केक डिश, थैंक यू। इट्स कुमार जी भी आ चुके हैं, और प्रीति जी लिख रही हैं वंदु मैम को गुड आफ्टरनून, ओके थैंक यू। और अनुष्का जी लिख रही हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून दोनों आरजे मैम को, गुड आफ्टरनून आपको भी अनुष्का जी। आशु मिश्रा जी लिख रही हैं दोनों आरजेश को शुभ दोपहरिया, शुभ दोपहरिया आपको भी आशु जी, कैसे हैं आप। चलिए अब चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, यानी कि हमारी किचन टिप्स की तरफ। तो किचन टिप्स में आज आपके लिए क्या है कि पूरियां जो होती हैं ना, पूरियां वो हम सभी को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन पूरियां कई बार क्रिस्पी नहीं हो पाती हैं। मतलब जैसे किसी किसी को पसंद होता है ना कि बहुत क्रिस्पी चाहिए, तो आज क्रिस्पी बनाने के लिए कुछ मैं आपको टिप्स बताऊँगी, जो कि पूरी तरह जब आप आटा गूंथते हैं ना, तो जब आटा गूंथ चुकते हैं, गूंथते वक्त आप उसमें एक चम्मच सूजी और थोड़ी सी मतलब एक चुटकी से भी कम चीनी मिला दीजिए, और तब आप जब इन्हें गूथेंगे ना, गूथते समय ही आपको एक चम्मच सूजी और थोड़ी एक चुटकी से भी कम उसमें चीनी डाल देनी है। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो इससे जब आप सान चुकेंगे उसके मतलब जब आप उसको गूथ चुकेंगे आटे को, उसके बाद आपकी जो पूरियाँ हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी और साथ ही साथ में टेस्टी भी रहेंगी। क्योंकि सूजी जो होती है ना, जिसे हम सभी जानते हैं ना, सूजी फूल जाती है। तो जब आप आटे में सूजी को डालकर भूनेंगे, सूजी को डाल करके उसको गूथेंगे, तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी पूरी आपकी क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जब भी सब्जी कभी हम बनाते हैं, आप सभी घर में अपनी सब्जी बनाते हैं, तो क्या होता है ना कि ग्रेवी कई बार गाढ़ी हो जाती है। गाढ़ी यानी कि बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है और हमें लगता है अरे ग्रेवी पतली होती तो सही था। तो ग्रेवी को अगर कभी बहुत गाढ़ी हो जाती है और आप उसको पतला करना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं थोड़ा सा पतला हो जाए, या कई बार तेल ज़्यादा हो जाता है तो हम सोचते हैं कि थोड़ी सी इसमें तेल कम हो जाए, तो सबसे पहले तो तेल अगर आप ग्रेवी से बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको फ्रिज में उठा करके आप उसको सब्जी को किसी कंटेनर में निकाल करके और उसको उठा के फ्रिज में रख दीजिए। जब आप फ्रिज में रख देंगे ना, तो उससे जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो उसके ऊपर जम जाएगा और फिर आसानी से आपकी ग्रेवी से निकल जाएगा। और अगर आप अपनी ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, आप उसको पतली करना चाहते हैं, तो पतली करने के लिए उसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। पानी जब आप मिलाएंगे तो वो पतली हो जाएगी, लेकिन ध्यान से कि बहुत ज़्यादा पतली ना हो जाए। मतलब आप अलग से पानी गर्म करके उसमें मिलाइए, तो जब आप पानी गर्म करके मिलाएंगे तो उससे क्या होगा ना कि वो अच्छे से हो जाएगी, मतलब पतली हो जाएगी आपकी ग्रेवी। और अब आते हैं नेक्स्ट वाली टिप पे, जो कि नेक्स्ट हमारी टिप क्या कहती है, वो ये कहती है कि भाई लहसुन छीलते वक्त, मतलब लहसुन छीलते वक्त कहीं ना कहीं सभी को प्रॉब्लम आती है, तो आज मैं आपको एक टेक्निक बता देती हूँ लहसुन छीलने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लहसुन की कलियों को एक पॉलीथिन बैग में रख लेना है और फिर हल्का सा आप चाहें तो बेलन से, मतलब जो बेलन होती है बेलन से ले लीजिए, या हाथों से ही पकड़ करके एक पॉलीथिन बैग में सारी कलियों को डालकर और अच्छे से हाथों से ही पकड़ के मसल दीजिए। आप देखिए कि कलियाँ अलग हो जाएंगी और जो उसके छिलके होते हैं ना वो अलग हो जाएंगे। हरी मिर्च हम सभी अपने घर में यूज़ करते हैं, लेकिन हरी मिर्च आपने देखी होगी कि अगर ज़्यादा संभाल के न रखो तो वो जल्दी सूख जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि हरी मिर्च के सारे डंठल जो हैं वो निकाल लेने हैं और सिर्फ हरी मिर्च को आपको एक एयरटाइट डिब्बे में टिश्यू पेपर पर लगा करके और फ्रिज में रख दीजिए और देखिए कि कितने अच्छे से ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है। अरे अरे एक मिनट, प्रमुख जी कहाँ जा रहे हैं आप, और आपको किसी ने इग्नोर नहीं किया है, बस अभी मैं टिप्स बता रही थी इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया चैट बॉक्स की तरफ, तो आपको इग्नोर नहीं किया गया है और हमारा सुन सहेली में हमको इग्नोर किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, मैंने आपको इग्नोर नहीं किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो सुन सहेली में, प्रमुख जी, और सिर्फ प्रमुख जी का ही नहीं, हमारे सभी लिसनर्स का। तो चलिए अब टाइम हो गया है और आपसे विदा लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए अपना फेवरेट एफएम रेडियो ज्ञान असली 9.6 FM। मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

हाँ जी दोस्तों, तो मूडी वाले मंडे के साथ में मैं हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम लेके, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम कॉलर ट्यून गुंडा। आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो 89.6 एफएम गुंडा शहर की धड़कन, और स्टूडियो का नंबर डायल करना आपने लगातार जारी कर रखा है। जी नंबर वही है 6933164 29, यानी कि 6933164 29। आज मेरा मन भी थोड़ा सा मूडी हो रखा है, और आज मैं पता नहीं क्यों थोड़ा सा आराम की मुद्रा में हूँ। सोचिए सप्ताह की शुरुआत में ही आराम का मन है ना, थोड़ा सा अलग सा, थोड़ा सा डिफरेंट सा, बट क्या करें दोस्तों, गर्मी इतनी है, जहाँ थोड़ा सा ठंडा हवा लगता है इंसान चाहता है थोड़ी देर ठहर जाते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, थोड़ी देर हाँ सुकून के पल बिता लेते हैं। तो हाँ, वक्त हो गया ना आपका, बिल्कुल 3:04 हो रहे हैं आपके स्टूडियो की घड़ी में, और ये वक्त है आपका थोड़ा सा सुकून लेने का। आप अपनी फरमाइशी गीतों को हम तक पहुँचाएंगे, अपनी डिमांड्स को हम तक पहुँचाएंगे, अपनी डेडिकेशन को हम तक पहुँचाएंगे, या फिर कोई प्यारा नगमा जो आप कभी गुनगुनाते थे कहीं, आज फिर से सुनाएंगे हम सभी के साथ मिलके और सुनेंगे भी। तो चलिए चलते हैं, सफर का आगाज करते हैं, आज के शो का आगाज करते हैं आपकी अपनी आकांक्षा की पसंद का एक गाना सुना के। गाना है भाई बहुत ही जज्बातों भरा, मूवी है छोटे सरकार, 90s हिट्स में से एक, उदित नारायण का याग्निक की जोड़ी से लेके आई हूँ मैं आप सभी के बीच में। तो आप भी सोचिए जरा जरा सा इस गाने को सुन के, तब तक हम देखते हैं हमारी पहली डिमांड आज किसकी आई हुई है। फिलहाल ये प्यारी सी डिमांड हमारी पसंद का आप सभी के लिए, एंजॉय द ट्रैक।

0: कैसे मिलते हैं।
1: क्या गाना है, है ना? काफी प्यारा नगमा भाई। छोटे सरकार से बड़े दिनों बाद मुझे लग रहा है जब मैंने ये मूवी देखी थी बचपन के टाइम पे, उसके बाद से आज इतने दिनों बाद मैंने ये गाना एंजॉय किया है। उम्मीद है आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। और आज पता नहीं क्यों मेरा मन थोड़ा सा हटीला हुआ है, और उस तरह वाला नहीं जो फनी वे में होता था, थोड़ा एनर्जेटिक होता था। आज थोड़ा सा विश्राम की अवस्था में जाने का मन है। लेकिन हमारे पास में जो आज डेडिकेशन में दो दो सॉन्ग आए हुए हैं भाई, और दो सॉन्ग हैं। चलिए पहले सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं, और पहले सॉन्ग की डिमांड की गई हमारे दरक्षा अंसारी जी की ओर से, जो हमें सुनती हैं सीतापुर से। और ये सॉन्ग भाई डेडिकेट किसे किया गया है? प्रमुख कुमार जी को फ्रॉम लुधियाना। ऐसा क्यों है ये तो अपने चैट बॉक्स में वो अपने बड़े भाई को जरूर बताएंगे, यानी प्रमुख जी को। लेकिन इनके लिए जो डेडिकेशन का सॉन्ग आया है, चलिए इसको एंजॉय करते हैं। फिर आते हैं कुमार साहब और प्रबल जी के लिए जो डेडिकेशन में सॉन्ग आया हुआ है उसको भी प्ले करेंगे। लेकिन उससे पहले दरक्षा अंसारी जी, इरफान जी और इसके अलावा प्यारी आयत जी, हाँ जी, इन सभी की ओर से, और रिजा जी, इन सभी की ओर से ये गाना हमारे प्रमुख जी के लिए। आइए एंजॉय करते हैं आज की पहली डिमांड को।

गॉड व्हाट अ सॉन्ग भाई, ये गाना जितनी भी दफा बजता है उतनी दफा दिल धड़कता है। क्या खूबसूरत डिमांड थी रक्षा जी, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट डिमांड मेरे पास में आई है मनी शर्मा जी की भटपुरा से, और ये गाना भैया इन्होंने आज तो कमाल ही कर दिया। लास्ट टाइम इन्होंने खुद को और प्रबल जी को डेडिकेट किया था, लेकिन आज पता नहीं किस खुशी में इट्स कुमार साहब और प्रबल जी को डेडिकेट किया। चलिए एंजॉय करते हैं, और एंजॉय करने वाला सॉन्ग है भाई, म्यूजिक सुन के ही आप समझ जाएंगे। और इसके बाद आएंगे समरीन जी की डिमांड के साथ, फिर होंगे हमारे पंडित जी, उसके बाद सतीश जी मुंबई से।

आप जो पूछ रहे, काश मैं आपके सवाल का जवाब ऑन एयर दे पाती। आई एम सो सॉरी, आपका करीजा खुल ले गया है। बचा कुछ आपके पास बहुत खास चीज है, वो मैं आपसे मांगूंगी नहीं, अपने पास ही रखिए। एंजॉय करिए।

कुमार साहब, मुझे भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा हुआ है, वही तो मैंने बोला अनाउंस करते हुए ही। और दरक्षा जी, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा तुन्नू तुन्नू सा सही हो रहा है, पूरा सही हो जाएगा जाते जाते। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग की प्लेलिस्ट ही ऐसी होती है। फिलहाल ये गाना आप एंजॉय करें मनीष शर्मा जी की डिमांड पे, और उसके बाद डिमांड हमारी समरीन जी की।

क्या बात है भाई, बहुत ही प्यार से डिमांड थी, हमें तो बड़ा मजा आया। और अब हम बढ़ेंगे समरीन जी की डिमांड की और उसके बाद आएंगे पंडित जी की डिमांड के साथ में। पर नेक्स्ट डिमांड बताएंगे किसकी है, फिलहाल ये गाना।

मुकेश जी मुझे आपका लिंक नहीं दिख रहा है, प्लीज एक दफा आप फिर से अपने सॉन्ग को भेज दें, मुझे दिख नहीं रहा है इसलिए क्योंकि इसमें मुझे लिंक खाली लिखा हुआ मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट डिमांड की ओर, और डिमांड है हमारे पंडित जी की, आइए एंजॉय करते हैं बड़ी ही प्यारी सी नटखटी सी एक और डिमांड। और ये डिमांड अभी आपने एंजॉय किया है तेरा कसूर या मेरा कसूर, ये गाना था हमारी समरीन जी के डिमांड पे। चलिए 3 से 4 के सफर में आगे बढ़ते हैं पंडित जी के डिमांड।

क्या बात है भाई, हमने मुकेश जी से बोला कि मुकेश जी हमको गाना भेज दीजिए, आपने लिंक लिखवाया है। अब यहाँ पे हमें कह रहे मुकेश जी स्टिक इट इन एनी सॉन्ग, मतलब मुझे किसी भी गाने में चिपका दे। चिपकना आपको इतना अच्छा क्यों लगता है मुकेश जी, मैं जानना चाहती हूँ। वैसे आप दिल से सुनते हैं इसलिए मैं आपको चिपकाने को तैयार हूँ। फिलहाल मजाक था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में दोस्तों। और ये डिमांड मेरे पास में आई हुई है मुंबई से, और मुंबई से ये गाना सुनना चाहते हैं सतीश जी। आइए सुनते हैं आया तेरे दर पे दीवाना।

जी हाँ दोस्तों, कुछ जगहों पे शांत रहना अच्छा होता है, इसलिए दीपांशी जी मुझे मालूम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप लोग की हंसी यूं ही बरकरार रहे। बस इतनी सारी दुआएं ऊपर वाले खुदा से। फिलहाल ये गाना सुनते हैं।

क्या बात है भाई, बड़ा मजा आ गया इस नगमे को सुन के। भाई खुदा की खिदमत में अगर कोई भी फरियाद हो तो दिल के आर पार हो ही जाती है। मजा आ गया सुन के, थैंक यू सो मच डिमांड के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे हम सुरेश कुमार जी की डिमांड की ओर। क्या गाना भेजा है सुरेश जी, कई दफा से हम इसको प्ले नहीं कर पाते थे लेकिन आज जरूर डेफिनेटली प्ले करती है। आपकी अपनी आरजे आकांक्षा 3 से 4 के सफर में आपने ट्यून करके रखा हुआ है 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और आपका अपना शो फोनी फरमाइशी कॉलर ट्यून गोंडा।

मुकेश जी, कुछ जबरदस्ती अच्छी भी होती है, और आप भी, मैं आपको जो सॉन्ग सुनाऊंगी, बाय गॉड आपको अगर पसंद नहीं आया तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। फिलहाल ये बहुत ही खूबसूरत सी डिमांड आप एंजॉय कर रहे हैं, और इसको और एंजॉय करने देते हैं क्योंकि आप सभी को काफी पसंद आया ये नगमा। चलिए मिलकर एंजॉय करते हैं।

जी, और इस गाने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। मुकेश जी का कहना, आकांक्षा जी आप समझ नहीं रहे हैं, क्यों इतनी भोली हैं आप या बन रही हैं, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रही हैं। बात ये ना मुकेश जी, अगर मैं एक बार में समझ जाऊंगी तो आपसे फिर बार बार पूछेगा कौन, ये भी तो सोचिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है महाराष्ट्र से, और ये गाना हम स्पेशली डेडिकेट करना चाहेंगे अपने प्यारे मुकेश यादव जी को, जो हमें दिल से सुनते हैं। और भैया, इन्होंने हमें जो टैगवर्ड दिया है वो कोई नहीं दिया आज तक, और बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, मुझे बोलते हुए। हाँ जी, थैंक यू सो मच मुकेश जी, और आपके लिए स्पेशली ये गाना है, रमेश जी की डिमांड जो आई हुई है महाराष्ट्र से। पर ये गाना काफी दिनों बाद आप सभी भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, और स्पेशली आपके लिए मुकेश जी, एंजॉय करिए।

जी, मुकेश जी का दिल एक दफा घायल हुआ था, फिर हमने उसको पुट्टी से भरवाया, फिर उसके बाद में पुट्टी गल गई बारिश के दौरान, फिर भगवान जी के भजन कीर्तन से भरवाया। अब जाके इनका दिल अगर दोबारा से चोरी हो जाएगा तो उसकी गारंटी हमारी नहीं होगी। पहले एंजॉय करिए इस डिमांड को भाई, इतना एंजॉय करती मैं आप लोगों के मैसेज को जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और मुकेश जी लवली सिंह जी बहन नहीं है, वो भैया जी हैं, सो सिस्टर से उन्हें ब्रदर करिए।

0: मुस्कुरा के दिल मेरा।
1: जी हाँ, और हमारे प्यारे रीवा वाले कुमार साहब का कहना है, चर चरा के चारा मेरा भैंसिया चली पनीर दूध देने डेरी वाले भैया की गली। क्या बात है, वो टाइम इमेजिन। वैसे आपने बताया नहीं, इतना शुद्ध आप सब कुछ बेच रहे हैं, थोड़ी सप्लाई इधर भी कर दीजिएगा। हाँ, ज्ञान असली की ओर, ताकि हम भी खा के हेल्दी बन पाए। फिलहाल ये मजाक था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। काफी मजा आ रहा है आप लोग की चैट्स को पढ़ते हुए भी और शो करते हुए भी, क्योंकि थोड़ा सा आज मन उदास सा था, लेकिन आप लोग के बीच आते ही पता नहीं कैसे मैं हरी भरी हो जाती हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और डिमांड हमारे सुनील कुशवाहा जी की मध्य प्रदेश से। आइए सुनते हैं इनके इस प्यारी सी डिमांड को, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में। और नेक्स्ट डिमांड होगी हमारे अमित कुमार जी की, फिर होंगे हमारे एहसान जी, और नेक्स्ट लाल परी। लाल परी देखते हैं किसकी है लाल परी।

0: आँखों में
1: कुमार साहब अगर हमारे एक नाम हो तो कोई ढंग से लिख भी दे, अगर हमारे 10 अवतार हो तो, पर इंसान कुछ भी देता रहे, प्यार से दी हुई तो हर एक चीज तोहफा होती है और कुछ दुआएं होती है, इसलिए मैं ग्रहण कर लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि आज तक हमारा नाम कोई सही से लिख नहीं पाया। अभी आगे बढ़ेंगे, फिलहाल बढ़ेंगे इस वाले डिमांड के साथ, और अमित कुमार जी की डिमांड है 3 से 4 के सफर में आप एंजॉय करें आपकी अपनी आरजी आकांक्षा के साथ में द मोस्ट फेवरेट शो फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा को एंजॉय द ट्रैक।
2: ब्लड लॉस
3: हो जाऊंगा, हील अटेंडेंट, मुझे जरा घर जाना पड़ेगा।
2: कम

हाँ जी, तो अभी आपने एंजॉय किया फिलहाल का ये ट्रैक, और अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है एहसान जी की ओर से, और इनका कहना भैया इन्हें पीने का शौक नहीं, बस पी लेते हैं कभी कभार।

शुक्रिया दोस्तों। इस डिमांड के बाद बढ़ेंगे शाहिद अंसारी जी की डिमांड के साथ में, जो सुना है मैं मुरादाबाद से और लाल परी मूवी से इन्होंने डिमांड की है। उसके बाद नेक्स्ट डिमांड होगी हमारे देवी प्रसाद जी की, और उसके बाद नेक्स्ट डिमांड हमारे मुमताज अंसारी साहब की। बने रहिए और एंजॉय करते रहिए।

0: को।
1: जी हाँ, वैसे हो सकता है गम छुड़ाने को भी कई दफा आपने उस पे डाल दिया हो कि पेपर शायद गया, और उससे कमाल ही हुआ होगा कि पेपर फट गया होगा, ऑटोमेटिक छूट गया होगा। खैर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड मेरे पास में आई है मुरादाबाद से साहिद अंसारी जी की। फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में देव प्रसाद जी, उसके बाद में हमारे होंगे मुमताज अंसारी साहब, और फिर नेक्स्ट सॉन्ग होगा हमारे विकास तिवारी जी का उन्नाव से।

श्रोताओं, और इस गाने के साथ में अब हम चलते हैं चैट बॉक्स की ओर, रुख करते हैं। भाई बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। सबसे पहला मैसेज मिला है हमें प्रबल मिश्रा जी का और पंडित जी का, और साथ ही में प्रमुख कुमार जी लुधियाना से, द्रक्षा अंसारी जी हैं सीतापुर से, रामकृष्ण नंदन मिश्रा जी बने हुए हैं अलाहाबाद से, मोस्ट वेलकम डियर। और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज हमारे कुमार साहब का रीवा से, सुरेंद्र यादव जी हैं गौरा चौकी से, और नेक्स्ट हमारे लवली सिंह जी आवाज विकास कॉलोनी गोंडा से, इसके अलावा विकास तिवारी जी उन्नाव से हमारे साथ बने हुए हैं। और नेक्स्ट मैसेज में बड़ा ही प्यारा सा लंबा चौड़ा सा मैसेज आया हुआ है, आइए पढ़ लेते हैं। हमारे प्रमुख कुमार जी लुधियाना से लिखते हैं, आरजे कांक्षा की आवाज में जादू सा असर है, ओके, हर शब्द में मिठास, हर लम्हा सुहाना सफर है, जब वो बोलती है महफिल खिल उठती है, उनकी लाजवाब प्रस्तुति दिलों में उतर जाती है। ओ माय गॉड, हमें पता ही नहीं था। अच्छा क्या बोले, क्या छोड़िए, हाँ, सुरों और शब्दों का ऐसा संगम सुंदर लाती हैं, अपनी अनोखी शैली से सबका मन बहलाती हैं। आरजे आकांक्षा की पहचान है सादगी और मुस्कान, थैंक यू सो मच, और उनकी आवाज से रोशन हो जाता है हर इंसान। ओहो, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। गुड मॉर्निंग प्यारी दीदिया, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, बड़ी खुश हुए वैसे हम पढ़ के, थैंक यू सो मच, और काफ़ी अच्छे से वैसे तारीफ कर लेते हैं आप, शुक्रिया। और चलते हैं नेक्स्ट मैसेज की ओर, और नेक्स्ट मैसेज में हमें दिख रहे हैं हमारे प्यारे लिसनर्स, और इसी के बीच में नेक्स्ट मैसेज हमारे पास में आया हुआ है अब्दुल मुजीम साहब का, ठोकरी खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फ़र्ज निभा ही दिया। ओह क्या बात है, क्या गहरी लाइन मारी है, बहुत बहुत सुंदर, एक बार फिर से, ठोकरे खा के भी ना संभले तो मुसाफिरों का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। ये हमें सुनते हैं अहमदाबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया। मिश्रा ऑप्टिकल से अजय मिश्रा जी हमारे साथ में बने हुए हैं अलबिया चौराहे से, और इसके अलावा मुकेश यादव जी गोंडा से, हाँ जी मैम कॉल कर दिया था, जी हाँ मालूम है, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ में है दीपक जी जो हमें सुनते हैं हथिया गढ़ से। दीपक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और नेक्स्ट मैसेज में आप लोगों की चैट चैट बहुत सारी ढेर सारी बातें हैं। अब आगे बढ़ेंगे आज की नेक्स्ट डिमांड की ओर, लेकिन उससे पहले करण गुप्ता जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं, हमारे नए लिसनर हैं, आपका भी मोस्ट वाला वेलकम है। मुस्तफा जी भी भाई तनी भर दिख गए हमको, झांक लिया है इन्होंने, जी हाँ चैट बॉक्स में आके, सऊदी अरेबिया से हमें सुनते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी बीच में रूहानी जी भी आ गई हैं, बहुत बहुत मोस्ट वाला वेलकम है भाई, सखी हमारी मित्राणी है रूहानी जी, बहुत बहुत हार्दिक वाला वेलकम है आपका। और ASIF मुंबई से हमें सुनते हैं, ओके गुड, थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये गाना जब भी हम सुनते हैं हमें हमारे भतीजे जी याद आते हैं, देव प्रसाद जी याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये गाना हमारी माता श्री ने हमको डेडिकेट किया था हमारे भतीजे के साथ में, गाना सुनिए और जानिए कि क्या है इस गाने में।

मुझे ये नहीं समझ आता है मेरा भतीजा बड़ा होगा कहेगा बुआ आप डेडिकेशन में मिले ऐसे गाने बजाती थी, मतलब मैं क्या जवाब दूंगी मुझे भी नहीं पता है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। डिमांड है हमारे मुमताज अंसारी साहब की और उसके बाद हमारे विकास तिवारी जी उन्नाव से, फिर होंगे हमारे अजय मिश्रा जी फ्रॉम मिस्टर ऑप्टिकल एंड देन होंगे हमारे राजू सलमानी जी और रीना शर्मा जी।

सादा के साथ में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है उन्नाव से विकास तिवारी जी की, बहुत ही प्यारी सी मूवी आशिकी का ये गाना आप सभी एंजॉय करेंगे कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में।

जी हाँ, और हमारे साथ में बने हुए प्रेम मौर्य जी फ्रॉम सीतापुर से भाई। और मेरा मन कर रहा है कि जाते जाते इनके डेडिकेशन में एक गाना आज बजा के जाए। ये काफी दिनों से हमें लुका छुपी में सुनते आ रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई गाना नहीं प्ले किया गया है। कुमार टेलर साहब भी आ चुके हैं गौरा चौकी से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत प्यारी सी डिमांड मारे विकास तिवारी जी को, और विकास जी ही गायब हो गए, इतनी देर से अपने गाने की इंतजार कर रहे थे। बहुत खूबसूरत डिमांड है।

आयुषी मैम ने हिरवाया नहीं था, बस आपका नाम पीछे लिखा हुआ था। मैंने देखा तो मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी। एक्चुअली होता क्या, नाम पहले लिखा जाता है गाने बाद में, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। फाइनली आपका गाना मुझे मिल गया था। और अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। अजय मिश्रा जी की डिमांड है LBS चौराहा से, मिस्टर ऑप्टिकल से, और इस गाने को हम डेडिकेट करते हैं अपने प्रेम मौर्य जी को, जो हमें सुनते हैं सीतापुर से। एंजॉय द ट्रैक। काश हमारे चिंटू जी हमें सुनने होते, उनका फेवरेट गाना है।

प्रिय श्रोताओं, इस गाने के बाद में अरमान जी का एक सॉन्ग होगा और उसी में हम राजू जी आपको भी ऐड करेंगे, क्योंकि इस समय मुहर्रम का महीना चल रहा है, डिमांड मेरे पास में बड़ी ही खास आई हुई है, इसलिए इसको प्ले करेंगे। और आज की लास्ट डिमांड लेंगे हम रीना शर्मा जी की रुड़की उत्तराखंड से, और इसी में अपनी प्यारी सी मित्राणी यानी की रूहानी जी को भी ऐड करेंगे। एंजॉय करते रहिए इस ट्रैक को, क्या म्यूजिक है, वाह।

हाँ जी दोस्तों, इस दुनिया में आके अगर दिल नहीं लिया दिया तो फिर क्या ही लिया दिया। लेन देन तो बहुत सारे चलता है, लेकिन दिल का लेना देना एक अलग ही फैंटेसी है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बताएंगे। नेक्स्ट डिमांड है हमारे अरमान जी की, लेकिन उससे पहले हम माफीनामा जारी करते हैं, हमारा जो रोज का बन गया है। तो सबसे पहले माफी मांगेंगे श्रीषा जी आपसे, उसके बाद में हमारे सुरेंद्र यादव जी हैं गौरा चौकी से, रईस साहब आपसे भी माफी है, काजल जी आपसे भी माफी है, राजू जी आपसे माफी नहीं मांग रहे हैं क्योंकि हम आपको ऐड कर रहे हैं अरमान जी के इस प्यारी सी डिमांड के साथ में। और फिर आते हैं आज की लास्ट डिमांड लेकर के रीना शर्मा जी और रूहानी जी के नाम की।

है गुल के मददगार मदद करने को आओ। और कहीं ना कहीं जो इस समय त्योहार चल रहा है उसके उपलक्ष्य में ये प्यारा सा गीत था, और ऊपर वाला हम सभी पे अपनी रहमत बनाए रहे, बस इतनी सी दुआ है आप सभी के लिए। गुलफशान सारी जी भी जुड़ गई हैं सीतापुर से, और लवली सिंह जी आपसे भी माफी चाहूंगी, आज आपकी भी डिमांड मैं नहीं कम्प्लीट कर पाई हूँ, कल आप सभी की डिमांड जरूर कम्प्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आज की लास्ट डिमांड लेते हैं हम अपने रीना शर्मा जी और रूहानी जी की ओर से। अभी मुझे इजाजत दीजिए, आपका शो चल रहा था फोनी फरमाइशी कार्यक्रम, जी हाँ कॉलर ट्यून गोंडा, और आपने ट्यून करके रखा होता रेडियो गाना सिटी 90.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं थी आपकी होस्ट एंड दोस्त आकांक्षा, मिलते हैं कल इसी वक्त आपके शो में, जी हाँ 3 से 4 के सफर में बने रहिए रेडियो गाना स्लीपर। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, बाय बाय।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
2: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
1: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
2: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
1: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
2: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
1: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
9: मतलब
8: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

0: कृष्णकांत जी, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा हूं।
1: हरिश्चंद्र जी, जिस दिन सारे बेटों के बाप आप जैसे हो जाएंगे, उस दिन बेटियां किसी बाप के लिए बोझ नहीं कहलाएंगी।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे रेडियो 11.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। आपका स्पेशल प्रोग्राम शुरू हो गया है गोधूली, और आप सभी को पता है कि इस प्रोग्राम में गोंडा की प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को हम इनवाइट करते हैं। वो किसी न किसी कार्यक्षेत्र को लेकर के रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग एरियाज से आते हैं, उनके काम के बारे में जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे बीच में बेहद अहम बातों को लेकर के हाजिर है डॉक्टर अमित सिंह, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं एंड फिजिशियन होम्योपैथ हैं। सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं आपका अपने इस शो में जिसका नाम है गोधूली।
2: थैंक यू
1: सो मच। और जैसा कि अभी हमने बताया कि भाई बहुत अहम मुद्दों पे बात होने वाली, दरअसल बात इतनी अहम है कि आपका और हमारा जो दिन ब दिन बदलता लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से जो हम डिप्रेशन में आ रहे हैं या टेंशन में होते हैं या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, उसको लेकर के बहुत सारी बातें आज जानने को मिलेगी। और महज जानेंगे नहीं बल्कि उसके उपचार पर भी हम बातें करने वाले। इसके अलावा योगा के बारे में विस्तार से बातें होने वाली हैं। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का ये प्रोग्राम कितना ज्यादा स्पेशल होने वाला है। इसीलिए हम पहले ही वॉर्न कर रहे हैं कि कहीं छोड़ के मत जाइएगा, सुनते रहिए। सो आइए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे जानते हैं उनके बारे में। सर, सबसे पहले तो चूंकि हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और अपने परिवार के बारे में।
2: मैं डॉक्टर अमित सिंह, मेरा जन्म ग्राम बनकटी अर्जुन सिंह, जिला गोंडा में ही हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा केंद्रीय विद्यालय ITI मनकापुर से हुई। मैंने हाई स्कूल वहाँ से पास करने के बाद GIC गोंडा से इंटर किया। उसके बाद फिर तैयारी किया लखनऊ में, फिर पॉट के एग्ज़ाम के थ्रू मेरा सिलेक्शन होम्योपैथी के लिए हुआ। फिर मैंने वहाँ 5.5 साल का कोर्स दिए जीवाज यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ मैंने RML यूनिवर्सिटी से किया, और ये मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा रही। मेरे पिताजी असिस्टेंट इंजीनियर ITI मनकापुर में थे, माताजी शुद्ध रूप से गृहिणी थी। हम लोग का गांव से भी काफ़ी लगाव रहा, और इसलिए हम लोग इस कार्य को और अच्छे से जानते हैं, और जो कार्य हमको मिला है जिला प्रोग्राम का प्रबंधक का, वो और अच्छे से कर पाते हैं, जो कि हमको जमीनी स्तर से हम लोग जुड़े रहे हैं, क्या खान पीन रहा है लोगों का, क्या लाइफ स्टाइल में चेंज हो रहे हैं, सभी चीज़ों के बारे में।
1: बेशक। तो अभी तक आपने बताया कि आपकी क्या प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, और अभी तक की आपने पोस्ट के बारे में बताया, एक क्लिप्स दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। सो वापस एक बार पीछे चलते हैं आपके जीवन में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आपका एम्बिशन क्या था, क्योंकि अभी तो आप डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं, आपने क्या सोचा था, गवर्नमेंट जॉब में ही आने का था या कुछ और प्लानिंग थी कभी आपकी कि आप कुछ और परस्यू करेंगे?
2: एक्चुअली प्लानिंग तो सच पूछे तो सिविल सर्विसेज की ही थी, लेकिन प्लानिंग चेंज होती रहती है। आदमी बच्चा रहता है तो पायलट बनने की कोशिश करता है, अभी कोई और बनता है, कोई और मिलता है कुछ और बनता है। लेकिन फिर मेडिकल में चले गए, तो मेडिकल में फिर जब जाने के बाद आपने इतना समय दे दिया है 5.5 साल, फिर लगता है कि नहीं, जिस चीज़ के लिए है फिर वो आपने किसी की सीट बेकार कर दी है ना, अगर छोड़ के आप किसी और चीज़ में जाते हैं। फिर इसी विधा में आगे बढ़ गए हम लोग, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ भी कर लिया, तो अब इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्लिनिक कर रहे थे, अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं।
1: ऑलराइट, तो मतलब आप भी पायलट बन चुके हैं जैसे हम भी बने थे कभी।
2: अमूमन सभी बच्चे पायलट, कर्नल, कुछ ना कुछ बनते ही रहते
1: हैं। बनते ही रहते हैं,
2: है ना।
1: और मेरे जैसे बच्चे हैं तो हाँ, वो फिल्मों में भी जाते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप तो स्मार्ट हैं, कहीं भी जा सकते
1: हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बच्चों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि वो बचपन में जो कुछ भी देखते हैं और उनको लगता है इसमें बहुत लाइमलाइट है, इसमें बड़ा नाम है या बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, उस चीज में जाने की वो जरूर ट्राई करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि पिताजी का आपको साथ मिला। पिताजी का कभी इस बात पे कोई प्रभाव था कि आपको यही करना है, यही परस्यू करना है, क्या था?
2: नहीं, उन्होंने कभी इस तरह का दबाव तो नहीं डाला, जो ठीक लगे वो करो। उनकी इच्छा कुछ ऐसी नहीं थी कि आप स्पेशली यही करें, जो करो वो ठीक से करो, उसी में नाम करो,
1: जो भी करे उस पे 100% दे।
2: 100%
1: ओके।
2: और उसी में आपको सब कुछ आना चाहिए, ये नहीं आधा अधूरा नहीं, आधे मन से नहीं करना है। उनका जोर इसी पे था।
1: ओके, पढ़ाई लिखाई में किस तरह के आप छात्र थे? बड़े एवरेज थे या टॉपर थे या वीक थे, क्या था आपके साथ में?
2: पढ़ाई लिखाई में तो मैं शुरू से ही ठीक था, अच्छे स्टूडेंट्स में हमेशा गिनती रही।
1: ओके,
2: ध्यान भी रहता था उधर पढ़ने पे, बाकी चीजों में भी रहता था, खेलने में भी रहते थे हम लोग।
1: ओके, यानी आपकी जो गिनती होती थी वो एक अच्छे स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं गिनी जाती थी, ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही अगर आप अच्छे स्टूडेंट थे तो कुछ ना कुछ आपकी रुचि भी रही होगी, तो किन चीजों में आपकी रुचि बहुत रही है बचपन से?
2: अध्ययन में, लेखन शैली में, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी, कुछ कंपटीशन होते थे इन सब पे, और जैसे हम लोग के यहाँ यूथ विंग पार्लियामेंट का एक प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें भी हमने कई बार अवार्ड्स जीते हैं, क्लस्टर पे, फिर जोनल लेवल पे गए, नेशनल लेवल तक गए उस पर काम करते हुए, स्काउट गाइड में भी रहा, उसमें प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान का नहीं लगा मौका कुछ पढ़ाई की व्यस्तता के कारण, लेकिन द्वितीय सोपान तक उसमें पास किया हमने। ऐसे ही चलता रहा, पढ़ाई के साथ साथ जो भी और एक्टिविटीज थी उसमें कुछ ना कुछ करते रहे। खेलने में बैडमिंटन का शौक था।
1: खेलने में बैडमिंटन का शौक था, ओके। मतलब एक तो आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया कि आप उस तरह के छात्र थे कि आपको नई चीजें करने में बड़ा मजा आता था, यानी कोई भी चीज अगर नहीं आपने देखा कि अध्ययन के अलावा भी कुछ है तो उसको जब तक कर ना लें, उसको जान ना लें, मतलब वो एक होता ना जिज्ञासा होती है
2: जी।
1: तो ये बड़ी अच्छी बात है, और एक छात्र जीवन में तो इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। आपने बताया कि आपको कई सारे अवार्ड्स मिले, आप क्लस्टर लेवल पे गए, आप उससे ऊपर भी गए, ये बहुत अच्छी बात है। डिबेट की आपने बात की, अगर हिंदी में बात करें तो उसका लोग बोलते हैं बहस
2: जी,
1: और यूं तो हम मार्केट में बहुत सारी बहस देखते हैं, तो आप कौन सी बहस करते थे?
2: बहस तो कई प्रकार की है, हम लोग सकारात्मक बहस की बात करेंगे ना, जिससे कुछ अर्थ निकले
1: जी।
2: एक आप गए सब्जी लेने, वहां से बहस कर रहे हैं, पैसा छुड़ा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, सब्जी लेने वाले से अगर इस पे बहस हो जाए आपकी, ये सब्जी अच्छी नहीं है, कहाँ से लाए हो, ऐसे अच्छी आ सकती थी तो अच्छा है, लेकिन आपकी बहस यहाँ से हटाओ, ऐसे करो, दो चार चीज फ्री दे दो, तो वो नकारात्मक हो जाती है। आपको लेना है कि आपको बहस में सकारात्मक चीज खोजनी है, नकारात्मक खोज, मिलेगा तो दोनों, च्वाइस आपकी है, आपको लेना क्या है, बहस करनी किस पे,
1: बहस करनी किस पे, मतलब ये डिपेंड करता है। वाह, वेरी नाइस, आपने कहा कि भाई किसी चीज को एक तो नेगेटिव बहस होती है, एक होता है कि वो कंस्ट्रक्टिव होती है, कुछ निकल के आता है, कुछ अच्छी चीजें निकल के आती है। आपको क्या लगता है कि जो पेरेंट्स हैं उनके हिसाब से बच्चों को उनको इस तरह के मौके देने चाहिए, और जो बच्चे डिबेट्स वगैरह जैसी चीजों में रहते हैं उनकी बुद्धि पे इसका क्या असर पड़ता है?
2: देखिए, मैं तो चाहूंगा कि पूरी तरह छूट देनी चाहिए, उनको वॉच करें, गाइडेंस बहुत जरूरी है, लेकिन दबाव ना डालें। अगर कुछ खेलना चाहते हैं या किसी कंपटीशन भाग लेना चाहते हैं, करने दीजिए, आप नहीं करने देंगे तो बंध जाएंगे बच्चे, फिर बौद्धिक विकास नहीं हो सकता उससे। आप जबरदस्ती की किताबें रटवा लें, 10 किताबें रख दें, पढ़ लें, तो आप क्या करेंगे पढ़ के? इस तरह की पढ़ाई आपकी किसी काम नहीं आ सकती। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, तो आप कुछ बन सकते हैं, लेकिन आप फिजिकली फिट नहीं, आप कुछ भी बन जाए, आप दिन भर उसी में परेशान रहेंगे, दवाओं में परेशान, मेंटली फिट नहीं है तो आपका मन नहीं लगेगा अपने कार्य में, फिर आप चाहे जो बन जाए, पूर्णतः आपने 100% नहीं दे सकते। आपने भी देखा होगा, जिस दिन आपकी तबीयत खराब हो जाएगी आप नहीं बैठ सकते यहाँ पे।
1: बेशक, मतलब आपके सिंपल सा कहने का मतलब, अगर मैं ऐसा एग्जांपल दूं कि आप घूमने निकले हैं पहाड़ियों में और आपने 3-4 झोले टांग के रखे हैं, लगातार टांग के रखे हैं, तो आपका बार बार जहन जाएगा, कंधा दर्द हो रहा है, हाथ में पकड़ा हुआ है इसको रखेगा, मतलब आपको खाली हाथ जाना, तब तो आप एंजॉय कर पाएंगे, और यही लाइफ है शायद, कि आप बैलेंस कर लें, अपना मेंटली तौर पर भी आप फिट रहे और फिजिकली तौर पर भी। वाह क्या बात है, ये तो बहुत खूब आपने कहा। अब मैं आपसे जानना ही चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत सारी एक्टिविटीज में हमेशा भाग लिया है, आपके टाइम पे क्या आप भी आज के जैसे वो अकेले रहने पे विश्वास करते थे क्या, कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, खेलकूद में मैं अकेले लूंगा, सारा काम मैं अकेले कर लूंगा, क्या था और अभी क्या मानना है आपका इस चीज को लेकर?
2: देखिए, उस वक्त मैं क्या कोई भी अकेले नहीं रहता था, मोबाइल नहीं था सोशल मीडिया नहीं था, है ना, सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग निकलते थे हालचाल पूछने के लिए, आपको 4 बार किसी दोस्त के घर जाना पड़ता था, है हो भैया कि नहीं हो, आप क्या था, आपने मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप पे आ गया, कॉल कर लिया, ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, टेलीफोन लगे थे, लिमिटेड लोगों के यहाँ लगे थे, महंगी काल दरें हुआ करती थी। अगर आपको याद होगा कि थोड़ा सा हालचाल पूछने में 10 से 15 रुपए लग जाया करते थे, और जब उस 10-15 रुपए की बहुत वैल्यू हुआ करती थी।
1: बेशक बेशक,
2: तो आपको किसी दोस्त से मिलना होता था तो उसके घर जाना ही पड़ता था, वो भी साइकिल चला के जाना पड़ता था, तो आपकी बॉडी फिट रहती थी, खेलने जाना प्लान करना है तो सब मिलके एक साथ बैठते थे, है ना, क्रिकेट मैच होता था, 2-2 रुपए के चंदे लगते थे बच्चे फिट रहते थे, मेंटली फिट रहते थे,
1: मेंटली फिट रहते थे,
2: तुमने दिया कि नहीं दिया,
1: सामाजिक मूल्यों को जानते थे, मिलते जुलते थे रहते थे, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को लेकर के रेस्पेक्ट की जो भावना हम सम्मान की बात करते हैं, एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, डायवर्सिटी की जो हम बात करते हैं कि विविधताओं को एक्सेप्ट करने का मादा था। बेशक सही कहा आपने, चूंकि आपने भी अपना जो बचपन गुजारा है वो कुछ इस तरह ही गुजारा है, लोगों से मिलना जुलना, सोशल रहना, खेलना कूदना पढ़ना सब उन्हीं के साथ में, यानी एक शानदार बचपन आपने बिताया है। और इस वक्त जो हमारे शो को जेंजी यानी आज की जो जनरेशन सुन रही है वो सिर्फ इमेजिन कर रही होगी कि कितना खूबसूरत जिंदगी हुई करती थी इससे पहले, क्या बात है। सो फिलहाल हम बता दें कि अब हमारे एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो गया है। हमारे साथ में आज मौजूद है डॉक्टर अमित सिंह सर, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं और फिजिशियन हैं होम्योपैथ के। आने के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर वो किस चीज के लिए हैं, कौन सा मिशन चला रहे हैं और कौन से मिशन से हम लोगों का क्या फायदा होने वाला है। सो आइए मिलते हैं ब्रेक के उस पार, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: डिलीशियस
5: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
4: और क्या क्या है खास?
5: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
4: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
7: गोंडा शहर की धड़कन।
8: ब्रेक के बाद एक बार वापस से स्वागत करते हैं आपका अपने शो जिसका नाम है गौधरी। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, और आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान आपके साथ में मौजूद है। आज जो चर्चा हो रही है और होने वाली है वो बहुत ही अहम मुद्दों पर हो रही है। सो फिलहाल आइए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे वापस से बात करते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ में गेस्ट के रूप में मौजूद है डॉक्टर अमित सिंह, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं और फिजिशियन हैं होम्योपैथ के। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर आयुष मिशन के, इसके बारे में बताइए कि आखिर ये आयुष मिशन है क्या और आपकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज है?
9: देखिए, मेरा पद जो है वो हिंदी में आप समझिए जिला कार्यक्रम प्रबंधक का, आयुष मिशन। इसमें आयुष का AYUSH करके लेते हैं इसमें हम लोग। ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी, इन सभी को एक साथ मिला के एक मंत्रालय बनाया गया आयुष। उसके तहत कुछ मिशन में मतलब है कि कुछ ना कुछ नए प्रोग्राम को जोड़े गए, कैसे हम लोग पुरानी पद्धति की जो दवाइयाँ थी उन पे ज़्यादा फोकस करें। मॉडर्न मेडिसिन पे इतना दबाव बढ़ रहा है, भीड़ लगी है, लाइन लगी है, आपको प्रॉपर टाइम में इलाज नहीं मिल पा रहा है, शहरों में भगना पड़ रहा है। तो इनका मेन उद्देश्य ये था कि आप अपने किचन से स्टार्ट कीजिए, आपकी किचन में ही तमाम मेडिसिन रखी हुई हैं, आप जानते नहीं हैं तो इसलिए आप भग रहे हैं।
8: वो क्या आप उन्हीं की बात तो नहीं कर रहे, दादी नानी के नुस्खे जिन्हें?
9: हाँ, कह सकते हैं। अच्छा था, मतलब उसमें नीम हकीम खतराए जान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है वैसे ही, है ना। सबको पता था कि अदरक और शहद लेने से खांसी ठीक होती, लेकिन अब विश्वास घट गया तो अब लेंगे ही नहीं। आप तुरंत पहुँच गए किसी सिरप लेने के। ठीक है, सिरप भी लीजिए, जब जरूरत पड़े तब लीजिए, पहली शुरुआत यहीं से कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा। योगा कर लीजिए, भूल गए हम लोग शुद्ध चीजों को खाना, भूल गए हैं। अब सब लोग फास्ट फूड खा रहे हैं इसलिए बीमार रह रहे हैं। तो एक मिशन ये चलाया गया, भारत सरकार की इच्छा थी, तो उसके तहत ये मिशन जो चल रहा है, इसमें ये है कि सभी लोग स्वस्थ हों और नेचुरल तरीके से स्वस्थ हों, आपको साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, इस पे जोर है भारत।
8: ओके, तो अगर मोटे मोटे तौर पे हम समझे तो जो हमारी भारत सरकार है उसका ये विजन और मिशन है कि कहीं ना कहीं लोगों को हेल्दी रखा जाए पारंपरिक तरीकों से, घर से ही वो खुद का ट्रीटमेंट कर पाए। और जो आपने कहा कि मॉडर्न मेडिसिन पे आजकल जो बोझ बढ़ता जा रहा है, लोग उसके तरफ भागते जा रहे हैं, उसकी जरूरत ना हो। और शायद आपने ये भी जो बात कही, आपकी बातों से निकल के आ रहा कि कई ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें होती है जैसे खांसी, बुखार, जुकाम, इनका शायद ट्रीटमेंट खुद ही हम कर सकते हैं घर पे रह करके आराम से, जब तक के लिए हमको ये महसूस ना हो कि अब चीजें हमारे हाथ से निकल रही है और हमको डॉक्टर के यहाँ अब जाना ही पड़ेगा। और आपने बताया कि इसमें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कुछ बहुत सारे इलाज होते हैं, योगा से कर सकते हैं, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथ है, इसमें से कुछ नाम से तो हम बहुत अच्छे से चिर परिचित हैं, और हम चाहेंगे कि एक बार आप भी हमको ये आयुष में जो AYUSH है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते चले कि आयुर्वेद क्या है, योगा क्या है, यूनानी क्या है, सिद्धा क्या है, और होम्योपैथ के बारे में।
9: देखिए, अभी अपने भारत सरकार ने इसको चलाया इस मिशन को, उसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार इसको आगे बढ़ा रही है
8: जी।
9: इसमें ए से जो आयुर्वेद का, तो आप लोग सब परिचित हैं ही हैं कि हम लोग की जड़ी बूटियाँ थी आयुर्वेद से है, चाहे तुलसी का पौधा हो या लेमन ग्रास हो या और चीज़ें जो आप लोग जानते हैं, इलायची हुआ, ये सब चीज़ें इनका क्या प्रयोग है, इस तरीके जो जड़ी बूटियों का यूज है ये हो गया आयुर्वेद से, और कुछ ऐसे जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तो आप थोड़ा बहुत तो आयुर्वेद के बारे में सब लोग जानते हैं पर बहुत गहराई से नहीं जानते हैं, ये भी मानना पड़ेगा। हम सब आयुर्वेदिक डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं,
8: बिल्कुल,
9: लेकिन ऐसा है नहीं। अब उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं योगा के लिए। सबको लगता है कि हमने देखा और टीवी में देखा योगा, अच्छा यूट्यूब में देख लेंगे किस बीमारी पे कौन सा योगा करना है, तो ऐसा नहीं कि आप सारी चीज़ों को खुद जान पाएं। कभी कभी होता है हम लोग उल्टा योगा कर लेते हैं, है ना, इसके लिए क्या एक बढ़िया प्रशिक्षक चाहिए होता है।
8: तो थोड़ा सा आपको रुकना चाहूंगा, ये उल्टा योगा आपके कहने का क्या मतलब है?
9: जैसे हम लोग टीवी में देख रहे हैं, अब हमको ये समझ में आ रहा है कि सांस लेना है कि छोड़ना कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी आवाजें एक ऐसी आती है, अब एक प्रशिक्षक के सामने बैठेंगे तो वो टोक देगा आपने ये गलत कर दिया, या आप योगा करते करते इधर झुक गए, इधर मत झुकिए। टीवी में तो आपने देख लिया कि हाँ सीधा सीधा बैठना है सब कुछ, पर क्या एक्चुअल में आप सीधे बैठ के कर रहे हैं, उस मुद्रा में कर रहे हैं? ये सामने वही समझिए, जैसे बच्चे को तो किताब दे दीजिए वो पढ़ सकता है घर पे, लेकिन आप विद्यालय क्यों भेज रहे हैं? इसलिए कि सही मार्गदर्शन मिले,
8: मार्गदर्शन मिले।
9: तो कौन देगा? वो प्रशिक्षक देगा, वो ज्यादा अच्छा देगा। हो सकता है कुछ लोग अपने मन से भी अच्छा कर लें, बहुत अच्छा कर लें, लेकिन पूर्णतया सभी लोग नहीं कर सकते, इसके लिए उनकी जरूरत है। ऐसे ही फिर एक यूनानी है, जी, पद्धति है, ये भी आयुर्वेद के से मिलती जुलती है, लेकिन यूनान से है, उसके जो खोज थी वो यूनान से थी।
8: ओके,
9: हाँ, इसलिए यूनानी है। और होम्योपैथ जैसे आप जानते हैं जर्मनी से इसकी निकली हुई पद्धति, उसमें भी मदर टिंचर्स बनते हैं, वो भी आयुर्वेद से लिए आते हैं। मतलब हमारा बेसिक तो देखेंगे जो भारत की सबसे पुरानी पद्धति आयुर्वेद है, मूल जननी तो हम उसी को मानते हैं, निकले वहीं से सब कुछ। सिद्धा भी है, वो भी नेचुरोपैथ से जुड़ी होती है। तो अब इन सभी चीज को मिला के एक छत के नीचे, भारत सरकार का ये मंशा है कि एक छत के नीचे इन सब की व्यवस्था की जाए, और वहाँ प्रशिक्षित डॉक्टर जो रखे जाएं, जो प्रशिक्षक रखे गए हैं, उनसे आप पहुंचकर दवा ढंग से ले सकें। अपने मन से मत ले लीजिए, वो आपके तय करेंगे कि भाई इस बीमारी में आपको क्या लेना है, आप मत तय कीजिए कि हमको यही लेना है, कुछ चूक हो सकती है आप इसलिए।
8: और वो जो एडवाइस आती है कि हमारी चाची तो ये कहती है, हमारी नाना ये बताते थे, हमारे फलाने, क्योंकि आपने ये चीज अभी कोट किया कि खुद से आपको नहीं बनना है डॉक्टर, यानी इसके स्पेशली डॉक्टर्स होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं जो कि ट्रेंड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, और कहीं ना कहीं शायद यही वजह होती है नेगेटिविटी की कि हम खुद से चीजों को इस्तेमाल करते हैं और कुछ अगर बाई चांस चीजें नहीं सही हो पाती तो हमको लगता है ये वर्क ही नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती है। तो आपने कहा कि ये जो पांच तरह की पद्धतियां हैं इनको एक छत के नीचे लाने की कोशिश सरकार के जरिए की जा रही है। अच्छा, चाहे आयुर्वेद की बात किया जाए, योगा की बात किया जाए या होम्योपैथ की, एक चीज सब में कॉमन कहा जाता है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्या ये सच है?
9: देखिए मोटी मोटे रूप से आप कह सकते हैं, पर ऐसा नहीं है पूर्णतया। हम लोग इसको हमेशा 100% नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ योगा आपने गलत कर दिया तो उसमें भी आपको नुकसान होता है, बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, पता चला कि आप गए थे दूसरी बीमारी के लिए, ठीक करने के लिए दूसरी बीमारी लेके चले आए। ऐसे आयुर्वेद में भी कब क्या खाना है, आपने भी सुना होगा दही के साथ ये चीज नहीं खाना चाहिए,
8: कॉम्बिनेशंस जो
9: होते हैं ना,
8: बिल्कुल,
9: तो दूध के साथ मछली नहीं खाना चाहिए, ये सब चीज कॉम्बिनेशन कैसे जाना आपने? नुकसान तो है नहीं, तो फिर तो कभी भी कुछ भी खा लीजिए आप,
8: कुछ भी खा ले, सही बात है ना,
9: कटहल के साथ दूध नहीं पीना, तो ये ऐसी ऐसी चीजें जो है, तो ये भ्रांतियां तो है नहीं, ये फैक्ट है। तो इसको बताने के लिए कौन होगा? इसीलिए डॉक्टर साहब, इसीलिए आपको सभी चीज की इलाज खुद नहीं करना चाहिए, लोगों से मिलिए।
8: तो आपने ये चीज बताया कि साइड इफेक्ट उस तरह तो नहीं होता है जैसे मॉडर्न दवाओं में हमें अक्सर देखने को मिल जाता है, लेकिन ये है कि इससे फायदा ये है कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करते तब तो आपको साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होने वाला, लेकिन अगर इसमें आपने थोड़ा सा अपने हिसाब से करने की कोशिश की और आपको वहां पे ज्ञान नहीं है तो शायद आपके लिए थोड़ा सा चीजें फिर उल्टी पड़ सकती है। चलिए, ये बात तो बहुत अच्छी है। अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे, आपने कहा क्योंकि आयुष मिशन के तहत ये सेंटर्स यहाँ चलाया जा रहा है गोंडा में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में प्लीज बताइए कि किस तरह के सेंटर्स हैं, कितने सेंटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, इस वक्त कितने प्रशिक्षक हैं आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, और उन सेंटर्स पे किस तरह से लोगों को योगा कराया जाता है, ट्रेन किया जाता है, लगभग कितने लोग आते हैं और किस तरह से वो लाभ पा रहे हैं इन सारी चीजों से?
9: देखिए, ये सेंटर्स पूरे जिले भर में लगभग सभी ब्लॉक्स में हैं, और ये वेलनेस सेंटर में योगा प्रशिक्षक रखे जाते हैं, जो डॉक्टर्स वहाँ हैं ऑलरेडी वो दवा लिखते हैं, उसके साथ में आपको बताते हैं कि इसमें ये योग जरूरी है, तो वो योग सिखाने के लिए प्रशिक्षित योगा प्रशिक्षक रखे गए हैं, एक महिला रखी जाती है और एक पुरुष, और वो दोनों लोग आपकी हेल्प करते हैं कि आपको इस बीमारी में ये करना है, आपको एक दिन सिखाएंगे, दो दिन सिखाएंगे, फिर आप उसके बाद अपने घर पे जाकर कर सकते हैं। अच्छा, अभी लोगों को मालूम भी नहीं है कि वेलनेस सेंटर चलते हैं, अब धीरे धीरे हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम लोग बताएं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, इसमें आप कहीं भी जाइए और सीखें और लोगों को जोड़ें। हमारा कहने का मतलब है आप पूरे मोहल्ले में भी अपने बताएं कि आप जाइए भैया, इस चीज़ का पैसा मत खर्च कीजिए, सरकार आपके लिए पहले से व्यवस्था करके रखी हुई है। तो बस यही उद्देश्य है इसका।
8: ओके, तो आपने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो अगर हम चूंकि सिटी में बैठे हैं इस वक्त, अगर हम सिटी की बात करें तो यहाँ पे कहाँ पे कोई आपका सेंटर चल रहा है? जी,
9: यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीछे होम्योपैथिक डिपार्टमेंट, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ वेलनेस सेंटर चलता है।

0: लिखता नहीं है उसमें कि आप जा रहे हैं तो किसी लिखवाना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, भ्रांतियां हैं कि ऐसे जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं बैठे होंगे, नहीं, सब प्रॉपर वे में बैठ रहे हैं, आपको मिलेंगे, आप जाइए अपना इलाज कराएं।
1: टाइमिंग आप बता सकते हैं क्या लगभग टाइमिंग होती है?
0: टाइमिंग जो ओपीडी की टाइमिंग होती है डॉक्टर्स के, वही टाइमिंग रखी गई है कि आपको अलग से परेशान ना होना पड़े।
1: अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ओपीडी के टाइम पे ही आपके ये काम भी हो जाता है। तो एक फीमेल एक मेल आपको योगा इंस्ट्रक्टर वहाँ पे मौजूद मिलेंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि आपने बताया कि इस तरह से सेंटर्स चल रहे हैं। और अगर हम ऑल ओवर गोंडा की बात करें तो कहाँ कहाँ इस तरह के सेंटर्स हैं, क्या और भी यहाँ की जो तहसील हैं, ब्लॉक्स हैं, वहाँ भी क्या इस तरह के सेंटर्स हैं?
0: देखिए, एक सेंटर पंडरी कृपाल में है
1: जी,
0: एक गोंडा प्रॉपर में है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पीछे, मैंने आपको बताया उसी कैंपस में है हॉस्पिटल के, और उमरी बेगमगंज में है, पकड़ी में है, दूरस्थ इलाकों में भी है, मतलब ऐसे कई सेंटर्स चल रहे हैं और हर जगह योग प्रशिक्षक रखे गए हैं। सरकार की ये नीति है कि गांव के दूरस्थ इलाके में भी आपको अच्छे से अच्छी आयुष की सुविधाएं मिले, जैसे आपको वहां से चल के शहर में ना आना पड़े, 50-50 किलोमीटर दूर तक सेंटर है, तो आपको यहां आने के लिए परेशान ना होना पड़े, तो आपके घर के नज़दीक में जो सेंटर हो आप वहां जाएं और अपने लिए इलाज करें।
1: तो मोस्टली ये सेंटर्स आपको CHCs के पास में या जो हॉस्पिटल से वहीं मिलेंगे, जो सरकारी हॉस्पिटल से?
0: ऐसा ही है।
1: ओके, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आयुष मिशन के तहत पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त अगर आपके अकॉर्डिंग हम माने तो सारे ही ब्लॉक्स में और सारे ही तहसीलों में इस तरह के सेंटर्स चलाए जा रहे हैं जिसमें योगा इंस्ट्रक्टर्स होते हैं और लोगों को उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग या फिर बेसिक एक्सरसाइजेस जो होते हैं या योगा होते हैं उनको बताया जाता है, उनको हेल्थ के लिए अवेयर किया जाता है। आपको क्या लगता है इसमें किस तरह से, अब चूंकि आप बता रहे हैं इस वक्त और आप DPM भी हैं, लेकिन सुनने वाले इस वक्त आपको बहुत सारे सुन रहे हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है इसको सुनने और समझने के बाद किस तरह से लोगों तक पहुंचाएं? और लोगों तक क्या, मुझे लगता है कि मुझे खुद भी जरूरत है, हर इंसान को जरूरत है, मतलब ये नहीं कि आप जवान हैं, आप बैठे हैं और आपका फिगर ऊपर से लेकर नीचे तक मेंटेन दिख रहा है, तो इट मींस कि आप मेंटेन है। तो क्या लगता है कि योगा कितना ज्यादा जरूरी है, उस तरह के सेंटर्स का लाभ कितना उठाया जाना चाहिए?
0: देखिए, हम तो चाहेंगे 100% उठाया जाए। अब सबको ये तो नहीं कह सकते कि आप बीमार हैं, सामने वाले को तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कोई किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो उसको कह दिया, उसको गुस्सा आता है ना कि हमारा बिगड़ा है, लेकिन योगा सबको करना चाहिए, योग करेंगे निरोग रहेंगे। अब सुबह उठना सबको मालूम है अच्छा है, लेकिन सब लोग तो उठ नहीं पाते हैं। खाना सबको मालूम है कि 12 बजे दिन में खा लीजिए, रात में 8 बजे खा लीजिए, 11 बजे तक भी खाते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, TV नहीं देखना चाहिए 9 बजे, पहले सबको मालूम था, TV कम से कम 10 फीट की दूरी से देखनी चाहिए, सबको मालूम था, अब 10x10 के कमरे ही हो गए हैं, है ना?
1: जी।
0: मोबाइल स्क्रीन आप गुलांक से सटा के देख रहे हैं, तो वो जो चीज़ें पहले हुआ करती थी जिसको हमको आपको जानकारी थी, अब वही भूलते जा रहे हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ को व्यवस्थित, क्योंकि हम लोग मोबाइल से दूर हो नहीं सकते, सोशल मीडिया से दूर हो नहीं सकते, क्योंकि इतना वर्कलोड है लोगों को, 8-8 बजे रात तक लोग कंप्यूटर पर काम करते, तो काम छोड़ा नहीं जा सकता, उसी बीच में कुछ ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे आपको अपने लिए, शरीर के लिए, नहीं तो कहने को तो हर व्यक्ति स्वस्थ है, जब तक स्वस्थ है तब तक चल रहा है, जब अस्वस्थ होता है तभी उसको लगता है कि ये दिक्कत। इसीलिए आज आप देखिए अमूमन 50% से ज्यादा लोग हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं 40 की उम्र में। 40 की उम्र में तो पहले लोग सुनते ही हंसते थे कि 40 की उम्र में हो गए, लेकिन अब ये कॉमन सी बात हो गई। इसीलिए आप योग करें कि कम से कम जो बीमारी, जिस पहले सुनते थे कि बुढ़ापे के रोग हुआ करते थे, ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज होते थे, अब आप देखते हैं कि 35 साल के व्यक्ति को हो गया, आजकल तो अपने पेपर्स में पढ़े होंगे कि 18 साल के लड़के को हो गया, उसकी डेथ हो गई बेचारे। तो ये घटनाएं क्यों हो रही है? खान पीन आपका बिगड़ गया और फिजिकल एक्टिविटी आपकी खत्म हो गई, आप मशीन से काम करने लगे, खुद भी मशीन बन गए, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए या तो लोग पसीना बहाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी जागरूक करें और 100% लोग इसमें काम।
1: बेशक, और आए दिन चूंकि हम सुनते हैं कि भाई योगा डे पे यानी वर्ल्ड योगा डे जब होता है तो उसकी टैगलाइन हमेशा चेंज की जाती रही है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, क्यों की जाती रही है? क्या योगा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या सिर्फ सरकार ही नहीं, सिर्फ भारत लेवल पे नहीं बल्कि पूरे वैश्विक लेवल पे योगा को महत्व दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा है? ये सारी बातें हम आने के बाद भी जानेंगे और साथ ही साथ मेंटल वेलबींग यानी मानसिक स्वास्थ्य पे हमको चर्चा करना है। हम सभी में इन चीजों की बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है, करेंगे चर्चा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर।

0: जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है सर्कुलर रोड आवास विकास कॉलोनी गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: ब्रेक के बाद एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने शो गोधुली में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। जाने से पहले बड़ा अहम सवाल हमने पूछा था। हमारे साथ में आज एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद हैं डॉक्टर अमित सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर एंड फिजिशियन होम्योपैथ। क्योंकि जाने से पहले हमने ये कहा था कि हर बार जब भी हम देखते हैं इंटरनेशनल योगा डे पड़ता है या योगा से स्पेसिफिक कोई भी इवेंट किया जाता है तो उसकी टैग लाइन दी जाती है, लेकिन हम स्पेशली अगर बात करें इंटरनेशनल योगा डे पे, तो क्या वजह है कि कभी आध्यात्मिक रूप से उसको जोड़ के बताया जाता है, कभी सामाजिक रूप से, इतने अलग अलग पहलुओं से योगा को जोड़ा जाता है? क्या महत्व है योगा को, वो भी इंटरनेशनली सेलिब्रेट अब किया जाने लगा है?
6: देखिए, योगा को छोटे में आंकना तो गलत होगा, बहुत विस्तृत रूप से इसके, बहुत ब्रॉड रूप से इसको जानना है। और इसके लिए ये है कि अब आप मौलिक रूप से अपने आप को स्वस्थ यत करना चाहते हैं, तो मानसिक रूप से, है ना, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सभी प्रकार के विकास की ज़रूरत होती है। इसीलिए इसको हर दूर दूर तक गांव में से लेके और शहर में सबका रहन सहन अलग अलग होता है, एक जैसा आप नहीं मान सकते पूरी तरीके से। तो सबको व्यवस्थाएं देना और सबके लिए अलग अलग, क्या सबके लिए ज़रूरत है, सबकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं, तो सबको अलग अलग कैसे पैमाने पर खरा उतरा जाए और कैसे उतारा जाए, इसलिए हर बार कुछ ना कुछ नया भी करते रहते हैं। और विस्तृत होने के नाते तो हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ नया चीज़ जोड़ते भी रहते हैं और अच्छे से आपको समझाया जा सके। मान लीजिए इस बार ये हुआ कि ऐसी चीजें, इस बीमारी, कभी क्या होता नहीं, जैसे कोविड में आपने बहुत सी चीजों की नई चीज जानी होगी, कुछ नए आसन आपको सिखाए गए होंगे, कुछ आपने नई जड़ी बूटियों के बारे में जाना होगा जिसका आपने नाम भी नहीं सुना,
5: नहीं सुना था, बिल्कुल
6: ऐसा नहीं था, उसका नाम था नहीं, तो बहुत व्यस्त है, हमको जानकारी नहीं था। ऐसे ही योगा का है, हमको जानते ही नहीं है लेकिन बहुत वृहद है।
5: बेशक, ये तो आपने सही कहा कि बहुत ही वृहद है और कहीं ना कहीं जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है, इसीलिए शायद बार बार टैगलाइन भी हर तरह से इसको चेंज किया जाता रहा है। डॉक्टर साहब, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कहीं ना कहीं हमने योगा की बात की है, तो योगा से हम जानना चाहेंगे कि अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई हम इतना काम कर रहे हैं, हम फिजिकल, हमारा बहुत सारा काम है, हमारा इवन काम ही MR का है, मैं जा के जगह जगह दवाओं के बारे में रिप्रेजेंट करता हूँ, या मेरा काम फील्ड का है, या मेरा काम बहुत उठाने रखने का है, बहुत हम ऑलरेडी घर में बहुत सारी चीजें उठाते रखते हैं, चाहे महिलाओं की बात कर ले चाहे पुरुषों की, तो उनका मानना होता है फिर हम योगा क्यों करें, फिर योगा अलग से क्यों करना है, इसके बारे में प्लीज आप बताएं।
6: देखिए, जो काम आज हो रहे हैं ये काम पहले भी होते थे, लेकिन पहले क्या होता था, खाना बनाने के लिए मशीनरी नहीं थी, तब तो मानते थे हम लोग, आटा भी चक्की से पिस के आता था, दूसरे तरीके से महिलाएं खुद पीस डालती थी, मसाले पीसते थे, अब आपने मिक्सी खरीद ली, काम खत्म। काम तो आज भी आप मसाला पीसने कर रहे हैं, कह तो रहे हैं, लेकिन क्या आप सिलबट्टे पे कर रहे हैं, हाथ मूवमेंट में आ रहा है, नहीं आ रहा। अब तो आटा गूंथने की भी आपने देखा होगा मशीनें आ गई, इंडक्शन खरीद लिया, पहले लकड़ियाँ काट के लाते थे, फिर उसको रखते थे, सेट करते थे, फिर जलाते थे, मतलब फिजिकल, हमारा कहने का मतलब फिजिकल वर्क ज़्यादा था। पानी निकालने के 10 बाल्टी की अगर जरूरत है परिवार में, तो 10 बार 20-20 हैंडल चला रहे, तो 200 हैंडल पानी चला रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है, बटन दबाया पानी ऑन हो गया। कहने के लिए तो आप दिन भर बिजी हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं, पूछे कपड़े धुले, कहेंगे हाँ धुला गया कपड़ा, लेकिन अब मशीन में धुले ना, पहले बाल्टी से धुलते थे, मेहनत होती थी, थक जाते थे, पस्त हो जाते थे, पसीना निकलता, सोते थे, अब ये सब नहीं हो रहा है। तो फिजिकल वर्क अगर घटा है लेकिन खान पीन तो आपका घटा नहीं, वो तो और खराब हुआ। पिज्जा वर्कर का आपने नाम भी नहीं सुना था, पाश्चात्य संस्कृति में हम लोग जुड़ते चले गए, थोड़ी खान पीन की भी स्थिति खराब हो गई। इसीलिए अब योगा बहुत जरूरी है आपको फिजिकल बैलेंस करने के लिए, मेंटल बैलेंस करने के लिए। तो इस चीज के लिए योगा आपको करना ही पड़ेगा। सबको लगता है फिट है, कौन तय करेगा फिट है? आपके बॉडी के मानक ही तो तय करेंगे। अगर आपको हाइपरटेंशन हो गया 40 की उम्र में तो आप फिट नहीं है, डायबिटिक हो गए तो आप फिट नहीं है। तो आपको आप ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन अब जीने की इच्छा नहीं है। तो फिट रखने के लिए आपको फिर पुरानी पद्धति में जाएंगे, कुछ नई चीजें करेंगे। तो इसलिए एक योगा एक ऐसी चीज है जो पहले से हमारे यहाँ थी, प्रचार प्रसार की कुछ कमी थी, अब अच्छे से हो रहा है। अच्छे अच्छे प्रशिक्षक हैं, बढ़िया प्रशिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, आप उनसे मिलेंगे सीखेंगे तो आपका शरीर दोबारा स्वस्थ हो सकते हैं, बढ़िया से हो सकते हैं। दवाइयाँ छूट सकती हैं, जरूरी नहीं कि सारी दवाइयाँ चलती ही रहें, छूट भी सकती हैं।
5: और सब हम स्वस्थ भारत की बात करते हैं, स्वस्थ समाज की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारा स्वस्थ खान पान, जैसा कि अभी आपने कहा कि जीवन शैली सही नहीं है, तो हम किस तरह स्वस्थ हो पाएंगे? जापान के बारे में जब बात आती है तो फिर कहा जाता है कि वो लोग बहुत फिट होते हैं, सबसे ज्यादा एज भी वहां के लोगों की रिकॉर्ड की जाती है। और जहां तक मुझे पता है कई जगह ऐसे वहां पे एक रेडियो स्टेशन है जिसपे सुबह 20 मिनट और शाम में 20 मिनट निकाल करके बूढ़े बच्चे से लेके हर कोई उसको वहां पे योगा कराया जाता है, एक्सरसाइज, बेसिक्स एक्सरसाइज जो होती है वो कराया जाता है। और कहा जाता है कि ये सबके लिए मैंडेटरी, यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं उस वक्त आप उसको थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए पॉज करें और 20 मिनट का टाइम निकालें और उसको करें। तो कहीं ना कहीं वो एक पूरी समाज को स्वस्थ करने के साथ वो एक्शन भी दिखता है। क्या लगता है आपको कि हमको इन चीजों में किस तरह के कदम उठाने चाहिए? जिस तरह से आप देखते हैं कि अभी 20-25 साल का भी कोई बंदा है, उसका भी पेट बाहर ही चला आ रहा है। दुकानदार हम लोग जिनसे जाते हैं सामान खरीदते हैं, मतलब आपको उनके चेहरे से पहले उनकी तोंद नजर आ जाती है। तो मतलब ये प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं कि ये हेल्थ को लेकर के। तो हमें क्या अभी करने की जरूरत है? आपने योगा बताया, अब आप कह रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, आपके शहर में भी है, यानी आप जहां पे हैं आपके नियर बाय में वो सेंटर्स हैं। तो अब हमें क्या उन सेंटर्स का किस तरह से लाभ उठाना चाहिए, किस तरह से एक स्वस्थ समाज का निर्माण हम कर सकते हैं?
6: देखिए, व्यवस्थाएं तो सरकार की तरफ से पूर्णतया है ही है, लेकिन यदि जागरूकता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, बगल में चल रहा है तो आप कैसे जान पाएंगे? उसको ऐसे लीजिए, लोगों पहले अपने अवसाद का नाम कभी नहीं सुना रहा होगा, लेकिन अब इधर डिप्रेशन के मरीज बहुत हो गए हैं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, हाय तौबा लगी रहती है। तो आप ये मत सोचिए कि आपका ऑफिस का काम 8 बजे तक खत्म हुआ तो फिर आप क्या योगा करेंगे, आपको क्या जरूरत है, आप तो थक गए, आप चूर हैं, आपका हो गया योगा, हो गई फिटनेस, ऐसा नहीं है। मानसिक संतुलन बनाना भी बहुत जरूरी है। तो आपको शुद्ध चीज़ें, क्यों कहते हैं कि हरी साग सब्जियाँ खूब खाने चाहिए, ताजे फल लेने चाहिए, इसीलिए कहते हैं ना कि आपके मेंटल लेवल को भी ठीक करता है। तो आप जब योगा करेंगे तो पड़ोसी को भी बता पाएंगे। अगर आप अनफिट हैं और फिट हो गए आ गए तो पड़ोसी भी पूछेगा, भैया कैसे हो गए हो फिट, क्या किया, तभी तो आप बता पाएंगे हम फिट हुए हैं। तो आप भी चले जाइए, अभी ऐसा ऐसा कीजिए, आप ले जाएंगे, एक से एक करते हुए 11 बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसे संख्या बढ़ेगी, लोग फिट होंगे, तो एक भार जो कम होगा, जो आपका स्वास्थ्य के प्रति जो खर्चे हैं आपके, वो भी आज बहुत बड़ा खर्चा हो गया है। बल्कि मैं आपको बताऊं, आंकड़ों के हिसाब से सैलरी का 1/4 मिनिमम लोग स्वास्थ्य के पीछे खर्च कर देते हैं। उसमें मैं फल सब्जियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें दवाओं
5: की बात कर रहे हैं आप।
6: तो ऐसे खर्चों से बचना है, अगर हम नहीं करें पूर्णतया बचा जा सकता है, मैक्सिमम रूप से तो बच सकते हैं आप। तो अगर हम लोग कोशिश करके 5% पे ले आए उस खर्चे को, तो पैसा आप किसी और चीज में हो सकते हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन होगा, अच्छा लगेगा, समाज से सोशली आप जुड़े रहेंगे। अभी तो कट हो रहे हैं ना धीरे धीरे करके, बस इसीलिए होगा, जरूरी नहीं, नितांत जरूरी है।
5: आपने अभी एक टर्म इस्तेमाल किया कि मेंटल लेवल पे भी चीजें सही होती है, महत्वाकांक्षा बताया, किस तरह की लोगों को महत्वाकांक्षाएं रहती है, क्यों थोड़ा सा स्ट्रेस में आजकल लोग नजर आते हैं?
6: देखिए, सबके ऊपर कंपटीशन का दबाव, प्रमोशन का दबाव, और हो जाए अगर आप मीडिया से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हैं, तो लाइक्स बढ़ जाएं,
5: लाइक्स
6: चेक कर रहे हैं, रात रात में चेक कर रहे हैं, गॉगल्स लगा के देख रहे हैं, पूरा अपने लाइफ को अपने बिल्कुल एक सीमित कर लिया, एक कमरे के अंदर बंद कर लिया, खुली हवा में आप जाते नहीं, क्रिकेट मैच खेलते नहीं, कुछ करते नहीं। क्रिकेट भी आजकल मैं देख रहा हूँ लोग मोबाइल भी खेलते हैं, अब उससे कितनी एक्सरसाइज हो रही है तो आप जानिए, है ना। तो एक्सरसाइज तो हो नहीं सकती है, पसीने तो आपके निकल नहीं सकते,
5: बेशक
6: मेंटली परेशान हो सकते हैं,
5: बिल्कुल।
6: इसीलिए आपको निकलना भी पड़ेगा, खुली हवा में लेना पड़ेगा, खुली हवा, लाख रुपए की दवा, ये सब बातें जो होती थी तो उसके पीछे एक तर्क था। अब ये दिक्कतें बढ़ रही हैं इसीलिए क्योंकि हम नेचर से दूर हो गए हैं, अब नेचर से पास जुड़ने के लिए ही ये मुहिम चलाई जा रही है। इसलिए जब आप जुड़ेंगे तो मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे और वही स्वस्थ होना ज्यादा जरूरी है।
5: आपने कहा मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। योगा में ऐसा क्या होता है कि फिजिकल एक्सरसाइज के साथ हम मेंटल लेवल पे भी खुद को स्वस्थ महसूस कर पाते हैं, क्या चीजें ऐसी होती हैं?
6: देखिए उसमें कुछ ध्यान की मुद्राएं भी आपको बताई जाती हैं, फिर जब ध्यान की मुद्रा आप करते हैं तो बड़ा मेंटली सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, रिलैक्स होगी पूरी बॉडी। हमेशा जो दौड़ भाग की होती है ना एक स्थिति, तो अब जैसे आप जिम चले जाएं तो फिजिकल एक्टिविटी तो आपकी बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन मेंटल आपको वहाँ पीस नहीं मिल सकता, उसके लिए आपको योग करना ही पड़ेगा। प्राणायाम उसका एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है। तो ये चीज़ें जब जुड़ती है तो मेंटल आदमी मेंटल रूप से बिल्कुल वो सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है, अलग से लगता है। आप किसी दिन बैठ के अगर आधे घंटे ध्यान करें एक बंद कमरे में, या खुली हवा में चले जाएं किसी पेड़ के नीचे हल्की सी धूप में बैठ के करें, तो आपको अलग सा लगेगा कि हाँ कुछ नई ऊर्जा मिली है, अपनी ही ऊर्जा बढ़ेगी, जबकि आपने कुछ अलग से कुछ किया नहीं है, थोड़ा सा समय दिया है। अब लोग समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने लिए नहीं दे पा रहे हैं।
5: तो आपको क्या लगता है, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता एक बात कि डिग्रियां बढ़ती जा रही है, प्रोफेशनल कोर्सेज आते जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम खुद को मॉडर्न बताने लग गए हैं और जानते भी हैं कि ये प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन है, उसके बावजूद क्यों लोग नहीं उठा पा रहे कदम, ये थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे। आखिर क्या माइंडसेट बन गया है कि हम पढ़े लिखे भी हैं, हम समझदार भी हैं, और आप बता रहे हैं कि देखिए इतनी सारी सुविधाएं संसाधन उपलब्ध भी कराया जा रहा है आपके अपने शहर में, लेकिन उसके बावजूद भी हम जान के भी चीजों को नहीं कर पा रहे, क्या वजह है इसके पीछे?
6: देखिए इसकी एक चीज मैं आपको बताऊं, एक होता है साक्षर, एक होता है शिक्षित। जो आपने कहा डिग्रियां बढ़ रही हैं, लोग ज्यादा साक्षरता दर बढ़ रही है, शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। दोनों में अंतर यही है कि आप उसके बेसिक चीज को समझें, क्या चीज हमारे लिए जरूरत है। आप तो जानते हैं कि फल खाना बहुत अच्छा है, एक एप्पल खाओ और डॉक्टर के पास कभी ना जाओ, ये नारा बड़ा पढ़ा होगा आपने
5: जी,
6: पर क्या फॉलो हो पा रहा है, कैसा कर पा रहे हैं? रात में 8 बजे सो जाएंगे तो नींद अच्छी आएगी, 7 घंटे सोएंगे तो मन फ्रेश रहेगा। सिविल सर्विस वालों का कहता है कि आप 14 घंटा पढ़ें, 4 घंटा घूमें, इतने देर सोएं, क्या हो पा रहा है? क्योंकि आप कंपटीशन की दौड़ में हैं, आप बार बार सोशल मीडिया देख रहे हैं, आप न्यूज़ देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपकी एक्टिविटी घट गई है। तो आपको कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा। तो जिस चीज़ को हम नया कह रहे हैं वो पुरानी ही चीज़ें हैं अपनी, उनको वापस लाना है। अब सिर्फ नया से आप पाश्चात्य वाला संस्कृत वाली बातें आ रही हैं कि आप गाड़ी ले रहे हैं, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो साइकिलिंग से थी वो भी खत्म हो गई। तो हम तो ये नहीं कह रहे कि आपको दूर जाना है तो आप साइकिल चला के जाएंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए या तो साइकिल चला के स्वस्थ हो जाएं, और या तो फिर योगा करके, या तो कुछ और स्विमिंग करके, कुछ ना कुछ तो आपको अपने लिए एक मानक तय करना पड़ेगा कि हमारे पास जो आपको पसंद हो। बाकी तो जब कोई बीमारी होती है तो उसके लिए एक प्रशिक्षक है, वो आपको बताएंगे कि ये वाला योग, ये वाली मुद्रा आपके लिए ज्यादा अच्छी है। इसीलिए जरूरत है कि प्रशिक्षित लोगों से सीखा जाए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए।
5: तो आपने कहा कि एक जो चीज बढ़ाने की बात की उससे मुझे गांधी जी का वो थॉट याद आ गया कि ये कहा गया कि अब तक जो करते आए हो अगर वही करोगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। तो ये बात मुझे बड़ी क्लिक की है कि हाँ कुछ तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको तय करना है कि आप शिक्षित हैं या सिर्फ डिग्री है, ये हमको खुद तय करना होगा। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि एक अच्छा योगा इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षित जो हो, तो ये कैसे हम जाने कि कोई एक योगा इंस्ट्रक्टर हमको बेहतर मिले? क्योंकि जैसा कि आपने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर आप इसको सही ढंग से नहीं करेंगे तो ये चीज आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है जैसे बाकी चीजें होती हैं। तो हम कैसे एक अच्छा योगा इंस्ट्रक्टर तलाश करें, क्या उसके मानक होते हैं, कैसे हम पता करें?
6: देखिए जो सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्रशिक्षित लोग हैं तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक डिग्री ली है, उस पर काम किया है, उनको पूरा ट्रेंड रूप से स्किल्ड है, पूरी तरीके से स्किल्ड है। जब आप किसी मोहल्ले में जाएंगे या ऐसे ही किसी सीख रहे हैं, हो सकता है वो भी अच्छा सिखाते हो, लेकिन जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो सरकारी विभाग के तहत जो लिए जाते हैं उनका एक मानक तय है कि आपको ये डिग्रियां होनी चाहिए, इसके तहत तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा वो मानक पे खड़े उतरने पे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि जब मानक पे खड़े उतरे हैं तभी लिए गए हैं, इसलिए आप बेफिक्र होकर वहां पे जाएं। जैसे आप स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं तो आप ये पता कर लेते हैं इनका एफिलिएशन है कि नहीं है, वहाँ पे सही टीचर हैं कि नहीं है, या आप अच्छा जब आप सीखने भी जाते हैं तो आपको एक हफ्ते में पता चल जाता है कि ये कैसे हैं। तो आपने वो तो इसके लिए तो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, और सबसे अच्छा है कि सरकारी सेंटर्स पे जाएं जहाँ प्रशिक्षित लोग ही हैं।
5: तो आपने ये बताया चूंकि सरकार का अपने मानक है, उस मानक के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है जो भी योगा इंस्ट्रक्टर होते हैं, यानी पूरी तरह से ये इंश्योर किया जाता है कि वो प्रशिक्षित हों, स्किल्ड हों, सीखा हो, प्रैक्टिकल किया हो, उसके बाद लिया जाता है। तो ये एक सीधा और आसान तरीका है कि भाई आप आयुष मिशन के तहत जो हेल्थ सेंटर, वेलनेस सेंटर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहां जाके सीख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे आप सीख सकते हैं एक बेसिक जो भी आप योगा जाना चाहते हैं। एंड इसके बाद ये चीजें तो आप घर पे भी खुद से कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? अच्छा, इसको अगर बढ़ावा देना है तो मान लीजिए अभी जो हमारे श्रोता इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो अपने लेवल पे कैसे इस चीज को बढ़ा सकते हैं, अपने साथ साथ अपनों का भी जैसे कह सकते ना भला करने के लिए।
6: देखिए, पहले तो आप खुद जाने स्टार्ट करें। जब आप सीख के आएंगे आपको अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि बॉडी सुधार आ रहा है, परिवार भी जागरूक होगा, कहेगा अच्छी चीज कुछ करके आए हैं। फिर जो परिवार के और लोग बीमार हैं उनको लेके जाइए, धीरे धीरे बात ये मोहल्ले तक जाएगी। मोहल्ले के बीमार लोग जैसे होता है ना, सब लोग मिलते हैं, कहते हैं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, कैसे ठीक हुए, अच्छा डॉक्टर बताइए, अच्छा ये बताइए, क्या खाया जाता है इसमें, कैसे लोग कैसे जान जाते हैं कि चीनी नहीं खाना है शुगर में, किसी ने बचपन में तो पढ़ा नहीं था, मोहल्ले में ही बताया, उनको हुआ तो उन्होंने नहीं खाया, रसगुल्ला नहीं खाना है, आपने छोड़ दिया, वैसे ही छोड़ दिया। ऐसे ही जब आप सीख के आएंगे, अच्छे से करेंगे, फिट होने लगेंगे, तो पड़ोसी को भी लेके जाएंगे, भैया आप भी बीमार है, आप भी चलिए, मानवता यही तो है, या आप ठीक हुए दूसरे को ठीक करें, लेकिन आप ही अस्वस्थ हैं तो दूसरे को क्या सलाह दे पाएंगे। इसलिए एक लोग जाएंगे तो धीरे धीरे कतार बनेगी वो।
5: बेशक, यानी जो भी लोग हमको सुन रहे हैं तो वो अपने नियर बाई सेंटर्स को जो है वो विजिट करें, अब जाए सीखे और खुद पहले उसका लाभ मिले, खुद महसूस करें, फिर जब खुद वो सेटिस्फाइड हो जाए तो वो चीजें स्प्रेड करें लोगों को, लोगों तक उस बात को पहुंचाएं। बेशक, ये बिल्कुल सही है। और एक चीज जो हम और आपसे जानना चाहेंगे लास्ट में कि क्या सावधानियों की जरूरत होती है जब हम योगा कर रहे होते हैं, क्योंकि योगा से फायदा तो होता है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, कहाँ पे हम गलतियां कर जाते हैं योगा को करने या सीखने के दौरान?
6: देखिए, मोटी मोटा तो मैं आपको ये बता पाऊंगा कि जैसे एक तो आप सुनते होंगे कि बिल्कुल खाली पेट करना चाहिए
5: जी,
6: सुबह और शाम का दो समय जो लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है कि सुबह वो ना आदमी का पेट खाली हो जाता है फ्रेश होने के बाद, और शाम को भी इसलिए 6 बजे के लगभग लोग उसका है योगा करने के लिए, क्योंकि दोपहर में आप 1:30 से 2 बजे तक खाना खा लेते हैं 5 घंटे 4 घंटे बाद में खाली पेट होता है। तो ये बातें जब आप इस तरीके से करते हैं, फॉलो करते हुए, तो आपको कुछ लाभ मिलता है। मान लीजिए आपको जानकारी नहीं है, आपने योगा तो सीख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, खाना खाया, भूल गए आप मुद्राएं शुरू कर दी, तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसी काम को बेहतर तरीके से किस आसन में, अच्छा किसको क्या बीमारी है, उसको किस योगा की जरूरत है, इसको कौन बताएगा, इसीलिए इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है। वो उपलब्ध हैं, अच्छे हैं, स्किल्ड, इसलिए वहां जाइए। लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजों की सावधानियां रखनी पड़ती
5: है। जैसे कि सही कहा आपने कि कोई चीज जब बेहतर होता है तो लोग डिस्कस करते हैं कि हमने ये खाया था तुम भी खाओ, लेकिन यहाँ तो ये कि भाई इंस्ट्रक्टर आपको आपकी बीमारी और आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग चीजें बताने वाले हैं, इसीलिए तो वो ट्रेंड है ना, ट्रेनर है। ऑफकोर्स, चूंकि हमने बहुत सारी बातें आपसे की, पहले तो हमने आपके जीवन के बारे में जाना, आपके छात्र जीवन के बारे में, आपकी अचीवमेंट के बारे में, एंड इसके बाद हमने चूंकि जाना कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के पद पे आपका कार्य क्या है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी बातें बताई आपने, आयुष के बारे में उसको पूरा एक्सप्लेन किया, मिशन के बारे में बताया किस तरह से चलाया जा रहा है। तो लास्ट में चूंकि ये सारी बातें हुई हैं और हमारे बहुत काम की है, जाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप प्लीज अपना कोई लाइफ मंत्रा बताएं जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो उसको जरूर उनको इंस्पिरेशन मिले आपके लाइफ मंत्रा से। आपका कौन सा ऐसा मंत्रा है लाइफ का सबसे बड़ा?
6: देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं इस विषय पे बोलने के लिए आया हूँ, सबसे पहले खाने का टाइमिंग सुधार लें, सब लोग कोशिश करें
5: जी
6: कि दोपहर का खाना 12-1 बजे तक हो जाए, रात का खाना 7:30 से 8:30 के बीच में हो जाए, और कम से कम आधे घंटे का फिजिकल वर्क नेचुरल रूप से जरूर होना चाहिए। नेचुरल रूप से मेरा कहने का मतलब है कि बाहर निकल के जाएं, घर के बाहर टहलें, कुछ नहीं कर सकते तो टहल सकते हैं, टहलें, मान लीजिए किसी कारण से नहीं टहल सकते हैं तो हल्की धूप जो सुबह की हो तो उसमें बैठें, जो प्राणायाम जानते हैं वो करें, तो ये करना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपका मन किसी चीज़ में नहीं लगेगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हों आपके अगल बगल हो रही हों, आपका मन उदास रहेगा, मन आपका अपनी बीमारी में ही लगेगा, कोई आपसे बात करेगा आपका लगेगा नहीं, इसलिए आप अपने आप को समय दें। आप दुनिया को तो समय दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने आप को समय नहीं दे रहे, अपने आप को पहचानिए और अपने आप के लिए क्या जरूरी है उसके लिए काम जरूर करें।
5: बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि भाई आपको लग भी रहा है क्योंकि आपके पास कोई मिलने आता नहीं, आपको लगता कोई समय नहीं दे रहा है, एंड ऑफकोर्स आप खुद भी समय दे रहे होते हैं लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू दे रहे होते हैं और अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को दे रहे होते हैं। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी हमने अपने को ही वक्त देना बंद कर, शायद सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कई कई दिन हो जाता है और लोग आसमान की तरफ निगाहें उठा के नहीं देखते हैं कि आज आसमान कैसा दिख रहा है, आज हवाएं कितनी ज्यादा ठंड है, आज पेड़ किस तरह लहलहा रहे, कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब हमको ये चीजें देखनी होगी जो कभी हम लोग देखा करते थे, जो कभी देख करके हमारे मन में चीजें जहन में बदल जाया करती थी। बहुत ही शानदार आपसे बातचीत के अंश रहे और अब चूंकि जाने का बिल्कुल वक्त आ गया है, जाने से पहले एक ये लास्ट आखिरी क्वेश्चन जो हम आपसे करना चाहेंगे। इस वक्त आप बैठे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के स्टूडियो में, जो कि देवी पाटन मंडल और गोंडा का पहला एफएम है। जिस तरह से अभी ये टॉक शो हो रहा है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये गोंडा वासियों को या इसके जो श्रोतागण है जो सुनते हैं इसको, उनके लिए कितनी वैल्यू ऐड कर रहा होगा उनकी लाइफ में?
6: देखिए, पहले तो इस प्रोग्राम के लिए मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और एक अच्छा सेटअप बनाया है। गोंडा जैसे इसको लोग पहले पिछड़े जिला मानते थे, लेकिन आप इसको अग्रणी ले जाने में आप लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है। छोटी छोटी बातों को हम लोग कैसे गाँव तक पहुँचाएँ, आपकी बातों को लोग दूर दूर तक सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। तो किसी चीज़ को अच्छे से पहुँचाने का कला जो FM के थ्रू से हो जाएगा वो ऐसे नहीं पहुँच सकती। अपनी बातों को रखने का एक सही प्लेटफॉर्म जो आप लोग देते हैं और सभी लोग को देते हैं, जो और भी विभाग हैं या सरकारी योजनाएं चल रही हैं या क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें भी गांव के दूर दूर दराज तक पहुंचती हैं। जो आप एक पोस्टमैन का वाला भी काम आप लोग को कहा जाए तो आप लोग कर रहे हैं, अच्छा है। तो आप कहिए और अच्छा चले, और आपके श्रोताओं को मैं दोबारा शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो लोग भी आपके और आप व्यूअर्स को बढ़ाएं, श्रोताओं को बढ़ाएं, क्योंकि इसमें आप लोग कुछ ना कुछ सकारात्मक बातें करते हैं, तो ये अच्छी चीज है।
5: जी बेशक, बहुत अच्छे ढंग से आपने सारी बातों को कवर किया। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, हमारे साथ में आज मौजूद हैं डॉक्टर अमित सिंह, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं और फिजिशियन हैं होम्योपैथ के। आपसे हमने बात की और आपने हमारे सारे प्रश्नों का बहुत ही सहजता व सरलता के साथ उत्तर दिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तक आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो अपने श्रोताओं से हम ये कहेंगे कि भाई आप भी सुनते रहिए, अभी ट्यून करे रहिए अपना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, और कल फिर मुलाकात होगी अगले बार इसी शो में किसी नए मेहमान के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ और जानेंगे और जिंदगी में कुछ ना कुछ अपने वैल्यूज हम हर रोज ऐड करते रहेंगे इसी FM के साथ में मिलकर के। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
8: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
7: सच में? क्या खास है वहाँ?
8: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
7: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
8: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
7: और फोटोग्राफी वगैरह?
8: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमैटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
7: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
8: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
7: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
9: अरे सुना?
10: क्या?
9: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
10: वाओ!
9: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
5: और जेंट्स के लिए,
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
9: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
10: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 98-38-288-386।
9: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
11: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
12: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
13: गोंडा शहर की धड़कन।
14: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
15: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
16: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
16: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
16: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
17: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
18: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
17: सच में? क्या खास है वहाँ?
18: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
17: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
18: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
17: और फोटोग्राफी वगैरह?
18: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
17: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
18: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
17: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
15: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
19: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
20: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
19: और जेंट्स के लिए?
20: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
19: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
20: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
21: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
22: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
23: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
24: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
25: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
0: बहुत

0: बिल्कुल, ढाई अखर जुगाड़ का अगर पढ़ लिया जाए तो लाइफ में क्या कुछ ना होए। वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, आप सभी के साथ मौजूद है आपकी अपनी आरजे बीना, आपके वाले शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला में। एंड यस, अगर जुगाड़ की बात करें तो भाई बारिश का जुगाड़ होना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, हमारे रेन फॉरेस्ट भी रोने को तैयार हो चुके हैं जो बरसात के ऊपर चलते हैं बेसिकली। हाँ, और मैं रेन फॉरेस्ट की बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आज विश्व रेन फॉरेस्ट डे है। और भाई कुछ नया हो और मैं आपको ना बताऊँ ऐसा कैसे हो सकता है। तो वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे की आप सभी को शुभकामनाएं। जंगल में गए हैं, जंगल सफारी की है, बायोडायवर्सिटी के टच में रहे हैं, तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। फिलहाल बढ़ती गर्मी और पेड़ पौधों की होती कमी ये ज़रूर बता रही है कि आने वाले समय में पेड़ पौधों का भी हमें ऑल्टरनेट जुगाड़ करना ही पड़ेगा। जैसा कि मध्य प्रदेश में हाल ही में किया गया है, एक ऐसा ट्री बनाया गया है जो कि आर्टिफिशियल ट्री की तरह काम करेगा। अंदर उसके अंदर छोटे छोटे एल्गीज उगाए गए हैं जो कि एक कह सकते हैं कि पोर्टेबल प्लांट का काम करेगा जो एक शहर को ऑक्सीजन देगा। फिलहाल आगे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले क्यों ना एक बार जुगाड़ कर लिया जाए।
1: सेटल हुआ

सो आप सभी का स्वागत है जुगाड़ स्पेशल इवनिंग में। और भाई हम भारतवासी हैं और जब जुगाड़ की बात होती है ना यार, हम लोगों से बेहतरीन कोई जुगाड़ इस दुनिया में कर नहीं सकता है। एंड यस, और मैं आप लोगों से बताऊँ ना कि ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक जुगाड़ हमारे यहाँ किए जाते हैं ना कि आपको शब्दों में बता पाना ना मेरे लिए मुश्किल है। सो वेलकम, और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने लाइफ के कुछ जुगाड़ ज़रूर शेयर करिए। आपने कब कब क्या क्या कौन कौन सा जुगाड़ किया, सबसे पहला कौन सा जुगाड़ किया और आज कौन सा जुगाड़ किया, या जुगाड़ों की दुनिया से ही घिरे हुए हैं आप? सच बताऊँ तो जुगाड़ ही जुगाड़ पास है। ऐसे ऐसे जुगाड़ हैं जब हम देखते हैं किसी ई रिक्शे वाले को, एक स्कूटी वाले को टोचन करते हुए, तब लगता है कि देश में जुगाड़ बढ़ रहा है। जब हम देखते हैं किसी भी तरह से नए तरीके के, जो कहते हैं ना कि डिब्बा काटना हो, ब्रश को रीयूज करना हो, मोजों के नए क्राफ्ट बनाने हो, एंड यस, अगर ये DIY शब्द को यूज़ करके थोड़ा सा कूल दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो एक्चुअली में ये DIY हमारे यहाँ बहुत सदियों से चल रहा है और इस DIY को हमारे देश में जुगाड़ कहते हैं। सो वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, और आप सभी का स्वागत है इस प्यारी सी खूबसूरत सी इवनिंग में। वैसे आप सभी को मैं बता दूं कि आज है मंडे, और मंडे मीन्स होता है कॉलिंग डे। फिलहाल कॉलिंग के साथ साथ मुझे आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि हाल ही में आपने कौन सा जुगाड़ किया है। वैसे अगर हमारी इंडियंस की लाइफ कही जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। और हाँ, कॉम्प्लिकेटेड से याद आया यार, अभी जल्दी सुनने में आया कि चाइना हम लोग की नकल करना शुरू कर रहा है। हाँ, सुनने में आया है। अब सोच रहे होंगे किस चीज़ में, सुना है कि गंदगी में वो भी हमें पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। चलो किसी मामले में वो आगे जाए और हम लोग पीछे हो जाएं। फिलहाल गंदगी के मामले में सुनने में आ रहा है कि चाइना के लोग गंदगी ज़्यादा फैला रहे हैं, और आंकड़ों से और ऑब्जर्वेशन से ये पता चल रहा है कि ये आने वाले कुछ ही दिनों में भारत को पीछे छोड़ देगा। तो ये तो खुशी की बात है कि यार इन सब चीज़ों में तो हम लोग पीछे हो जाएं। हाँ, हैप्पीनेस की बात करें तो काफ़ी 100 की पीछे हैं हम लोग। लेकिन फिनलैंड की अगर बात की जाए तो फिनलैंड क्या ऐसा खाते हैं वहाँ के लोग, किस चक्की का आटा खाते हैं, दुनिया के सबसे मुस्कुराते लोग माने जाते हैं फिनलैंड के लोग। तो मैं एक बार चाहती हूँ कि चलो फिनलैंड हो आया जाए। ऐसा क्या फिनलैंड की रोटी में है जो हमारी रोटी में नहीं है? आशीर्वाद आटे की रोटी खाते हैं हम लोग, फिर भी हम लोग के मुँह पर हंसी नहीं दिखती है। जुगाड़ के चक्कर में क्या, जुगाड़ तो करके हम लोग को खुशी हो जाने चाहिए। फिलहाल मैं तो आज जुगाड़ स्पेशल इवनिंग में आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ वो फेमस जुगाड़ जो हमारे देश में किए जाते हैं, और बाकायदा सुन के भी मज़ा आता है यार। क्या खतरनाक बोले मतलब जुगाड़ की बात करूँ तो अभी मुझे याद आया यार, अभी 450 करोड़ का 1 पीपा पुल बनाया गया हमारे यहाँ लखनऊ तक जाने के लिए। जो कौन सा है, घाघरा वाला जो पुल है वो थोड़ा कमज़ोर हो गया भाई, वो जुगाड़ मुझे बड़ा सही लगा। मतलब क्या है, पीपे से पुल बना दिया थोड़े दिन पहले ही, मतलब जब वो ध्वस्त होने वाला था, ऐसा तो पता ही चल जाता है कि कोई चीज़ ख़राब होने वाली, एक और पुल बना दिया जाता। तो फिलहाल के लिए मैं जुगाड़ स्पेशल इवनिंग के लिए आप सभी को इनवाइट कर रही हूँ, और आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आपके आसपास कोई ख़तरनाक जुगाड़ दिख रहा है तो वो बताइए, आपने किया है या किसी और ने। तो चलिए एक और बढ़िया सा गाना सुनते हैं और इस इवनिंग को और मज़ेदार बनाते हैं। ठीक है, आर यू रेडी? यस ऑफ कोर्स रेडी।

0: चलती क्या।
1: गुड इवनिंग शिल्पी जी, गुड इवनिंग एवरीवन। एंड यस,
0: तुझे नक्शा बीच घुमा दूं।
1: वैसे इन गानों का कलेक्शन मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है, क्योंकि ये वो गाने हैं जो एवरग्रीन, किसी भी मौसम में सुनो चेहरे पे स्माइल ही देखे जाएंगे। वैसे आप लोगों को बता दूं कि आज शो बिल्कुल आपके देसी अंदाज में होने वाला है, बिल्कुल हटके, थोड़ा सा आपके टैलेंट के ऊपर, यानी कि भारतीय जुगाड़ के ऊपर, जिसके लिए हम दुनिया में पहचाने जाते हैं। जहाँ दुनिया की सोच ख़त्म होती है, वहाँ भारतीयों का जुगाड़ शुरू होता है। और अगर मतलब चार्जर टूट जाता है तो हम रबर बैंड का जुगाड़ लगा लेते हैं, टीवी का रिमोट टूट जाता है तो चप्पल का जुगाड़ बना लेते हैं, अगर प्यार में रिजेक्शन मिल जाए तो दोस्त कहते हैं भाई दूसरी जगह ट्राई कर ले। तो हमारे पास हमेशा ऑप्शन है, उम्मीद है। और हमने जी टीवी के सीरियल, जी टीवी के जो टैग लाइन है, ये उम्मीद से सजे जिंदगी, इसको बहुत सीरियसली ले लिया है। और ऑफ कोर्स बिना उम्मीद के तो हम चलते ही नहीं हैं, इनफैक्ट सड़क पे भी हमारे जुगाड़ चलते ही रहते हैं। हमने देखा है हमारे देश के लोगों को साइकिल से भी वो टोचन करवा लेते हैं, मतलब बाइक वाला दोस्त है तो साइकिल वाला साइकिल पे पैंडल क्यों मारे, वो हाथ पकड़ा देता है अपने दोस्त को और वो चला जाता है। मैंने तो ये भी देखा है कि एक बाइक वाला दूसरे बाइक वाले के अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है ना तो पीछे से पैर लगा देता है, बाइक आगे चलती रहती है, मतलब अपनी बाइक चला रहा है और दूसरे वाले की जिसके में तेल नहीं है उसके पे पैर रख देता है, उसकी बाइक चलती रहती। क्या फिजिक्स यूज़ की जाती है हमारे देश में, हैट्स ऑफ फॉर इंडियंस। आप लोग बताइए आपने इनमें से कोई जुगाड़ यूज़ किया है कि नहीं। गुड इवनिंग अनिल जी, कैसे हैं आप? मनील जी, गुड इवनिंग सविता जी, आपको देख के बहुत खुशी हो रही क्योंकि सनफ्लावर की तरह आपकी हंसी है, इतना मुस्कुराती हैं, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। आपकी खुशी, आपका अंदाज बेहद खास।

वेलकम बैक टू योर फेवरेट जुगाड़ स्पेशल इवनिंग। वैसे आप लोग को पता होगा आज कॉलिंग वाली इवनिंग भी है, तो आप सभी से ये जरूर निवेदन है कि कॉल जरा टाइम पे करें, क्योंकि लास्ट में नंबर नहीं आता है और फिर आप लोग कहते हैं कि हमको तो मौका नहीं मिला। फिलहाल इसके लिए भी जुगाड़ है, जुगाड़ मतलब कि तब तक कॉल करते रहो जब तक आरजे बिना उठा ना लगे। फिलहाल मैं अगर आपको बताऊँ ना, हमारे इंडियंस के जुगाड़ की बात कर रही थी मैं आज, और बड़े खतरनाक जुगाड़ मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो तो मैंने आपको बता ही दिए। आप लोग बताइए आप लोग को ये जुगाड़ कैसे लगे भाई। ट्रेन वाले जुगाड़ देखे आप लोगों ने? एक मतलब वो बांध के, क्या कहते हैं हमारे यहाँ गमछा चलता है, उसको बांध के हमारे यहाँ ट्रेन में सीट बना दी जाती है, आर्टिफिशियल टेम्परेरी सीट जिसे बोलते हैं। अगर आपने कभी ना ट्राई किया हो तो ट्राई कर सकते हैं। बड़ी ही मजबूत और झूलेदार सीट होती है जिसमें आपको रिजर्वेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और हाँ, साथ ही मुझे याद आता है कि एक कविता मैंने बड़ी दिनों पहले पढ़ी थी कहीं, कहते हैं कि भारत की धरती न्यारी है, जुगाड़ यहाँ की सवारी है। गौर फरमाइएगा कि भारत की जो धरती है वो बड़ी न्यारी है, जुगाड़ यहाँ की असली सवारी है। मुश्किल चाहे कितनी भी आ जाए, जुगाड़ हमेशा यहाँ काम आ जाए। कुर्सी टूटी तो ईंट लगा दी, पंखा रुका धक्का लगा दिया, मोबाइल का स्टैंड ना पाया तो चाय के कप को काम में लाया, बारिश में जब छाता भूले पॉलीथीन के कई सपने झूले। स्कूटर पर 5 लोग बैठे हैं और कहते हैं सभी और समेटे हैं, चार्जर जब भी टूट जाता है तो टेप लगाकर चला लिया जाता है, रिमोट अगर गुम हो जाए तो चप्पल से टीवी जल जाए। कहते हैं कि पढ़ाई का भी यहाँ जुगाड़ है निराला, किताब खुली मोबाइल वाला, मम्मी समझे बेटा पढ़ता, असल में रीलो को ही लड़ता, विदेशी पूछे कैसे होता, भारत हंसकर राज बताता, संसाधन थोड़े हो भैया जुगाड़ बना लो कोई ना कोई भैया। गर्व से हम इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं, पर क्या करें फिर भी हम समृद्ध हैं। फिलहाल हमारी प्रसिद्धि तो आगे भी जाएगी, दूर दूर तक जाएगी। फिलहाल मैं ये कहूँगी यार, सच बताऊँ कुछ गानों में भी भाई जुगाड़ वाली फीलिंग आ जाती है। और कहते ना कि कुछ गाने ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद मेरा दिल कहता है यार इन गानों को बनाने वाले ने क्या क्या नहीं बनाया, क्या सोच के बनाया होगा। तो फिलहाल एक गाना मैं आपको सुनाती हूँ जिसको सुन के आपके पेट में मतलब गुब्बारे फूल जाएंगे। फिलहाल आप लोग को भी भगाती हूँ मैं, क्योंकि आपने भी कभी ना कभी भाग के ट्रेन ज़रूर पकड़ी होगी, नहीं पकड़ी होगी तो आपने चेन पुलिंग ज़रूर की होगी या करते हुए देखा होगा। हमारे यहाँ भाई जिसकी ट्रेन छूट जाती है या कोई ट्रेन में सो गया अगला स्टेशन आ गया तो वो उसके अगले स्टेशन का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करता है, चेन पुलिंग करके हम उतर जाते हैं, क्योंकि चेन पुलिंग वाला बना ही क्यों है। एक बार एक जनाब ने पूछा कि भाई चेन पुलिंग कर दिए देर हो जाएगी, तो कहें अगर चेन पुलिंग करेंगे नहीं तो चेन पुलिंग भी सोचेगी कि मेरे को फालतू लगा दिया है, कभी कभार तो चेन पुलिंग कर ही लेनी चाहिए। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, बात तो कि मतलब दम था बात में। तो आप लोग बताइए कि अगर चेन पुलिंग वाला बना है तो उसको चेन पुल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहरहाल उसको बाद में जीआरपी आके ले गई थी, बुरा लगा मुझे उसकी बात के लिए, लेकिन बात में उसके पॉइंट था। फिलहाल चलिए हम लोग भी भागते हैं इस प्यारे से गाने के साथ।

0: फिलहाल कोई संदेशा लाए या ना लाए, लेकिन आरजुबीना के लिए कॉल आ चुका है। चलिए कनेक्ट करते हैं, आवाज सुनते हैं। हेलो, वेरी गुड इवनिंग।
1: हेलो, वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार।
0: नमस्कार, आदाब, प्रणाम, आपका शुभ नाम।
1: जी, मैं अविनाश चली नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से।
0: ओ अविनाश, हेलो, हाउ आर यू?
1: आई एम फाइन।
0: सो अविनाश जी, सबसे पहले तो वापस आपकी आवाज़ सुन के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप बताइए, आप कैसे हैं, वहाँ का वेदर कैसा है? यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, 41-42 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का है फिलहाल।
1: जी, हमारे तो 27 है अभी फिलहाल तो।
0: 27? कॉम्प्लेक्स तो नहीं दे रहे हैं?
1: जी जी, बहुत अच्छा मौसम है और यहाँ पर बारिश भी हुआ था सुबह, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, हमारे सुहाना मौसम है।
0: कॉन्ग्रेचुलेशन, फिलहाल आप हम लोग को कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं, और ऐसा ना हम लोग भी शिफ्ट हो जाए वहीं पे।
1: बिल्कुल स्वागत है, आइएगा।
0: सो फिलहाल अविनाश जी, सबसे पहले मैं आज, जैसे कि इवनिंग की शुरुआत हुई है, जुगाड़ स्पेशल इवनिंग है, तो ये बताइए आपने अपनी लाइफ में कोई जुगाड़ किया, जैसे मतलब कि DIY टाइप?
1: कहाँ
0: पे? मतलब कोई भी अपनी लाइफ का कोई जुगाड़, जैसे अक्सर हम लोग देखते नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुगाड़ करता हुआ इंसान हमें दिख जाता है। मतलब अगर ब्रश है तो ब्रश खराब हो गया तो उसको किसी काम के लिए यूज कर लिया, पानी की बोतल है।
1: हाँ, तो बिल्कुल ऐसा तो बहुत सारे हमने जुगाड़ मतलब जुगाड़
0: जो रेगुलर आपके यूज में रहता है, ऐसा कोई जुगाड़ जो आपको पसंद भी है?
1: हाँ, अच्छा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, वो रेडियो से जुड़ा हुआ है। मतलब कि मेरा देखिए, जो मोबाइल चार्जर का जो डाटा केबल नहीं होता है, उसी को देखिए, पहले तो हम सेल डाल के रेडियो को बजाते थे, लेकिन उस डाटा केबल को मैंने उधर से काट करके एक जो एक साइड होता है उसको मैंने रेडियो के जो तार होते हैं उसमें मैंने जोड़ दिया बैटरी लाइन के ऊपर, तो उसको मैंने पावर बैंक से चार्ज, मतलब पावर बैंक को चार्ज करता हूँ, और एक हफ्ते उसी पावर बैंक से मैं बजाता रहता हूँ, आराम से बजता रहता है, ना ही मुझे सेल डालने की जरूरत पड़ता है, बस उस पावर बैंक को ही मैं चार्ज करके बस एक हफ्ते आराम से चलता रहता है।
0: वाह, क्या बात है, ये जुगाड़ के साथ साथ आविष्कार भी है मेरे हिसाब से तो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है विनाश, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिलहाल जुगाड़ की जो कहते हैं ना जंग में आप आज सबसे पहले आए हैं, तो सबसे पहले आपकी पोजीशन बन गई है। तो ये बताइए, आज गाना कौन सा सुनाएंगे आप? मौसम तो बड़ा अच्छा है
1: आज। जी, इस मौसम में मुझे एक गीत याद आ रहा है, वो अभिजीत और कविता की स्मृति जी की आवाज में है। जब से नजर मिली ओ मेरी जाने मन, हद से बढ़ने लगा मेरा दीवानापन, है मेरी आखिरी, है मेरी आरज़ू, वर हम रहे न रहे आ गले लग जा। ये गीत मुझे सुना दीजिएगा, ये मूवी का नाम ही है आ गले लग जा, इसका टाइटल सॉन्ग है।
0: ओह, क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच अविनाश, आपने वाकई में शाम में अपनी आवाज़ से तो रंग भरा ही, लेकिन ऐसा लग रहा है सच में ठंडी हवाएं चलने लगी हमारे यहाँ भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
1: जी जी, थैंक यू।
0: सो अविनाश जी ने बहुत ही प्यारा सा गाना सुनाया, और बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग देश दुनिया से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मौसम कैसा भी है, लेकिन हमें सुन के अच्छा लगा कि हाँ भाई, हम भले गर्मी में हैं लेकिन हमारे देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे एनवायरनमेंट में हैं, मौसम उनके यहाँ अच्छा है काफ़ी। तो फिलहाल चलिए, एक और जो गाना हम लोग सुन रहे थे उसको कंप्लीट करते हैं, और आपका नंबर लाइव है 6393 31 64 29, तो कॉल करना ना भूलें।

0: इसी के साथ अगले कॉल को चलिए करते हैं ऑन एयर, देखते हैं आवाज किसके। हेलो,
1: गुड इवनिंग मैम।
0: वेरी गुड इवनिंग, कैसी हैं सृष्टि? मैं भी एकदम एब्सोल्युटली फाइन। और क्या हो रहा है, गर्मी है आपके यहाँ कि नहीं है?
1: अरे मैम, मेरे यहाँ बहुत गर्मी है।
0: अच्छा, मेरे यहाँ तो अभी हवा चली है, बहुत अच्छी सी बारिश भी होने वाली है।
1: एसी में बैठी हूँ, कहाँ घर पे है?
0: नहीं, मैं एसी में कहाँ बैठी हूँ, मैं तो बाहर आके ऑन एयर, मतलब मैंने अपना सेटअप आज बाहर लगाया हुआ, इतना अच्छा मौसम है, तो सारा का सारा मेरा जो मतलब सिस्टम है वो बाहर लगा के बैठी हूँ मैं। तो फिलहाल ये बताइए सिस्टी कि आपने अपनी लाइफ में कोई जुगाड़ किया है कि नहीं?
1: जुगाड़ तो मैंने बहुत सारे करना
0: है। मतलब सिस्टी आपका पसंदीदा जुगाड़ कोई, जो मतलब वन ऑफ माई फेवरेट टाइप जुगाड़?
1: पैसे के लिए कुछ ज्यादा ही किए हैं।
0: किसके लिए?
1: पैसे के लिए।
0: ओ, क्या बात है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो इम्पोर्टेंट, ये ऐसा जुगाड़ है हर किसी ने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में किया ही
1: होगा।
0: हाँ, तो कोई एग्जाम्पल इसका?
1: एग्जाम्पल, कभी भैया से ले लिया, तो कभी मामा से ले लिया। सबसे पहले के मैं रखती हूँ अपने पास, और काम कर लगता है तो एक साथ निकालती हूँ, फिर कुछ सामान ले आती हूँ।
0: क्या बात है। और हम लोग भी बचपन में जैसे मामा मौसी इन सब के आने का इंतजार करते थे। अच्छा, जैसे कभी कभी क्या होता था कि मामा मौसी जब घर से जा रहे होते थे, अक्सर पैसे तभी मिलते थे जब वो लोग जा रहे होते थे।
1: हाँ। मेरे मामा की खास बात ये थी कि वो जब भी लेटते थे उनके पॉकेट से सारे पैसे नीचे गिर जाते थे, और हम लोग उनके आगे पीछे लगे रहते, कब लेते कब
0: गिरा हुआ धन पराया धन हो जाता है। हाँ, ये बात सही है। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में, जब मामा या मौसी या कोई भी आते थे, तो मतलब वो जब जाते थे तो ये हमेशा से हम लोग पूछ के रखते थे मामा कब जाएंगे। ऐसा ना हो कि जब मामा जाए मैं घर से घर पे ना हूँ, या मामा जाए और मैं सो जाऊँ। अक्सर ये होता है ना, बच्चे दिखते हैं तो मामा मामी जो होते हैं या बुआ मौसी जो भी होते हैं जाने लगते हैं, तब हाथ में पैसे थमा देते हैं, बच्चा दिख रहा है, लेकिन बच्चा गायब है सामने से तो पैसे नहीं मिलते हैं। तो हम लोग पहले से जैसे फील्डिंग लगा देते थे कब जा रहे हैं मामा।
1: पहले तो मुझे पैसे दे देते थे, बट अब है कि 500 रुपए मम्मी के हाथ में देते हैं, वो पास ना का है बुआ रख लीजिए, तो मेरे हाथ में नहीं आएगा, मम्मी के हाथ में जाता है।
0: तो वो तो हो चुका, फिर वो तो हो चुका, वो पराया ही धन है,
1: वो पराया धन हो चुका।
0: हाँ, तो सृष्टि कौन सा गाना सुनाएंगी आप आज, या कुछ और आपके मन में?
1: कुछ लाइन सुनाने लिखी थी।
0: वाह, क्या बात है।
1: एक दिन एक बात लिखूंगी, और कुछ लफ्ज कुछ एहसास लिखूंगी, कुछ कहीं प्यार की होंगी बातें, कहीं दुख का एहसास लिखूंगी, कभी खुशी के लफ्ज लिखूंगी, तो कभी आंसुओं से बात लिखूंगी, जो टूटे हैं रिश्ते बनाऊंगी, उन्हें एक नया एहसास लिखूंगी। थैंक यू।
0: क्या बात है, बेहतरीन लिखा, जो भी लिखा आपने मजा आ गया। थैंक यू सो मच सृष्टि, एंड ऐसे ही जुगाड़ लगाती रहिए, और इधर भी हम लोग को थोड़ा सा हम लोग का भी खर्चा वर्चा उठाते रहिए। क्या बात है। तो फिलहाल हमने सुन ली है आवाज़ सृष्टि की, और मज़ा भी आ गया यार। सच्ची बताऊँ, बचपन में पैसे के जुगाड़ बहुत करने पड़ते थे, मतलब क्या कहें। हम लोग के स्कूल के पास ना एक समोसे की दुकान थी, और यार वो समोसे ऐसे होते थे ना कि गर्मी हो बारिश हो किसी भी मौसम में अच्छे ही लगते थे। 1 रुपये का 1 देता था, तो मतलब उस ज़माने में पॉकेट मनी, आजकल तो बच्चे बहुत पैसे पा जाते हैं, 10-15 रुपये अक्सर उन लोग को मिल जाते हैं, रोज़ मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग को 10-15 रुपये महीने भर के लिए मिलते थे, तो गरीबी हम लोग की अपार थी। फिलहाल आगे बात करती हूँ, पहले कॉल आ गया। हेलो,
2: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग अनु, क्या हाल है? फिलहाल तो हमारी जुगाड़ देवी आ गई है।
2: अनु, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हो?
0: मैं तो फिलहाल जुगाड़ की फिराक में हूँ कि कोई जुगाड़ लग जाए और तुम्हारे घर से मिठाई आ जाए, क्योंकि तुम्हारे घर में गाय भैंस बहुत है।
2: जी, जुगाड़ तो जल्दी लगने वाला है, रोज सुबह घड़ी बहुत जल्द आने वाली है।
0: तो अनु ये बताइए, आपने अपने घर में, वैसे तो आपने बहुत जुगाड़ किए होंगे, वन ऑफ योर फेवरेट जुगाड़, जो जुगाड़ आपका बहुत पसंदीदा, जो आपका जुगाड़ बहुत पसंदीदा है?
2: मेरा जुगाड़ जो सबसे ज्यादा पसंदीदा है वो है ये, और मेरे उससे कई मतलब फायदे भी बहुत सारे हुए। मेरी छोटी सिस्टर ने, वो बहुत नन्ही सी, तो उसने रेडियो तोड़ दिया मेरा। अब रेडियो तोड़ दिया तो वो क्या करूँ, वो बज ही नहीं रहा था, तो मैं थोड़ा बहुत बना लेती थी तब भी।
0: भैया,
2: हाँ भैया ने सिखाया था मुझको, लेकिन मैम उसके लिए टाका धरने वाली मशीन चाहिए, स्काई चाहिए, वो सब चाहिए, तो वो सब तो मेरे पास थे नहीं, तो हमने ये किया, रेडियो को दोनों मतलब अलग अलग पार्ट में कर दिया दोनों तरफ की, और अलग अलग पार्ट को करके और वो डायरेक्ट हो गया था। फिर उसको ऐसे तार जोड़ के बजा लेते थे, फिर उसको ऐसे तार हटा के रख देती थी। जब मतलब बजाना होता था तो दोनों पार्ट अलग कर देती थी, और जब बंद करना होता था तो तार हटा के रेडियो जोड़ देती थी और रख देती थी। ऐसे मैंने 2.5 साल रेडियो बजाया है अपना।
0: क्या बात है, इसे बोलते हैं एक लॉयल लॉयल लिसनर। और गाना कौन सा सुनाना चाहेंगे आप अनु आज?
2: मैम मैं एक बात और कहना चाहूंगी, अभी अपना भैया कॉल किए थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी बातचीत सुन के।
0: क्या बात है, और फुल एनर्जी के साथ आ रहे हैं। तो देखिए आपकी फैन एक जिन्होंने कॉल किया है अनु जी, जो कि आपको
2: भैया जानते हैं मुझको।
0: ओह क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। तो अनु सुनाइए, क्या सुनाएंगे आप आज?
2: मैं एक सॉन्ग से गाना चाहूंगी, थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और कुछ अभी जैसे समय चल रहा है कुछ उसके हिसाब से है।

0: मुझे निकला ही।
1: क्या बात है, डोर कोई खींचे मदहोश किए जाए, क्या बात है।
0: आप क्यों ले के जा रही है डोर?
1: मेरे हाथ में जा रही है डोर, क्या बताऊं। थैंक यू सो मच
0: अनु, इसीलिए तो मैं ना बहुत जल्दी आपसे मतलब मुलाकात करूंगी कैसे भी करके। हाँ। मतलब मैं खुद मिलूंगी या कोई मिलेगा, पर कोई अपना ही आपसे मिलेगा।
1: ओह नहीं नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं है फिलहाल। चलिए मैं अब गाना सुना देती हूँ आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि एक गाना सुनने के बाद फीलिंग्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी।
0: फिर जल्दी से मैं आ जाऊंगी आपके पास, अभी आ जाऊंगी।
1: ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो अनु ने अपनी प्यारी से आवाज़ में गाना भी सुनाया और अपना फेवरेट जुगाड़ भी बताया। एंड जुगाड़ की बात करें तो हमारे देश में जुगाड़ों की कमी नहीं। और अगला कॉल भी मैं ऑन एयर कर लेती हूँ, लगातार कॉल आ रहा है। हेलो
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार, आदाब, प्रणाम, आपका शुभ नाम।
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ।
1: जी राकेश जी, राकेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं? वेरी गुड इवनिंग।
2: मैं बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: शिमला से?
2: जी जी जी जी।
1: क्या बात है, आपके यहाँ तो फिर गर्मी दूर दूर तक नहीं होगी।
2: जी मैं पहली बार आपके प्रोग्राम में जुड़ा हूँ।
1: वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच। और ये यूनिटी है हमारे इंडिया की, जितने भी मर्जी हम दूर रहें, हमारी डाइवर्सिटी कितनी भी क्यों ना हो, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं। सो ऑफ कोर्स जब दिल से जुड़े होते हैं तो तार अपने आप कहीं ना कहीं कनेक्शन लगा ही लेते हैं। सो फिलहाल राकेश जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हम लोग गोंडा में आपके साथ लाइव हैं, आप सुन रहे हैं शो गोंडा मैसी मसाला आरजे बीना वाला। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, जैसा कि जुगाड़ की बात हो रही है, आप शिमला में रहते हैं तो शिमला की लाइफ थोड़ी अलग ही होगी, तो वहाँ पे कोई ऐसा जुगाड़ जो आप मतलब अक्सर करते हो, लगता है कि हाँ यार ये वाला का तो मैं ही करता हूँ घर पे?
2: जी जी जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा ये टॉपिक है। और मैं इस विषय पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने बचपन में जुगाड़ किया था हमने। सबसे पहले उस जुगाड़ के लिए पता हमें डांस पढ़ सकती थी जो हमने किया था।
1: अच्छा अच्छा
2: जी। तो एक मेरा छोटा ब्रदर था, एक मैं था, एक गांव का भाई ये था। तो हम बचपन में क्या करते, बोलो हम बोलो खेलते, बोलो क्या क्या ड्रिंक वगैरह, बोलो ड्रिंक वगैरह, बोलो हाँ तो क्या करना है। तो हमने क्या किया, वो लस्सी लस्सी की लस्सी और उसमें जो हरा धनिया और हमें आइडिया में था किस तरह से बना सकते। तो उसने क्या किया, जो हरा धनिया को पीस के और उसकी चटनी बना के लस्सी में डाल दी। लेकिन लस्सी में डाल दी, लेकिन डाली डाली हमने पिया, वो बना खराब। वो मतलब उसने पत्ते मतलब वो थोड़ी ज्यादा डाल दी थी। तो मैंने बोला कि भाई अब क्या करे, मैं कहा घर में डांट तो पड़ेगी, क्या करे। तो उसने क्या किया, बोला मैं कहते इसको खत्म कर लेते, फिनिश कर लेते, मैं पी पी के। अरे मैं कहा इतना तो मैं नहीं पी पाऊंगा। नहीं नहीं, बोला मैंने, बोला अगर डांट से बैठे तो पी लेगी। तो हमने वो पूरा पिया, जब पिया ना वो हमने पूरा, तो हमार को फिर बाद में इसका असर हुआ कि पेट में दर्द फुल ग्लास पिया और पूरा पूरा जग हमने खत्म कर नहीं करना था, ताकि घर में अगर डांट खाने से बैठने के लिए तो वो तो कम करने था। तो पर ये है, डांट तो खा ली, लेकिन हमने जो बची थी उसमें वो फांकी नीचे।
1: क्या बात है,
2: वो नीचे फांकी और जो है बर्तन बुतन धो धा के रखा जी, चलो जी हो गया काम, बच गए। पर हम तो बचिए, लेकिन हमारा स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल खराब हो गया था उस चक्कर में।
1: जुगाड़ करने के चक्कर में आपने खुद का मतलब हाल खराब कर लिया। तो राकेश जी आप गाना कौन सा सुनाएंगे फिलहाल, ये बताइए।
2: जी जी जी जी, तो गाना सुना है मुझे, फिल्म का नाम है सिर्फ तुम।
1: सिर्फ तुम का गाना आपको सुनना है फिलहाल। मैं आपसे सुनना चाह रही थी कि आप दो लाइनें सुनाएं, क्योंकि मंडे इज कॉलिंग डे और कॉलिंग डे में लोग अपनी आवाज में।
2: जी जी जी जी, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे, तो मैं सुना दूंगा आपको दो लाइन।
1: यस यस, स्वागत है आपकी आवाज का।
2: जी जी जी जी, प्यार भी मिलेगा दिलदार भी मिलेगा, सब कुछ उसके हाथ है, अरे डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है, ऊपर वाला अपने साथ है। जी जी
1: क्या बात है, और आपके लिए पहली बार मोहब्बत की है सिर्फ तुमसे, मैं आपके लिए कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।
2: बिल्कुल जी जी, धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच। सो राकेश जी ने फर्स्ट टाइम कॉल किया तो इनके लिए इनका रिवॉर्ड सॉन्ग प्ले होने जा रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, कोई मतलब शिमला से कॉल कर रहा है, कोई साउथ से कॉल कर रहा है, क्या कनेक्शन है हम लोग का, सच्ची बता रही हूँ ना, दिल वाला कनेक्शन अब मालूम हो रहा है। तो चलिए सुनते हैं सिर्फ तुम से एक प्यारा सा गाना जो कि बहुत ही प्यारा है और मुझे ये गाना अभी पसंद है और आप सबको भी पसंद आएगा, पहली पहली बार मोहब्बत की है। लेट्स एंजॉय।

0: बेकरारी की जब बात करें तो ऑफ कोर्स बेकरारी तब बढ़ती है जब किसी को देखने की अगर इच्छा हो। सच बता रही हूँ, कोई ऐसा इंसान जिससे मिलने की उम्मीद हो और वो इंसान ना मिले तो बेकरारी ऐसे बढ़ती है जैसे मतलब लगता है ना कि अभी कोई हमारे सांसों को खींच के ले जाएगा। फिलहाल अगला कॉल आप लोग के साथ, चलिए सुनते हैं, मेरी बेकरारी दूर करते हैं, अगली आवाज़ सुनते हैं। हेलो, वेरी गुड इवनिंग।
1: हेलो, मैं बहुत बेकरार थी आपसे बात करने के लिए।
0: और मेरी बेकरारी आपने दूर कर दी आपकी आवाज़ सुना के। क्या बात है, कैसी हैं सविता जी? स्वागत है आपकी आवाज़ का, क्या हाल है?
1: ठीक ही हूँ, गर्मी में कैसे रह जाता, वैसा ही हूँ।
0: हाँ, अभी सुना आपने कोई शिमला से कॉल कर रहा है ठंडे ठंडी हवाओं के बीच बैठ के, और कोई साउथ से फोन कर रहा है कह रहा है 27 डिग्री टेम्परेचर और यहाँ हम लोग 42 पे जल रहे हैं।
1: और बारिश भी पता नहीं कब आएगा, 30 तारीख के बाद ही आएगा लगता है इधर।
0: हाँ,
1: अभी जी गर्मी में झेलना पड़ेगा, तो जुगाड़ के बाद
0: मानसून का भी कुछ जुगाड़ ही मुझे लगता है करना पड़ेगा
1: जी। तो मैं जुगाड़ की ही बात बता रही हूँ। मैं बचपन में रेडियो का तो बहुत शौकीन थी, तो रेडियो कभी कभी खराब हो जाता था, तार इधर उधर हो जाता था, तो मैं अपने आप ही रेडियो को खोल के जो तार छूट जाता था वहाँ पे मोमबत्ती टपका के उस तार को जोड़ देती थी।
0: मोमबत्ती टपका के, वाह वाह वाह, ये तो मोस्ट वांटेड जुगाड़ है। अच्छा, ये जुगाड़ मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मोमबत्ती से कोई जुगाड़ मतलब तार फिक्स की जा सकती है। क्या बात है, क्या
1: जी,
0: बात है।
1: मैंने 2-3 बार बचपन में करके देखी, ऊपर पर अभी जो है ना मेरा वाला रेडियो का एंटीना टूट गया है। एक दिन मैं शाम को टाइम 12 बजे सुन रही थी तो किसी भी तरह मेरा ही हाथ लग के गिर गया रेडियो, एंटीना टूट गया, तो उसमें तार लगा के सुनती हूँ, एंटीना है नहीं रेडियो का।
0: क्या बात है, इसी को बोलते हैं एक ना मतलब जज्बा अगर हो ना और किसी चीज से अगर लगाव हो, वो इंसान मतलब इंसान के अंदर ऐसी शक्ति है कि वो दुनिया इधर उधर अलट पलट सकता है अगर कुछ करने का जज्बा हो। एंड जुगाड़ तो हमारे इंडियंस के पास है ही। तो आज गाना कौन सा सुनाएंगे आप, पहले ये बताइए।
1: और एक जुगाड़ तो सुन लीजिए, और एक जुगाड़ देखी हूँ मैं माधोपुर में, जो सरकारी नल है उसका टोटी है नहीं, उसका टोटी है नहीं, तो एक पेप्सी का बोतल 1 लीटर का है, उसमें शरीर में गोल करके एक स्टेंडा किया है, उसको उसके साथ फिट कर दिया है पाइप के साथ, पानी आता है टाइम से, वैसा ही उसका काम चल जाता है। मतलब टोटी बिगड़ हो जुगाड़ बहुत कमाल का है देखी हूँ। तो मेरा भी गांव में अब सरकारी नल लगने वाला है, तो वही जगह आज इस्तेमाल करूंगी मैं भी।
0: क्या बात है, बहुत सही जुगाड़ है। आपको पता है मतलब जुगाड़ की बात तो इस कदर मैंने देखी है कि एक बार मैंने देखा कि बंदर क्या कर रहा था कि मतलब जो टंकी का जो ढक्कन होता है वो तोड़ देता है। और जब टंकी खरीदो तभी आपको टंकी का ढक्कन मिलेगा, यूजुअली क्या होता है टंकी टूट का ढक्कन टूट गया तो आपकी टंकी बिना ढक्कन के हो गई, यूजुअली गोंडा में मैं देखती हूँ सबके घर। तो एक लोग क्या मैंने जुगाड़ देखा, उन्होंने जानती क्या किया, उन्होंने एक टायर को लिया और टायर के ऊपर वो लगवा दिया, क्या कहते हैं लकड़ी का एक मतलब ऐसे उसको फिक्स करा दिया और उसी टायर का ढक्कन बना दिया, और इतना टाइटली वो फिट होता है उसके ऊपर कि वो निकलता नहीं है, चाहे बंदर निकाले आप भी बहुत दम लगाएंगे तो वो निकलेगा। मैंने कहा वाह भाई क्या जुगाड़ है, मतलब इतना सही जुगाड़ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। टायर के तो वैसे बहुत सारे जुगाड़ हम लोग करते हैं गांव वगैरह में, पर ये ढक्कन वाला जुगाड़ टायर से, माय गॉड, बहुत माइंड ब्लोइंग जुगाड़ था। फिलहाल सविता जी क्या सुनाएंगी, गाना कौन सा सुनाएंगी?
1: हम लोगों को वही जुगाड़ करना पड़ेगा भविष्य में, जब लगाऊंगी चाहे तो इधर भी बंदर आता है तो शाम को वक्त है तो फिर शाम वाले गाना कुछ गुनगुना दो।
0: बिल्कुल,
1: आज शाम होने आई, मौसम ने ली अंगराई, तो अब किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई, बस इतने गाऊंगी।
0: ठीक है, मैं चल रही हूँ, आप आइए और हर मंडे को आइए, ठीक है? थैंक यू सो मच सविता जी, क्या बात है, क्या
1: और फोन लगना चाहिए,
0: बिल्कुल ऑफ कोर्स लगेगा, और आप लोग मतलब 6 बजे से लेके 7:45 तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, थैंक यू सो मच। बस ये है कि उस समय ब्रेक ना हो। थैंक यू। तो चलिए, हमने सविता जी से गाना भी सुन लिया और इनके दो खतरनाक जुगाड़ भी सुन लिए, और मुझे लगता है अब मुझे तार कभी जोड़नी हुई तो मैं भी ऐसा ही कोई खतरनाक जुगाड़ लगाऊंगी। तो चलिए अगला कॉल आप लोग के साथ ऑन एयर करती हूँ। चलिए सुनते हैं आवाज़ किसकी है। हेलो,
2: हाँ मैम,
0: गुड इवनिंग, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम?
2: मैं कृष्णा का हूँ, बोल रहा हूँ।
0: कृष्णा जी, कृष्णा जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गोंडा
0: से बात कर रहे हैं। ओके, क्या बात है। सो कृष्णा जी, जैसा कि आप सुन रहे हैं, सब लोग अपने अपने जुगाड़ के बारे में बता रहे हैं, आप अपना कोई लेटेस्ट वाला जुगाड़ बताएंगे जो अक्सर आप करते हैं?
2: मेरा जुगाड़ बस यही ऐसा है मैम, जब हम गाड़ी उड़ी चलाते हैं तो हर चीज में मोटिफाई करते रहते हैं, जैसे गाना सुनना अच्छे और यही सब है।
0: अरे वाह, क्या बात है। चलिए ये बताइए, आप सुनाएंगे क्या, कौन सा गाना सुनाएंगे?
2: हम विवाह फिल्म का पूनम हो गाना वाला।
0: आपकी शादी तो नहीं होने वाली है?
2: नहीं,
0: मुझे लगा शायद। चलिए सुनाइए।
2: थैंक यू मैम।
0: तो फिलहाल इन्हें गाना सुनना है। ओ क्या बात है। तो बिल्कुल कृष्णा जी, मैं आपका गाना तो सुना दूंगी, फिलहाल के लिए मैं एक गाना सुना रही हूँ आपको, और आपका गाना जो है थोड़ी देर में प्ले करूँगी, तब तक के लिए एंजॉय करिए। वैसे बहुतों की शादी शुरू होने वाला है, मौसम बहुतों की शादी होने वाली होगी क्योंकि अब लगन आ चुकी है। बीच में ब्रेक था एक महीने का, वो ब्रेक ख़त्म हो चुका है, नाउ लगन इज़ अगेन लाइव। तो जिसको जिसको शादियाँ करनी है, जिसकी इंगेजमेंट रुकी हुई है, वो फटाफट से निपट जाए, नहीं तो भाई आपको पता है कि नेटवर्क कब बिज़ी हो जाता है पता नहीं चलता। यस, ऐसा ही शादी का भी सीन है आजकल। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम फालतू।

0: अभी नहीं, चल।
1: People on the floor.

आज की प्लेलिस्ट मैंने एक अलग रंग से बनाई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए, बहुत सारे हमने लव सॉन्ग सुन लिए, लेकिन कुछ ऐसे गाने होने चाहिए जिनको सुनने के बाद हमारे दिल की धड़कनें कहें वाह क्या बात है, मज़ा आ जाए। फिलहाल आप लोगों से मैं कहने वाली थी कि आप लोगों ने तो गाने सुनाए लेकिन मज़ा आ गया। फिलहाल अब मेरी बारी है। मुझे बहुत सारे लिसनर्स ने लास्ट वीक कहा था कि आप गाना सुनाइएगा, पर मैं जो हूँ कि भूल जाती। फिलहाल किसी गाने की मुझसे फरमाइश हुई थी, किस गाने की हुई थी वो गाना मुझे याद नहीं आ रहा है। मेरे किसी लिसनर ने शनिवार को कहा था कि गाना सुनाइएगा, और हाँ यस गाना पुराना था। तो फिलहाल मेरे एक लिसनर हैं जिनकी फरमाइश पे ये गाना मैं गा रही हूँ, और मंडे भी है, और मंडे होने के साथ ये गाना तो ऑफकोर्स सुनाया जा सकता है। और चलिए सुनते हैं मेरी आवाज़ में ये प्यारा सा गाना, और हमेशा से ये गाना मुझे बहुत पसंद रहा है और फरमाइश भी हुई है, तो मैं सोच रही सुना दूँ। फिलहाल सैयारा का गाना मतलब सुन के, सैयारा का बीजीएम सुन के मन कर रहा है यही गाऊं, लेकिन नहीं।

फिलहाल मैं लिरिक्स भूल गई हूँ, तो चलिए अगले गाने की जिसकी फरमाइश मेरे लिसनर्स ने किए वो मैं सुना देती हूँ। इस गाने को सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा, पुराना है इसीलिए और ज़्यादा आएगा।

मैसेज है, लिरिक्स के साथ गा रही हूँ। आई होप मैं थोड़ी सी कोशिश तो कर पाऊंगी इस गाने को गाने की। बहुत दिनों बाद मैं आज गा रही हूँ, फिलहाल बहुत दिनों बाद मैं सुन भी रही हूँ उसका म्यूजिक भी। सो बताइए कैसा लग रहा है। अगला स्टैंजा आप लोग के लिए,

0: आई होप ये गाना आप लोग को पसंद आया होगा, मैंने जो छोटी सी कोशिश की। गुड इवनिंग लवली, कैसी हैं आप? और इस गाने का तो जो काम था वो मैंने पूरा कर दिया। फिलहाल आप लोग का कॉल नहीं आया, बाकी सारे लोग बाद में जो कॉल करते हैं उन लोग की बात कहूँ तो वो लोग कहेंगे कि मेरा कॉल मैम रिसीव नहीं करती हैं, लेकिन एक कॉल आ गया, चलिए सुन लेते हैं किसकी आवाज़ है। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार, आपका शुभ नाम?
1: रईस बोल रहा हूँ।
0: ओ रईस जी, कैसे हैं? शुभ संध्या, क्या हाल है?
1: मैं एकदम ठीक हूँ, और मैंने बस अभी 5 मिनट पहले आपको ज्वाइन किया है।
0: क्या बात है, बहुत सही समय पे ज्वाइन कर लिया, क्योंकि गाने के लिए तो आप ही ने कहा था।
1: जी साहब, ये गाना जब आप गाती थी और जैसा पहले फ्लेवर था वैसा ही आज फ्लेवर है, वही टेस्ट है, बिल्कुल कुछ बदला ही नहीं है उसमें। और हम लोग अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा था जो 30 साल पहले की जिंदगी थी, तो पहले सुकून था वो वाला फीलिंग आ गया।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच। अगर 1% भी अगर ऐसा आपको फील हुआ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या बात है,
1: बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी। और बीच में जब आप नहीं थी काम पे तो हम पूछ भी रहे थे मानवेंद्र भाई से कि कहाँ नहीं है, तो बोले कि आएंगे, वापसी होगी भी उनकी।
0: क्या बात है। और फिलहाल आपने बहुत दिन से कुछ सुनाया नहीं, तो आज आप कॉल करके फंस गए हैं, या कहें फॉर्चुनेटली आप आ गए हैं, तो आपसे गाना सुने बिना जाने नहीं देंगे।
1: चलिए मैं 2 लाइन सुना देता हूँ, स्पेशली आपको डेडिकेटेड है।
0: क्या बात है,
1: वैसे मुझे कुछ याद नहीं, छोटा फूटा याद है, वही सुना देता हूँ।
0: थैंक यू, स्वागत है
1: जी सर। खूबसूरत है तू तो हम भी हसी, इस

0: करूं, झूठा नहीं करूं कोई प्यार में, क्या कहो दिलरुबा तू है मुझसे खफा, ये बहाना न कर। बस
1: इतना याद रहना, याद नहीं था ना मैडम। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने गाया। और मुखड़े की लाइन आपने गानी भूल ही गए आप, लेकिन थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है।
0: ये आप ही के लिए था, मुझे कुछ याद नहीं था क्योंकि आज गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि दिमाग बराबर काम ही नहीं कर रहा।
1: तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, कल बहुत अच्छी सी बारिश तो नहीं, लेकिन हाँ मौसम कल बहुत अच्छा होने वाला है, पहले ही बता देती हूँ आपको मैं।
0: कभी आइए दर्शन दीजिए, बहुत दिन हो गया आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, आऊंगी, जरूर आऊंगी। थैंक यू सो मच।
0: बिल्कुल आई, ओके थैंक यू, शुक्रिया।
1: सो रईस जी ने आके बहुत प्यारी सी आवाज में गाना भी सुना दिया, और अब चलिए अगले कॉल की तरफ रुख करते हैं और सुनते हैं अगली आवाज किसकी है। हेलो
2: हेलो,
1: शुभ संध्या।
2: हेलो
1: हेलो,
2: शुभ संध्या मैडम, नमस्ते।
1: नमस्कार, आपका शुभ नाम।
2: मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ आप।
1: जी मुमताज जी, कैसे हैं, स्वागत है। आप कम कॉल करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं उसी अदा से करते हैं, क्या बात है।
2: और मैडम आप कैसे हैं, ठीक
1: हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, और आप लोग की आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग अलग अलग जगह से अलग अलग अंदाज में गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, क्या शाम का मतलब रंग आ गया है। तो वैसा मुझे पता है आप बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ अच्छा सा सुनाएं आज।
2: जो आप कहेंगे वो सुना देंगे, बस ऊपर वाले का करम रहे, आप लोगों की दुआएं रहे, बस और क्या चाहिए।
1: जो भी आपका पसंदीदा, रफी साहब का अपना पसंदीदा कोई भी गीत सुना दे।

0: रफी साहब का
1: जी?
0: जी सुना रहा हूँ। रफी साहब का कौन सा गाना है?
1: जो भी आपको दो पंक्तियां, जो भी अपने पसंदीदा गीत की भी सुना सकते हैं।
0: कोई दूसरा सुना दे मैडम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है।
0: तो सुनिए,

कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। ओ बाहों में भर के हम उनको मदहोश बनाने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं।

0: क्या बात है, क्या
1: मैडम।
0: बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुमताज़ जी, जिस अंदाज़ से आप हमेशा गाते हैं, वही अंदाज़, वही ठहराव और वही लय, वही मतलब क्या कहने, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया मैडम।
0: शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो अभी आज शाम में रंग चढ़ता ही जा रहा है, सबकी आवाज़ों से शहद गिरता ही जा रहा है, और अगला कॉल आप लोग के साथ साझा करने की बारी है। चलिए सुनते हैं अगली आवाज़ किसकी है। हेलो,
1: नमस्ते
0: नमस्ते, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम।
1: मैम, स्वाति सिंह बात कर रहे हैं, ग्राम अम्बरपुर मनकापुर हीरा गोंडा से। जी
0: स्वाति,
1: मैम,
0: अंबरपुर मनकापुर गोंडा से, क्या बात है। स्वाति, पहले तो सभी से आपका स्वागत है, सबसे पहले आपका स्वागत है, और मुझे लगता है फर्स्ट
1: जी
0: टाइम
1: मैम,
0: मैं
1: बहुत
0: आपसे
1: बहुत
0: बात कर
1: धन्यवाद आपको।
0: फर्स्ट टाइम मैं
1: हाँ
0: आपसे बात कर रही हूँ, आई थिंक सो।
1: जी मैम,
0: क्या बात है। फाइनली मुकम्मल हो गई हमारी मुलाकात ऑन एयर। तो स्वाति, आप क्या सुनाना चाहेंगी, सबसे पहले तो ये बताइए।
1: मैम एक शेर भी सुनाना चाहते हैं और एक गाना भी सुनाना चाहते हैं।
0: तो दोनों सुना सकते हैं आप बेशक।
1: सुबह सुनती हूँ, श्याम सुनती हूँ, सुबह सुनती हूँ, श्याम सुनती हूँ, जिंदगी में बसी हूँ तमाम सुनती हूँ, मेरे इंतजार का वक्त तब दीवाना होता है जब मैं आकाशवाणी गोंडा का प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच, सो मच, सो मच। और मुझे लगता है कि इतना कहना आपका हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप सुन के और सुबह शाम सुन के इन पंक्तियों को लिख रही हैं, क्या बात है, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। रेडियो ज्ञान से 89.6 FM की तरफ से दिल से आभार। तो गाना कौन सा सुनाएंगे आप।
1: मैम, मूवी का नाम है हाथी मेरे साथी और गाने की बोल है नफरत की दुनिया में सॉरी मैं बोल गई, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ कर प्यार की दुनिया में खुश

0: रहेगा मेरे यार, जब जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में तो वैसी से सारे, एक जानवर की जान आज इंसानों ने ले ली, चुप क्यों है संसार, खुश रहना मेरे यार, खुश रहना मेरे यार।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच। और आप भी हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए स्वाति। एंड यस, अगले मंडे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। फर्स्ट टाइम कॉल किया तो आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट आज बीना की तरफ से। कौन सा गाना अपनी पसंद का सुनना चाहती हैं?
0: मूवी का नाम है दिल तेरा आशिक और गाने के बोल है, अब ना छुपाऊंगी सबको बताऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी, तुमसे हुआ है मुझे प्यार है मेरा दिल तेरा आशिक, तुमसे हुआ है हमें प्यार है मेरा दिल तेरा आशिक। मैं भी गाना सुना दीजिए
1: सभी श्रोताओं
0: को, डेडिकेटेड और आपको भी और मेरे परिवार वालों को भी, सबको।
1: थैंक यू सो मच स्वाति, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। ये ऊर्जा, ये एनर्जी हमेशा बरकरार रखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। तो फिलहाल अभी हमारी एक लिसनर जिसका नाम है स्वाति, उनको सुन के बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा गाया उन्होंने। और मतलब मुझे अच्छा लगता है कि ऐसी इस अंदाज़ में आप लोग इतना सुंदर गाते हैं, और क्या कहने। तो चलिए छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक लेते हैं, उससे पहले कॉल और आ गया, उसको ऑन एयर करते हैं और अगली आवाज़ सुनते हैं किसकी। हेलो
2: हेलो,
1: शुभ संध्या, गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम।
2: मंडी मैडम जी, क्या है कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है।
1: जी जी,
2: तो मैंने दूसरे से मिलाया, मेरा नाम चंद्रभान पांडे।
1: ओ चंद्रभान जी, कैसे हैं? शुभ संध्या, फाइनली दोस्ती निभानी, दोस्ती आपसे निभानी सीखनी चाहिए। दोस्त लाइव तो हम भी लाइव।
2: कैसे हैं? आवाज को सुन करके ही मिलाया भी।
1: क्या बात है, कैसे हैं चंद्रभान जी? सबसे पहले
2: आप कैसी हैं? आप अच्छी हैं?
1: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, और आपकी आवाज सुनने का मौका मिलने वाला है काफी दिनों बाद, एक सुरीला सा गाना सुनने को मिलने वाला है।
2: दरअसल में क्या, जब मैं आपकी आवाज सुनता हूँ तभी मेरा मन करता है, सीधी बात से बता रहा हूँ।
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है।
2: और अच्छा नहीं लगता है, आपने बोलती तो समझ में आता है।
1: क्या बात है, तो आपकी आवाज में
2: आज मैं थोड़ा दो गाने करती इसमें सुना रहा हूँ।
1: जी जी बिल्कुल, स्वागत है स्वागत।
2: मैं ना भूलूंगा इन कसमों को, इन रस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। बरसता सावन हो, महकता आंगन हो, कभी दिल दूल्हा हो, कभी दिल दुल्हन हो, पवन बन कर झूमे, गगन बन कर चूमे, वो देखो रात ढली, ये कैसी बात चली, तू बन जाए सांझ आखिरी, तू जीवन बन जा, जीवन से सांसों का रिश्ता, मैं ना

0: मैं ना भूलूं कभी।
1: क्या बात है, समा बांध दिया आपने इस गाने को सुन के, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, क्या बताऊं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अंदाज आपका जो दिल से आप गाते हैं ना, हमेशा से आपको बेहतरीन बनाता है, क्या बात है।
0: और बीच में क्या आपसे एक खुशखबरी है आपके लिए।
1: जी जी,
0: आप एक बार हमारी दुकान से आने का आप कष्ट करिएगा।
1: जी बिल्कुल,
0: क्या है कि आपको, आपके लिए, आप सभी के लिए सूट है, साड़ी है, इन सब चीजों का जो है हमारे यहाँ बिक्री उपलब्ध है, सब कपड़े उपलब्ध हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू सो मच। जितने भी गोंडा के लिसनर्स हैं, आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बताई गई है, सो डेफिनेटली हम लोग आएंगे। थैंक यू सो मच,
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। सो चंद्रभान जी की आवाज़ में हमने बहुत प्यारा सा गाना सुना। और एक और आखिरी कॉल आप लोग के लिए, मैं एक भी कॉल मिस नहीं करना चाहती, तो चलिए अगली आवाज़ सुनते हैं। हेलो,
2: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम।
2: मैडम मेरा नाम आशीष शुक्ला है।
1: आशीष, आशीष कहाँ से बात कर रहे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग।
2: जानकी नगर गोंडा।
1: जानकी नगर गोंडा से, क्या बात है आशीष जी। तो सबसे पहले हाँ हाँ, मेरे बगल से, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कॉल किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑन एयर बता दूं कि आप सुन रहे हैं शो गोंडा मैसी मसाला, आरजे पीना वाला 89.6 एफएम पर। आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या सुनाना चाहते हैं, गाना सुनाना चाहते हैं, शायरी सुनाना चाहते हैं, या कुछ स्पेशल?
2: मैं सुनना चाहता हूँ, सुनाना नहीं चाहता।
1: सुनना चाहते हैं तो सुनने के लिए आपको 7:45 पे कॉल करना चाहिए था, फिलहाल सुनाने वाले कॉल कर रहे हैं। तो आप अपनी फरमाइश बता दीजिए, मैं प्ले करके आऊंगी। बताइए कौन सा गाना सुनना है।
2: रहते हैं हम खोए खोए गुमसुम की आंखों में तुम।
1: रहते हैं हम खोए खोए गुम गुम
2: गुमसुम
1: हम तुम। ओके,
2: गुमसुम गुमसुम।
1: ओके ओके, किस फिल्म का गाना है ये?
2: मैडम फिल्म का नाम नहीं याद है मुझे। रहते हैं हम खोए खोए गुमसुम की आंखों में तुम।
1: ओके, थैंक यू सो मच आशीष जी, थैंक यू। तो फिलहाल आशीष जी का हमने गाना सुन लिया है, और अब इन्होंने फरमाइश की है, कुल मिला के गाया नहीं लेकिन हाँ, फिर भी इन्होंने लिरिक्स बता दिए। तो देखिए, अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, टाइम हो चुका है मेरे जाने का। आप लोग के लिए स्पेशली मैं बता दूँ कि अब समय हो चुका है आरजे बीना की विदाई लेने का, लेकिन क्या बताऊँ, इतने सारे कॉल्स आए, मन तो गया सारे कॉल ऑन एयर ले लूँ, लेकिन क्या करूँ, टाइम बहुत लीस्ट था, और इस लीस्ट टाइम में आप लोगों से बातें करते रहना, आप लोगों को सुनते रहना, आप लोगों को सुनाते रहना, इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छी फीलिंग है। तो इस फीलिंग को आगे भी बरकरार रखेंगे। फ़िलहाल आरजे बीना को दीजिए इजाज़त, आगे ये म्यूज़िकल जर्नी बरकरार रहेगी, आप सुनते रहेंगे अपने पसंद के गाने। फ़िलहाल हम लोग एक फरमाइश का गाना सुनते हैं, पूनम हो, इसके बाद हम सुनते हैं आशीष जी की फरमाइश का गाना, रहते हैं हम खोए खोए गुमसुम। क्या बात है, बहुत अच्छा सा गाना इन्होंने सेलेक्ट किया है। चलिए इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना वाला रेडियो स्टेशन बजाते रहिए, ज्ञान सिटी 9.6 एफएम। और आपके साथ लाइव थी आपकी अपनी आरजे बीना, आपके वाले शो गोंडा मैसी मसाला, आरजे बीना वाला के साथ। स्टे ट्यून्ड।

और इसी के साथ में ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि ये है मेरी आज की सबसे पसंदीदा सी फरमाइश और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

मैं मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, और कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को भर। तो वो कोई आप जानते हैं कौन है? वो कोई है आप सभी। आप सभी सच में अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के लिए हैं एक बंजारे को भर। थैंक यू सो मच, इट मीन्स रियली अ लॉट। और एंजॉय कर लेते हैं फिर से आप सभी के लिए ये नगमा कम्प्लीटली, एक एक लाइन, एक एक शब्द, ये सब कुछ आप सभी के लिए। स्टे ट्यून्ड।

सो नमस्कार आदाब एंड सशकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। सो कैसे हैं आप सब, क्या है हालचाल और क्या है आज की शाम में बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी सी बात और जज्बात, मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल आप सभी को ये वाला गाना कैसा लगा है मुझे चैट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, किसका है ये तुमको इंतजार में होना, तो मैं आ चुकी हूँ मीन्स आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आपकी फरमाइशी की गठरी को खोलने के लिए, उसमें से आपकी फरमाइशी के गीतों को प्ले करने के लिए और आपकी जज्बातों को समझने के लिए और अपनी जज्बातों को बयां करने के लिए आ ही चुकी हूँ। सो खोल लीजिए अपनी फरमाइशी की गठरी और उसमें से टटोल लीजिए एक बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा नगमा और ले आइए, पेश कर दीजिए हमारे चैट बॉक्स में और लगा दीजिए जितने चांद आज की शाम की फरमाइशी की महफिल में आप लगाना चाहते हैं। हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, सिर्फ चांद नहीं लगाना है। अगर जुड़ा है दिल तो दिल जुड़े हुए दिल भी लगाने हैं, अगर टूटा है दिल तो टूटे हुए दिल भी लगाने हैं, अगर मिली है उम्मीद तो वो भी दिखाना है, अगर ना उम्मीदियां मिली है तो वो भी दिखाना है, क्योंकि ये है शाम, यहाँ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सुकून, क्योंकि दिन भर की थकान एकदम से, अब फिजिकल थकान हो चाहे ना हो लेकिन मेंटल थकान कहती है कि भाई म्यूजिक थेरेपी जरूर चाहिए, और म्यूजिक थेरेपी के साथ में अगर थोड़ी बहुत दिल की बातें भी निकल आ जाए तो दिल बहुत हल्का हो जाता है ना दोस्तों। मैं तो यही करती हूँ आप लोग के बीच में आके, आप करते हैं नहीं करते हैं ये तो आपका दिल जानता है, ऊपर वाला भगवान जानता है। फिलहाल एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश, लेकिन उसके पहले इस्तकबाल तो कर लूं आप सभी का। राजेश सिंह जी मालवे नगर गोंडा से आपका स्वागत है, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से लवली सिंह स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो, बबीता जी गोंडा से, प्रबल मिश्रा गोंडा से, रितिन सिंह गोंडा से, अनुष्का श्रावस्ती से, जुगल किशोर वर्मा मीन्स जग्गू दादा जी एमपी से, और सुरेश कुमार जी चौक से, नेबर जी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, राजू सलमानी जी आवास विकास गोंडा से, द ग्रेट सिंह साहब एमपी से आपका भी स्वागत है, मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, चांदनी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, और नव्या गोंडा से, तानिया गोंडा से, एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सो एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश, और जिन श्रोताओं का नाम मैंने मिस कर दिया है प्लीज बुरा मत मानना, दिल से आप लोग का वेलकम मैंने कर ही दिया है। सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश बिना किसी देरी के, और हमारे पास में पहली फरमाइश है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, उनको सुनना है किशोर कुमार जी की आवाज में नगमा, ऐसी हंसी चांदनी पहले कभी न थी। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी और बहुत ही प्यारी सी बातों को एंजॉय करने के लिए, प्यारी तो कहीं से नहीं होती है, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये वाली फरमाइश।

ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी, और सच में मेरी भी जिंदगी में इतनी हसी चांदनी तो पहले कभी न थी। और वो चांदनी कौन है पता है? ज्ञान स्थली 89.67 और इसके मेंबर्स। सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। ये तो फरमाइश थी मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों बबीता जी की गोंडा से, और बबीता जी को गोंडा से सुनना है गाना हर दिल जो प्यार करेगा। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा बबीता जी की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मुस्तफ़ा जी सऊदी से, अरमान पटेल नगर गोंडा से, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। और एंजॉय कर लेते हैं ये वाली फरमाइश हर दिल जो प्यार करेगा।

हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, हर दिल जो प्यार करेगा। हमने एंजॉय किया है ये नगमा उदित नारायण और अलका याग्निक जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज में हमारी बबीता जी की फरमाइश पर, जो की है गोंडा से। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। संतोष कुमार जी गिलौली से, श्री शाह आपका भी स्वागत है, सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से और ऋषि रंजन जी, स्टे ट्यून्ड इन योर शो। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा की, मींस जुगल किशोर वर्मा जी की। उनको सुनना है शागिर्द मूवी का गाना दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। और वैसे दिल विल प्यार व्यार अब आपकी आरजे सिंपल भी नहीं जानती है शायद, सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। लेकिन प्यार तो भाई दिल में कूट कूट के, कूट कूट के, कूट कूट के भरा है। और इस दिल को प्यार मिलता भी कूट कूट के है, कूट कूट के है, कूट कूट के है। लेकिन इस दिल विल का मतलब, प्यार व्यार का मतलब तब भी समझ में नहीं आता। कुछ तो लोचा है इस दिमाग में, है ना। स्टे ट्यून्ड।

लेट वट नैन वैन मैं क्या जानू रे, जानो तो जानो बस इतना ही जानो तुझे अपना मानो रे, और दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। हमने इंजॉय किया ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा, और ये गाना शायद मैंने इतनी करीब से कभी नहीं सुना था, इतना शब्दों को मैंने कभी ध्यान से नहीं सुना था, और ये गाना नो डाउट दोस्तों मेरी प्लेलिस्ट में ऐड होने वाला है। सो थैंक यू जग्गू दादा। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रबल मिश्रा की गोंडा से। प्रबल मिश्रा को गोंडा से सुनना है गाना। मोहब्बत का सपना दिखाया है तूने, मुझे इश्क करना सिखाया है तूने। तो कुमार सानू अलका याग्निक जी की आवाज में ये सुपर डुपर हिट मोहब्बत इश्क प्यार वाला नगमा एंजॉय करते हैं प्रबल मिश्रा की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा, और नागेश्वर धाकर आपका भी स्वागत है। स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं ये वाली फरमाइश।

ऐसे ही प्यार किया जाता है चोरी चोरी। हमने एंजॉय किया कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। हमारे प्रबल मिश्रा जी की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। आसिफ खान मुंबई से आपका स्वागत है और मुकेश यादव जी गोंडा से स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है रितिन सिंह की। रितिन सिंह को सुनना है गाना लड़का दीवाना लगे। सो रितिन सिंह की फरमाइश पर अनुराधा जी और उदित नारायण की आवाज में एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड।

का दीवाना लगे वाह वाह जी वाह वाह। हमने एंजॉय किया है अनुराधा जी और उदित नारायण की बहुत ही प्यारी सी आवाज में ये बहुत ही प्यारा सा नगमा रितिन सिंह की फरमाइश पर। चलिए ना चलते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। तो ये सिलसिला फरमाइशों का ऐसे ही चलता रहेगा और आपके दिल के जज्बात ऐसे ही फरमाइशी गीतों के थ्रू निकलते रहेंगे, क्यों सही गाना मैंने। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है लवली सिंह की और लवली सिंह को सुनना है गाना सात तजुबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा मोहम्मद रफी जी की आवाज में हमारे हमारे हमारे लवली सिंह की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

फ्लोर पे आना पड़ेगा और दो चार ठुमके लगाने पड़ेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने अनुष्का? सो अनुष्का जी की फरमाइश है श्रावस्ती से, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी। सो एंजॉय करते हैं ये लुंगी डांस, मींस अनुष्का की फरमाइश। और अनुष्का है श्रावस्ती से, स्टे ट्यून्ड। मूंछ को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के, ऑल द रजनी फैंस। I love this song.

हम एंजॉय किया है ये तड़कता भड़कता सा गाना चेन्नई एक्सप्रेस का यू यू हनी सिंह का गाना सिर्फ और सिर्फ अनुष्का की फरमाइश पर जो कि श्रावस्ती से। एंड नो डाउट दोस्तों चैट बॉक्स में सबके सब मुझे डांस करते हुए नजर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मजा आ गया, एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, जानते हैं किसकी? संतोष कुमार जी की गिलौली से। और संतोष कुमार जी को गिलौली से सुनना है गाना, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, और हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे। तो लाल दुपट्टा मलमल का ये गाना अनुराधा और उदित नारायण जी की आवाज में एंजॉय करते हैं हमारे संतोष जी की फरमाइश पर जो की है गिलौली से। स्टे ट्यून्ड। बहुत दिनों बाद ये गाना सुन रही हूँ मैं, सो थैंक्स।

हमने इंजॉय किया है लाल दुपट्टा मलमल का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा उदित नारायण और अनुराधा जी की आवाज में। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ दोस्तों। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहम्मद मुशीर जी की बाराबंकी से। मोहम्मद मुशीर जी को बाराबंकी से सुनना है सात रंग के सपने मूवी का गाना आती है तो चल। सो एंजॉय करते हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में ये वाला गाना मोहम्मद मुशीर जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम।

सात रंग के सपने मूवी का ये गाना आती है तो चल मेरे साथ में बाबुल सुप्रियो अलका याग्निक की आवाज में हमने एंजॉय किया है मोहम्मद मुशीफ जी की फरमाइश पे जो की है बाराबंकी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि अगली फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। दोस्तों एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मुस्तफा जी की, और उनको सुनना है गाना फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। सो एंजॉय करते हैं लता जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मुस्तफा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। ओह इट्स रिमिक्स वर्जन।

0: निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना की कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिदर बंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ वेम्बू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे, चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भाई नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बाघुआपाला बुद्धा पंख, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
7: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काशफी नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 टाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाईं। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
8: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
9: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते, तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो 11.89 पॉइंट 6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल और ये है आपकी फरमाइशी की महफिल। सो एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल आप सभी का आपके अपने फरमाइशी की महफिल में। सो एंजॉय करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। ये न्यूज के ब्रेक के बाद वाली लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रीति शुक्ला जी बहराइच से आपका स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके अपनी आरजे सिंपल। सो एंजॉय करते हैं अब अगली फरमाइश हमारे पास में दोस्तों ऋषि रंजन की और ऋषि रंजन को सुनना है गाना मेरी मोटो। सो एंजॉय करते हैं ये हरियाणवी सुपर डुपर हिट नगमा ऋषि रंजन की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: छोटे प्यार हो गया यार
2: मन भी हो गया भाई
1: एक दूसरे बीच में नहीं आना है
2: किस्मत अपनी अपनी

0: किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, उकी बहु किसे ता पटा कोना, जिसका बलमा पावरफुल है। चले मोटो
1: हिट नगमा ऋषि रंजन की फरमाइश। सो नाउ लेट्स गो टू अगले वाले फरमाइश की तरफ दोस्तों, बिना बिना बिना किसी देरी के। और अगली फरमाइश हमारे पास में है अरमान की, पटेल नगर गोंडा से। अरमान को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना स्वर्ग से सुंदर। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अरमान की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

तुम्हारा प्यार न रूठे और कभी घर द्वार न छूटे। हमने इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सनंगमा अरमान की फरमाइश पे, चुकी है पटेल नगर गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से, और सुरेंद्र यादव जी को गौरा चौकी से सुनना है गाना तू कौन है तेरा नाम क्या। कुमार सानू साधना सरगम की आवाज में खिलाड़ियों का खिलाड़ी मूवी का ये गाना इंजॉय करते हैं सुरेंद्र जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

एंजॉय किया है खिलाड़ियों के खिलाड़ी का ये सुपर डुपर हिट नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों। ये तो फरमाइश थी सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है श्रीशा की। श्रीशा को सुनना है गाना पास वो आने लगे जरा जरा। सो एंजॉय करते हैं एक बार फिर से सुपर डुपर हिट नगमा कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में, लेकिन इस बार श्रीशा की फरमाइश पर।

So, दोस्तों पास को आने लगे जरा जरा हमने एंजॉय किया है ये नगमा श्रीशा की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है इट्स कुमार की एमपी रीवा से। इट्स कुमार को एमपी रीवा से सुनना है रीवा का कोई सॉन्ग। सो एंजॉय करते हैं रीवा बेस्ड सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ इट्स कुमार की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम इन योर शो इम्तियाज अहमद फ्रॉम गोंडा और ये फरमाइश थी इट्स कुमार के एमपी रीवा से। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, जानते हैं किसकी? आसिफ खान की मुंबई से, और आसिफ खान को मुंबई से सुनना है गाना दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, हाउ रोमांटिक नगमा, सिर्फ और सिर्फ आसिफ।

नगमा सुनो। हमने इंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आसिफ खान की फरमाइश पर। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, जो की होगी हमारी आज की आखिरी फरमाइश। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है चांदनी की गोंडा से। उनको सुनना है हरियाणवी गाना फीलिंग, तो इंजॉय करेंगे सुमित गोस्वामी का ये गाना फीलिंग्स सिर्फ और सिर्फ चांदनी की फरमाइश पर। और इसी के साथ में आपके आज सिंपल नॉट से सिंपल लेना चाहेगी अलविदा। सो दोस्तों अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आज सिंपल को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट से सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट से सिंपल के लिए। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। और इसी के साथ मैं कुछ कहना भी चाहूंगी दोस्तों कि बदलते लोग और बदलती बातें, बदलते लोग और बदलती बातें अक्सर बहुत कुछ सिखा जाती है, इसीलिए उससे सीख जरूर लेना चाहिए। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। बाय बाय, मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखना, स्टे ट्यून्ड।

0: नफरत की हमारे शहर में लग न जाए आग, नफरत की हमारे शहर में मैं मोहब्बत हूँ, मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस अकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं।

0: गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस अकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत अल्टर स्किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टर स्किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें अल्टर स्किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
6: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
7: मतलब?
6: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
8: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
9: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
10: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
11: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
10: सच में? क्या खास है वहाँ?
11: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
10: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
11: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
10: और फोटोग्राफी वगैरह?
11: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
10: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
11: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
10: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करें हौसला नहीं होता, रात का इंतजार कौन करे, रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। जी हाँ, तो बशीर भट्ट ने जिंदगी के उस अछूते सच को हमारे सामने बहुत ही बेबाक और निडर अंदाज में रखा कि जी बहुत चाहता है सच बोले। और ये सच बोलने का काम वास्तव में बहुत दुश्वार काम है, इतना आसान नहीं होता जी, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे हौसले की आवश्यकता होती है। जी हाँ, आप सुनाते हैं आपको एक प्यारी सी गजल और फिर मिलते हैं आपसे संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो का नस्ल 89.6 FM, यह है गुना शहर की थड़क।

रुकिए,

0: अरे गाड़ी रो
1: अस्सलामुअलैकुम।
0: क्या हो रहा है मुस्तफा?
1: कुछ नहीं, गाड़ी ज़रा खराब है।
0: जीती रहो, वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरी बच्ची को क्या अपनी तरह लोहे का समझा है जो धक्का लगवा रहे हो?
1: मैंने कहा नहीं, वो खुद ब खुद।
0: जा बेटे, गाड़ी ले जा मेरी।
1: नहीं अब्बा, ठीक है, हम चले जाएंगे।
0: मुस्तफा, अब्बा का हर लब
1: सरा खुबर अब्बा।
0: जा बेटे जा। और सुन, इसकी नजर उतार लेना, इसको किसी की नजर ना लगे। जा जा।
1: अब्बा ठीक कह रहे थे, तुम्हें किसी की नजर न लग जाए।

जी हाँ, कभी आपने नारियल को देखा होगा, पूजा में चढ़ाया भी होगा, ऊपर से बड़ा सा सख्त सा होता है और जो अंदर उसका पार्ट होता है उसमें कितनी नरमी होती है। इस दुनिया के कुछ लोग हमको ऐसे ही मिलते हैं जो बाहर से बहुत ही सख्त मिजाज दिखाई पड़ते हैं लेकिन वास्तव में वो अंदर से बहुत ही मुलायम होते हैं। अगर हम इसके बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो अगर आपने मोहब्बतें फिल्म देखी है तो अमिताभ बच्चन, याद कीजिए जब सब कुछ समाप्त हो गया था और वो अपनी शर्त जीतने वाले थे, शाहरुख खान ने कहा कि हाँ सर आप सही कहते हैं, आप जीत गए, लेकिन माफ कीजिएगा सर, जहां से मैं देख रहा हूं वहां से 60 साल का एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी की ओर पीठ किए हुए खड़े हैं। वो नफरत करता है उन दो लोगों से जो दो लोग इसे उस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और ऐश्वर्या राय के साथ साथ शाहरुख खान की छवि उस प्रतिबिंब में दिखाई पड़ती है और वहां नारायण शंकर को झुकना पड़ता है और हम तब जान पाते हैं कि वो वास्तव में बाहर से बहुत ही डिसिप्लिन्ड दिखाई पड़ते थे लेकिन भीतर से उनके साथ कोमलता थी। कुछ इसी बात को शायर ने इस अंदाज में कहा कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हो गई है दिन में घर नहीं देखा, पत्थर पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने कभी छू कर नहीं देखा। जी हाँ, अगर आप किसी इंसान का सच जानना चाहते हैं तो उसका अंतर मन टटोलिए साहब। हो सकता है बाहर से बहुत ही कठोर दिखने वाला व्यक्ति अंदर से बहुत ही नर्म दिल हो, बाहर से इंसान कैसा भी हो साहब, आप बाहर से इंसान का अंदाजा लगा ही नहीं सकते, क्योंकि किसी का शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, तो एक आदमी की सिर्फ एक परिभाषा नहीं होती, उसकी कई सारी परिभाषाएं होती हैं, उसके कई सारे चेहरे होते हैं। एक चेहरा वो हमको दिखाई पड़ता है जो बहुत सख्त है, जी हाँ, लेकिन यकीन मानिए एक उसका वो भी रूप है जिसके अंदर माँ सी ममता है, जिसके अंदर पिता सा वात्सल्य है। हो सकता है वो चेहरा हमारे सामने ना आया हो लेकिन हम अगर टटोलेंगे किसी सख्त व्यक्ति के अंदर तो हमें कहीं ना कहीं वो इंसान ज़रूर मिलेगा। हाँ, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने कभी छू कर नहीं देखा। जी हाँ, सुनाते हैं आपको एक प्यारी सी गजल और फिर मिलते हैं आपसे शार्ट से संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोडा।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 एफएम। बहुत ही प्यारी सी गजल के बाद फिर चलते हैं बशीर बद्र साहब की तरफ। जिंदगी में कुछ रिश्तों के नाम होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। और यकीन मानिए ना, जिनका कोई नाम नहीं होता वो रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। एक पंक्ति है कि मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूं, मैं उसको आंसुओं से लिख रहा हूं कि मेरे बाद कोई पढ़ न पाए। और जहां तक रिश्तों की बात है, तो कभी कभी हम सुनते हैं या देखते हैं या हमारे सुनने में आता है कि हमने उन पर बहुत बिलीव किया, बहुत फेथ किया, और उन्होंने हमारे साथ गलत कर दिया, इसलिए हमने रिश्ते खत्म कर लिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपके जिंदगी में कोई रिश्ता बन गया है तो उसे बना कर रखिए। याद रखिएगा साहब, हर रिश्ता आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा, आपसे कुछ लेकर नहीं जाएगा। या तो वो रिश्ता आपको कोई लेसन देगा, और अगर लेसन नहीं दे पाया तो रिलेशन देगा। जी हाँ, लेसन का मतलब आपको सबक देकर जाएगा कि इस दुनिया में एतबार के काबिल नहीं कोई, एहसास हो रहा है तेरी दोस्ती के बाद। और अगर रिश्ता संबंध देकर गया तो वो जीवन पर्यंत चलने वाला संबंध होता है। जी नहीं तोड़ने चाहिए रिश्ते, बन गए तो फिर बन गए। और मैं तो ये भी कहता हूं कि दिल तोड़कर उसने मेरा कहा मुस्कुराओ, पहले दिल तोड़ा फिर कहा मुस्कुरा दीजिए। दिल तोड़कर उसने मेरा कहा मुस्कुराओ, मैं हंस पड़ा क्योंकि क्योंकि सवाल उसकी खुशी का था। मैंने तो वो खोया जो मेरा था ही नहीं, मैंने तो वो खोया जो मेरा था ही नहीं, लेकिन उसने तो वो खोया जो सिर्फ उसी का था। साहब नुकसान उसका हुआ है, हम क्यों रोएंगे। जी हाँ, बशीर बद्र साहब कहते हैं कि आस होगी ना आसरा होगा, आस होगी ना आसरा होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं तुझे भूल जाऊंगा एक दिन, वक्त सब कुछ बदल चुका होगा। नाम नाम हमने लिखा था आंखों में, नाम हमने लिखा था आंखों में, आंसुओं ने मिटा दिया होगा। दम दम घुटा जा रहा है सीने में, कोई बुझता हुआ दिया होगा। आसमां भर गया परिंदों से, परिंदे मतलब पक्षी, आसमां भर गया परिंदों से, पेड़ कोई हरा गिरा होगा। जी हाँ, अब यहां पर एक बात मुझे

जाती है कि जब एक पेड़ गिरता है साहब, तो हम कहते हैं कि एक पेड़ गिरा, लेकिन नहीं, अगर हम अपने परसेप्शन को बदलें, दृष्टिकोण को बदलें, तो समझ में ये आता है कि एक पेड़ होता है ना साहब, वो सिर्फ एक पेड़ नहीं होता, वो न जाने कितने परिंदों का घर होता है। एक शेर है कि यू देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, शजर कहते हैं पेड़ को, यू देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। एक पेड़ नहीं गिरा साहब, कम से कम सैकड़ों घर उजड़ गए। इसी बात को हम दूसरे ढंग से कहें तो ये कह सकते हैं कि जिस घर में बस एक कमाने वाला हो, मर जाए तो घर का घर मर जाता है। एक व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, एक व्यक्ति समाज के लिए सिर्फ एक व्यक्ति होता है, लेकिन हो सकता है वो किसी व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया हो, हो सकता है आप इस दुनिया के लिए महज एक इंसान हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप एक इंसान के लिए पूरी दुनिया हो, जो आपसे शुरू होती है और आप पर ही खत्म होती है। जी, आसमां भर गया परिंदों से, पेड़ कोई हरा गिरा होगा, पतझड़ों की कहानियां पढ़ना, पतझड़ों की कहानियां पढ़ना, सारा मंजर किताब सा होगा, कितना दुश्वार था सफर उसका, कितना दुश्वार था सफर उसका, वो सरे शाम सो गया होगा। जी हाँ, बसंत आता है तो पतझड़ आता है। हम अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने पीवी शैले को पढ़ा, पर्सी बेसी शैले को, उनकी एक बहुत ही फेमस कविता है ओड टू द वेस्ट विंड, उसकी अंतिम पंक्ति है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर पतझड़ आया है तो बसंत बहुत दूर नहीं हो सकता। जी हाँ, पंक्तियाँ हमको सिखाती हैं गम की अंधेरी रात में, गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी सुबह का इंतजार कर। भी हाँ बिल्कुल, ऐसी कोई रात बनी ही नहीं साहब जिसका सुबह ना हो। और इसलिए कहा जाता है कि आपको दो चीज़ें परिभाषित करती हैं, टू थिंग्स डिफाइन यू, योर पेशेंस व्हेन यू हैव नथिंग। पहली चीज़ें जो इंसान को परिभाषित करती हैं वो होता है उसका धैर्य जब उसके पास कुछ नहीं होता, एंड योर एटीट्यूड व्हेन यू हैव एवरीथिंग। और दूसरा जो आपको परिभाषित करता है वो है आपका एटीट्यूड जब आपके पास सब कुछ होता है, तो मुझको लगता है आपके पास कितना पेशेंस है ये आपके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावशाली बनाता है। जी हाँ, बात करते रहेंगे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है भाई, यहाँ बहुत ही प्यारी सी गजल सुनने का, आइए आपको सुनाते हैं प्यारी सी गजल, और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गन असली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि अब वो वक्त आ चुका है जिस वक्त हमको आपसे लेनी पड़ती है अनुमति। चलते चलते बशीरबद्र साहब की एक गजल आपको और सुनाते हैं कि बेवफा रास्ते बदलते हैं, बेवफा रास्ते बदलते हैं, हम सफर साथ साथ चलते हैं। अब हम इस बात को अगर दूसरे उद्धरण में लें तो जो व्यक्ति आपसे ये पूछता हो कि कितना दुश्वार है रास्ता, अगर कोई कभी पूछे तो हमको तो ऐसा हम सफर चाहिए जैसा मैं कहता हूं कि गमों की दास्तां लिखी है किताब न ले, गमों की दास्तां लिखी है किताब न ले, मेरे गुनाहों का मुझसे हिसाब न ले, मुझे तलाश एक ऐसे हम सफर की है जो सवाल करता चले मगर जवाब न ले। जी हाँ, प्रश्न कीजिए लेकिन उत्तर की उम्मीद मत कीजिए। जी हाँ, बेवफा रास्ते बदलते हैं, हम सफर साथ साथ चलते हैं, किसके आंसू छुपे हैं फूलों में, किसके आंसू छुपे हैं फूलों में, चूमता हूं तो होंठ जलते हैं, उसकी आंखों को गौर से देखो, उसकी आंखों को गौर से देखो, मंदिरों में चराग जलते हैं, दिल में रहकर नजर नहीं आते, दिल में रहकर नजर नहीं आते, ऐसे कांटे कहां निकलते हैं, एक दीवार वो भी शीशे की, एक दीवार वो भी शीशे की, दो बदन पास पास जलते हैं, वो सितारे मेरे सितारे हैं, वो सितारे मेरे सितारे हैं, जो भरी धूप में निकलते हैं, कांच के मोतियों के आंसू के सब खिलौने गजल में ढलते हैं। जी हाँ, जब तक दर्द नहीं होगा और आप जब तक उस दर्द की व्यथा को समझ नहीं पाएंगे, तब तक शायद आप शायरी के उस मकाम तक नहीं पहुंचते। मैं कई बार कहता हूं कि दर्द अगर लफ्जों से निकल जाए, दर्द अगर आंखों से निकल जाए तो इंसान कायल कहलाता है, और अगर लफ्जों से निकल जाए तो शायर कहलाता है। जी हाँ, आइए अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। जी हाँ, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी आपके ही प्यारे से कार्यक्रम बहारे गजल में। जी हाँ, तब तक सुनते रहिए और रेडियो 89.6

हमरे बाग, हमरे बाग और चंदो, हमरे बेटे से हमरे जमीन पे हलचल होगी, हलचल होगी हमरे जमीन पर।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी मेरा फैसला। चंद्रा अपने माँ बाप के घर गई थी। माँ ने नजरें उठाकर भी उसकी ओर नहीं देखा। उसी माँ ने जो कैलेंडर में छपी खूबसूरत लड़की को देखकर कहती थी कि ये मेरी चंद्रा जैसी है। पापा ने चेहरे के सामने से अखबार हटाया भी नहीं। क्या मैं चली जाऊं? साधारण शिष्टाचार भी नहीं निभाया जाएगा, चंद्रा बोली। सब्जी काटती माँ के हाथ रुक गए। अब क्या करने आई हो? मुंह दिखाने लायक भी नहीं रखा। हमारा घर से निकलना भी मुश्किल कर दिया है। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, माँ बोली। कैसे सवाल मम्मी? चंद्रा बोली। यही कि तुम्हारे पति ने तुम्हें निकाल दिया है, तुम्हारा तलाक हो गया है, तुम ऐसी हो तुम वैसी हो, इसीलिए तुम्हारा पति तलाक देने को खुशी से तैयार हो गया। माँ तमतमा सी गई थी। माँ, गलत होने के लिए वक्त किसके पास था? सवेरे से शाम तक नौकरी करती थी, फिर घर का सारा काम करना पड़ता था, तुम तो समझ सकती हो, चंद्रा बोली। पापा ने कहा, तुमने हमारी राय जानने की भी परवाह नहीं की, सब कुछ अपने आप ही कर लिया, चंद्रा बोली। इसीलिए कि आप लोग केवल गलत राय देते, जबकि हर सूरत में मैं राजीव से तलाक लेने का फैसला कर चुकी थी। फैसला जब मेरे और राजीव के बीच में होना था तो आपको किस लिए परेशान करती? मैं नौकरी करते करते तंग आ गई थी। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो अपना घर संभाले, एक दो बच्चे हो। माँ बनने की इच्छा करना किसी औरत के लिए गुनाह तो नहीं है ना, पर राजीव के पास रहकर मैं कुछ नहीं बन सकती थी। मैं सिर्फ रुपया कमाने वाली मशीन बनकर रह गई थी। किस किस को समझाएं, कुछ समझ नहीं आता, माँ बोली। लोगों को कुछ काम तो है नहीं, दूसरों पर उंगली उठाना उनकी आदत है। उनकी अपनी जिंदगी इतनी नीरस है कि वो दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करके अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। खैर, मैंने जो ठीक समझा वही किया। नौकरी राजीव के साथ रहकर भी कर रही थी, अब भी करूंगी और शादी से पहले भी करती थी, चंद्रा बोली। शादी से पहले तुम अपनी खुशी से वक्त काटने के लिए नौकरी करती थी, माँ बोली। दूसरों के कहने के लिए ये बातें अच्छी हैं माँ, आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि मेरी शादी से पहले नौकरी करके लाया हुआ रुपया व्यर्थ नहीं गया, सिर्फ मेरी खुशी पर ही खर्च नहीं हुआ है। मेरा रुपया कम से कम एक भाई की इंजीनियरिंग और दूसरे की डॉक्टरी की फीस देने में काम आया है, चंद्रा का स्वर काफी ऊंचा हो गया था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है मेरा फैसला। अब तक आपने सुना चंद्रा राजीव से अलग हो चुकी थी और उसके इस फैसले से उसके माता पिता नाराज हो रहे थे। अब आगे चंद्रा बोली, मैं आप लोगों को दोष नहीं दे रही क्योंकि हम मध्यम वर्ग के लोग हैं और सच ये है कि हर एक के शासन में मध्यवर्गी ही पैसा है। गरीबों को फायदा हुआ, उनकी मजदूरी बढ़ गई, उनकी तनख्वाह बढ़ गई, पर मध्यवर्ग के लोग बढ़ी हुई महंगाई और बच्चों की शिक्षा के खर्च के बीच पिसते रहे, अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहे। सबने गरीबों की बात की पर कभी किसी ने मध्यम वर्गीय लोगों की बात नहीं की। फिर भी आप लोग ये बात कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ अपनी खुशी के लिए, वक्त काटने के लिए नौकरी की। आपकी तनख्वाह से सिर्फ घर का खर्च आसानी से चलता था और कुछ नहीं। चंद्रा रुक गई और उसने पापा की ओर देखा। उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। माँ ने संतुलन खोकर अपनी उंगली काट ली थी। ये वही मध्य वर्ग है जो देश को एक वक्त भूखे रहकर भी अध्यापक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वैज्ञानिक देता रहा है। देश की आजादी कायम रखने के लिए भी अपने बेटे फौज में ज्यादातर मध्यवर्गीय लोगों ने ही दिए हैं। ये वही पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है जो चुपचाप बिना विद्रोह किए सब कुछ सहता आया है। चंद्रा कुछ और कहे इसके पहले ही पापा ने ताली बजाते हुए कहा, शाबाश, स्पीच अच्छी देती हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें ऊंची शिक्षा दिलाना बेकार नहीं गया। और वो हंसने लगे। माँ के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वातावरण कुछ हल्का होता लगा। नौकरी अब मजबूरन करूंगी अपना पेट भरने के लिए। खैर, जो होना था हो चुका है। तलाक हम दोनों की रजामंदी से हुआ है। हम दोनों ही

समझ चुके थे कि अब साथ रहना नहीं हो सकेगा। मैं जा रही हूँ मम्मी, अगर आप लोग इजाजत देंगे तो कभी कभी देखने आ जाया करूंगी, चंद्रा बोली। चंद्रा की बात सुनकर जैसे मम्मी होश में आ गई। खाना खाकर जाओ, माँ बोली। नहीं मम्मी, बहुत थकी हुई हूँ, घर जाकर आराम करूंगी, चंद्रा बोली और वहां से निकल गई। रास्ते में सरला मिल गई, वो बाजार से सामान खरीद कर लौट रही थी। कार रोककर चंद्रा ने सरला से साथ चलने को कहा। दीदी अभी मुझे और भी सामान लेना है, सरला बोली। फिर ले लेना, चंद्रा बोली और सरला को कार के भीतर घसीट लिया। कार थोड़ी पुरानी है, मेरे चाचा अमेरिका में बस गए थे और अपनी कार मुझे शादी में गिफ्ट कर गए थे। सरला और चंद्रा ने मिलकर एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया था। सरला चंद्रा के ही दफ्तर में कंप्यूटर ऑपरेटर थी। रात को अपने कमरे में पलंग पर लेटते ही मम्मी पापा का व्यवहार याद आ गया। उन लोगों ने तो उसकी जिंदगी को नहीं जिया ना, फिर नाराज होने का भी उन्हें क्या हक है। जिंदगी के बारे में सोचते ही राजीव का चेहरा आंखों के सामने आ गया।

0: 96 FM गोंडा शहर की धड़कन, मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है मेरा फैसला। अब तक आपने सुना चंद्रा ने राजीव से तलाक ले लिया था और अपनी एक ऑफिस कलीग सरला के साथ एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लेकर रहती थी। अब आगे चंद्रा को पुरानी बातें याद आने लगी।
1: क्यों छोड़ी नौकरी? मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी कि मुझे एक कमाने वाली पत्नी मिलने वाली थी। मेरे लिए लड़कियों की क्या कमी थी?
0: राजीव कह रहा था, ऑफिस का काम और ऊपर से घर का काम दोनों में नहीं कर पा रही थी। आपकी हर जरूरत नौकरी करने पर मैं कैसे पूरी कर सकती थी? बहुत थक जाती हूँ, इसलिए इस्तीफा दे आई हूँ। चंद्रा बोली,
1: कल जाकर अपना इस्तीफा वापस ले लेना, तभी मेरे साथ रहना हो सकेगा,
0: राजीव ने कहा था।
1: अच्छी बात है, जैसा आप कहेंगे वही करूंगी,
0: चंद्रा बोली।
1: तुम समझती क्यों नहीं चंद्रा, दो लोगों के कमाने से हम लोग ठीक से रह तो सकते हैं, दूसरों की तरह एक एक चीज के लिए किसी का मुंह तो नहीं देखना पड़ता। तुम जब चाहती हो साड़ियां खरीद लेती हो इसलिए कि हम दोनों कमाते हैं, ऊपर से महंगाई भी कितनी है।
0: राजीव बोला,
1: क्या शराब और सिगरेट के दाम बहुत बढ़ गए हैं?
0: मैंने सिर्फ इसलिए पूछा कि आपको गृहस्थी की और चीजों से तो कोई मतलब रहता नहीं,
1: चंद्रा ने कहा था।
0: ठीक समझती हो,
1: राजीव ने हंसते हुए कहा था।
0: मैं सिर्फ आपकी तनख्वाह में भी रह सकती हूँ अगर आप शराब जुए और दोस्तों के खर्च में कटौती कर दें।
1: चंद्रा को गुस्सा आने लगा था।
0: नहीं, मैं ऐसी ऊब भरी जिंदगी नहीं जी सकता,
1: राजीव ने कहा था।
0: मैं भी फिर इतनी थकान भरी जिंदगी कब तक जी सकूंगी,
1: चंद्रा का जवाब था।
0: सुनो, घर के कामों को जरा आसानी से कर लिया करो, ऑफिस से आने पर अगर देर हो जाए तो किसी होटल में भी खाना खाया जा सकता है। तुम घर के कामों को बेवजह बहुत महत्व दे रही हो,
1: राजीव ने समझाने की कोशिश की थी। हम दोनों ने नौकरी करके कितना रुपया जमा कर लिया है, आमदनी के साथ खर्च भी बढ़ता गया है,
0: चंद्रा का कहना था।
1: जोड़ने को तो सारी उम्र पड़ी है, और फिर क्या मैं ही खर्चा करता हूँ, तुम्हारा कोई खर्चा नहीं है,
0: राजीव अजीब अजीब दलीलें दिया जा रहा था।
1: जरूर है, अन्य औरतों के मुकाबले में ज्यादा भी है, इसलिए कि मुझे नौकरी करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। घर में तो कैसे भी कुछ भी पहन कर रहा जा सकता है,
0: चंद्रा बोली थी।
1: इतनी काबिल औरत हो, तुम्हारे बॉस भी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। एक साधारण औरत की तरह रसोई और घर के कामों में समय बर्बाद करना चाहती हो? कल ही जाकर अपना इस्तीफा वापस ले लेना।
0: बड़े ताज्जुब की बात है कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने मुझसे पूछा तक नहीं,
1: राजीव बोला।
0: राजीव, मैंने निश्चय कर लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, चंद्रा का आखिरी जवाब था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है मेरा फैसला। अब तक आपने सुना चंद्रा का पति राजीव अपनी पूरी कमाई सिर्फ गलत खर्चों में ही उड़ाता था और वो ये चाहता था कि चंद्रा नौकरी ना छोड़े और घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारी यूं ही उठाती रहे। पर एक दिन चंद्रा ने अपना फैसला सुना दिया कि वो अब और उसके साथ रहना नहीं चाहती। अब आगे क्या मतलब, राजीव बोला। मतलब साफ है, हम दोनों अपनी रजामंदी से तलाक का फैसला ले लें तो अच्छा रहेगा, खर्च भी कम होगा। चंद्रा बोली, सवेरे बात करेंगे, इस समय तुम किसी वजह से परेशान हो या थकी हुई हो। राजीव बोला, शादी के बाद से मैंने आराम किया ही कब है, बात सवेरे नहीं अभी होगी क्योंकि मैं कल इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, मेरा निश्चय नहीं बदलेगा। तलाक के बाद तुम फिर आराम से दूसरी कमाने वाली लड़की से शादी कर लेना। चंद्रा बोली, अच्छी बात है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, पर मुझे अपनी बहन की शादी में कम से कम 4-5 लाख रुपए देने होंगे। अगर तुम 4-5 साल रुक जाती तो इतने रुपए हम दोनों मिलकर जमा कर लेते। मैंने सिगरेट और शराब वगैरह का खर्च कम करने का निश्चय कर लिया था। राजीव बोला, नहीं। चंद्रा बोली, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हो गया हूँ और तुम मेरी इतनी सी भी बात नहीं मान रही हो, सिर्फ 4-5 लाख रुपए की ही तो बात है। राजीव बोला, आपको मालूम पड़ गया है कि मेरे बैंक में कितने रुपए हैं, इसीलिए ये सौदेबाजी हो रही है। अगर मुझे आजाद करने की कीमत 5 लाख रुपए है तो मैं दे दूंगी, मेरी दिवंगत दादी के रुपए कुछ काम तो आ जाएंगे। चंद्रा बोली, और फिर एक दिन तलाक भी हो गया और चंद्रा सरला के साथ अलग फ्लैट में रहने लगी। अभी चंद्रा राजीव को लेकर पुरानी बातों में ही उलझी हुई थी कि सरला ने आकर कहा, हर समय क्या सोचती रहती हैं दीदी, आपका खाना टेबल पर रखा है खा लीजिए, मैं बाजार जा रही हूँ, घर में सब्जी कुछ भी नहीं है, सवेरे लंच क्या लेकर जाएंगे। सरला बोली, अरे छोड़ो भी सरला, कैंटीन से लंच कर लेंगे। चंद्रा ने कहा, नहीं नहीं, आपको कैंटीन का खाना अच्छा नहीं लगता, कल लंच में आलू मटर की सब्जी और कचौड़ियां होंगी। क्यों दीदी, ठीक है ना, आपको उड़द की दाल की कचौड़ी

सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं ना, मैंने तो दाल भी पीस कर रख दी है, सरला बोली। सरला, क्यों मेरा इतना ध्यान रखती हो, आज तक तो किसी ने भी नहीं रखा। चंद्रा बोली, दीदी सुन लो, आप ऐसी बात फिर कभी मुंह से मत निकालिएगा। सरला ने प्यार से झिड़कते हुए कहा, कौन से जन्म का रिश्ता निभा रही हो सरला, माँ बाप ने तो इस जन्म का भी नहीं निभाया, तुम इतने सारे रिश्ते कहां से समेट कर बैठ गई हो। चंद्रा बोली, तो जवाब में सरला ने पास आकर उसके गले में बाहें डाल दी। दीदी, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है, फिर ऐसी बात कभी मत कहिएगा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है मेरा फैसला। अब तक आपने सुना चंद्रा ने राजीव से तलाक ले लिया क्योंकि वो अपनी कमाई सिर्फ गलत खर्चों में उड़ाना चाहता था और चाहता था कि चंद्रा यूं ही दोहरी जिम्मेदारियां उठाती रहे। अब आगे, सरला सब्जी लेने चली गई थी, टेबल पर खाना सजा हुआ रखा था, अकेले खाने को दिल ही नहीं कर रहा था, पर सरला का मन रखने के लिए खाना जरूरी था। न जाने क्या हुआ कि खाते खाते एकाएक समीर का ध्यान हो आया। समीर उनकी कंपनी में कानूनी मामलों की देखभाल करने के लिए रखा गया एक वकील था। कम उम्र का था और काफी खूबसूरत भी। एक बार बस स्टॉप पर चंद्रा के बराबर कार रोककर खड़ा हो गया और बैठने की खुशामद करने लगा। चंद्रा ने मना कर दिया। वो बोला, मुझे आपसे कुछ पूछना है। चंद्रा बोली, कहिए। वो बोला, क्या आप कुछ रोमांटिक डायलॉग बता सकते हैं जो एक आदमी किसी औरत से कह सकता है? किस औरत से? चंद्रा बोली, जिससे वो बहुत प्यार करता है और जिससे शादी करना चाहता है। समीर ने डरते डरते कहा, मुझे नहीं मालूम, मैंने इस तरह के डायलॉग कभी नहीं सुने हैं। क्यों नहीं आप जाकर कोई हिंदी फिल्म देख लेते, आपकी समस्या आसानी से हल हो जाएगी, चंद्रा ने कहा और वो आगे बढ़ गई। एक दिन फिर उसने चंद्रा को रोक लिया। चंद्रा जी, इन अंधेरों से निकलकर बाहर आ जाइए, बाहर का आसमान बहुत खुला खुला और साफ है, चारों तरफ रोशनी फैली हुई है, आप बेवजह अंधेरों में भटक रही हैं। उसने कहा, मुझे इन अंधेरों में रहने की आदत है, मेरी ये आंखें रोशनी सह ना सकेंगी। चंद्रा ने भी मजाक में कह दिया, आओ मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इन अंधेरों से बाहर ले आऊंगा। समीर ने गंभीर सा चेहरा बनाते हुए कहा। समीर का डायलॉग सुनकर हंसते हंसते चंद्रा का बुरा हाल हो गया। समीर भी हंसते लगा। ये कौन से फिल्म का डायलॉग है समीर? चंद्रा बोली, बड़ी मुश्किल से याद किए थे चंद्रा, छोड़ो डायलॉग की बात, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। समीर बोला, मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता, जितना जानता हूँ उतना ही काफी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में कभी भी कोई बात नहीं करूंगा। समीर बोला। और जब समीर चंद्रा को अपनी माँ के पास ले गया तो उन्होंने उसे देखते ही अपने सीने से लगा लिया। हर समय समीर बस तेरी ही बातें करता है, मैं तुझे देखने को तरस रही थी। चंद्रा ने माँ जी की गोद में सिर रख दिया। समीर से शादी के बाद फिर एक बार मम्मी पापा से मिलने गई। माँ ने चौंक कर उसकी ओर देखा, जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो। माँ, मैंने शादी कर ली है, समीर हमारी कंपनी में ही कानूनी सलाह देने के लिए नियुक्त एक वकील है, अगर आप लोग इजाजत देंगे तो किसी दिन समीर को आप लोगों से मिलवाने के लिए ले आऊंगी। मम्मी कुछ नहीं बोली। अच्छा मम्मी, अब मैं चलती हूँ, समीर इंतजार कर रहे होंगे, चंद्रा बोली। और वो जैसे ही जाने के लिए पलटी, पीछे से आवाज आई, बेटी खाना खाकर नहीं जाओगी? पापा ने अखबार हटाते हुए कहा और ना जाने कब से उनकी आंखों से दो आंसू टप से कांपते हुए अखबार पर गिर पड़े।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी मेरा फैसला। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। दोस्तों, आज मैं जिसकी बात करने वाली हूँ वो है कौन, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं कि शो क्या है। जी हाँ, शो वही है जिसमें हम उन भूले बिसरे गीतों को याद करते हैं, उन लोगों को याद करते हैं जो कहीं धुंध में खो गए हैं। हाँ, लेकिन ये जो हमारी गायिका है वो अभी पूरी तरह से खोई नहीं है, पर इनके कुछ नगमे ऐसे हैं और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमने शायद सुने भी नहीं हैं, जो हमें शायद पता भी नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि आज मैं जिस कलाकार को आपसे रूबरू कराने वाली हूँ वो है हमारी साउथ की, यानी कि हमारी साउथ म्यूज़िक इंडस्ट्री की गायिका, जिनको कहा जाता है, जिनको जाना जाता है एस जानकी के नाम से। भारत की एक प्रसिद्ध और दिग्गज पार्श्व गायिका जिनका नाम एस जानकी है, जिन्हें व्यापक रूप से दक्षिण भारत की कोकिला कहा जाता है। 65 से अधिक वर्षों के करियर में उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में 48,000 से अधिक गीत गाए हैं। तो आज हम जानेंगे इन्हीं के बारे में और इनके उस कलाकारी के बारे में जिससे साउथ इंडस्ट्री पूरी तरह से ओतप्रोत है। फिलहाल इनके एक नगमे को सुनते हैं और आते हैं फिर इनकी लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां आपसे साझा करनी है। स्टे ट्यून्ड।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं एस जानकी जी के बारे में, जो कि हैं सुर कोकिला, कहाँ की, दक्षिण भारत की। और इनके बारे में बहुत सारी बातें आपसे करनी है, तो चलिए कर ही लेते हैं। एस जानकी जी जब 75 वर्ष की थी तभी उन्हें पद्म भूषण के लिए नामित किया गया था। तब दक्षिण भारत की नाइटिंगेल कही जाने वाली एस जानकी ने कहा कि अगर भारत सरकार उन्हें भारत रत्न नहीं दे सकती तो उन्हें दूसरा कोई सम्मान नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि इतने वर्ष वो इस संगीत जगत को दे चुकी हैं और ऐसी कोई भी विधा या भाषा नहीं है जिसमें उन्होंने गायकी नहीं की या फिर जो उनसे अछूती रही हो। एस जानकी को दक्षिण भारत की लता जी माना जाता है। ये बातें एक टीवी इंटरव्यू के दौरान नेहा पंत और एस जानकी जी के मध्य हुई थी। इन्होंने 1957 से फिल्मों को अपनी आवाज दी। 20,000 से भी अधिक तमिल गीत इनके नाम रहे हैं। साथ ही इन्हें 4 बार नेशनल अवार्ड भी मिला है। दक्षिण भारत की सुर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध एस जानकी का जन्म आंध्र प्रदेश के गंटूर में हुआ था। मात्र 19 साल की आयु से इन्होंने गायन प्रारंभ कर दिया था। चलिए इन्हीं की आवाज में एक और नगमे का आनंद उठाते हैं आपके शो भूले बिसरे गीत के साथ में। आपने ट्यून करके रखा हुआ है 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आपके भूले बिस्तरे शो में एस जानकी जी की। अगर इनके प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक स्थिति की बात करें तो जानकी का जन्म 23 अप्रैल 1938 को ब्रिटिश भारत यानी वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी के गंटूर जिले में रेपाले तालुका के पल्ला पटला में हुआ था। उनके पिता सिस्टला श्री राम मूर्ति एक आयुर्वेदिक चिकित्सक और शिक्षक थे। उन्होंने अपना अधिकांश बचपन सिरसिला में बिताया, जहां उन्हें 9 वर्ष की आयु में मंच पर प्रस्तुति देने का पहला अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने नाद स्वरम विद्वान पैदी स्वामी से संगीत की बुनियादी बातें सीखी। उन्होंने शास्त्रीय संगीत में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया। जानकी का विवाह 1959 में वी राम प्रसाद से हुआ। उन्होंने उनके करियर को प्रोत्साहित किया और उनकी अधिकांश रिकॉर्डिंग के दौरान उनका साथ दिया। 1969 में हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। जानकी की मातृभाषा तेलुगु है, लेकिन वे तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में धारा प्रवाह बोल और लिख सकती हैं। एस जानकी जी ने विभिन्न पीढ़ियों के संगीत निर्देशकों के साथ काम किया है। 1960 के दशक की शुरुआत से ही उन्हें मुख्य रूप से कन्नड़ और मलयालम फिल्मों के संगीतकारों द्वारा रचित गीत दिए गए। हालांकि अपने करियर के आरंभ में उन्होंने तेलुगु और तमिल में कम गाने गाए, लेकिन 1970 के दशक के मध्य उन्होंने दक्षिण भारत की चारों भाषाओं में पार्श्व गायन उद्योग का अपना दबदबा कायम किया।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो गैनेस्ली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर अपना रात के सफर का ये शो जिसका नाम है भूले बिसरे गीत। और आज हम बात कर रहे हैं एस जानकी जी के बारे में। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे इनके करियर के बारे में। अभी तक हमने जो भी बात किया उसके आगे की चर्चा ये है कि जानकी अपने चाचा की सलाह पर चेन्नई चली गई, जहाँ उन्होंने संगीतकार आर सुदर्शनम के साथ एवीएम स्टूडियो में गायिका के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने 1957 में तमिल फिल्म विधीन विलायट्टू से प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म एमएलए में अभिनय किया। उन्होंने अपने पहले वर्ष में 6 भाषाओं में फिल्मी गीत गाए। है ना, कितना अमेजिंग। सोचने की बात है कि अपने करियर के प्रथम वर्ष में ही 6 भाषाओं में गायन करना। फिलहाल इसी को तो कहते हैं कलाकार। उन्होंने 10 कल्पना कल से मलयालम लोरी अम्मा पुविनम को अपने 60 साल के गायन करियर के अंतिम गीत के रूप में चुना और 28 अक्टूबर 2017 को मैसूरु में आयोजित एक संगीत कार्यक्रम के साथ संन्यास ले लिया। चलिए एक और गीत आपको सुनाते हैं, फिर आते हैं इनके गायकी के विधाओं में ही इनका करियर कितना बड़ा रहा है उसे आपको रूबरू कराते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम भूले बिसरे गीत में बात कर रहे हैं उस कलाकार की जो कि कही जाती है साउथ की सुर कोकिला। तो चलिए बात करते हैं फिर से एस जानकी जी की। और एस जानकी जी ने

के लिए और दो टेलीविजन धारावाहिक गीतों के लिए। उनके कुछ एकल भी हैं जैसे नी आसा आदि आसा और इंडे नंदी पुदामू रा वोई बाबा अनुकुंदंता गाजू लम्मा गाजुलू ले ले ले आकाश मेले अंडाला राजे ई पगलू वेडू जैसे और भी कई सारे तमिल गीत को इन्होंने अपने स्वर से सजाया और उसके लिए इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए। अब बात करेंगे कन्नड़ फिल्मों की, लेकिन उससे पहले एक और गीत।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने जिन की आवाज़ सुनी वो है हमारी एस जानकी जी। इनकी कन्नड़ फिल्मों की बात करें तो एस जानकी ने अपने करियर में कन्नड़ में सबसे अधिक गाने गाए हैं। पीबी श्रीनिवास, एसपी बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर राजकुमार जैसे दिग्गजों के साथ उनके एकल और युगल गीत सदाबहार हिट माने जाते हैं।

जानकी ने अपना पहला कन्नड़ गीत 1957 में गाया था। 60 के दशक की शुरुआत तक उन्होंने कई प्रमुख संगीतकारों के साथ काम करना शुरू कर दिया था। 1970 और 80 के दशक में वे कन्नड़ फिल्मों में नंबर एक महिला पार्श्व गायिका बनी रहीं। जी के वेंकटेश्वर, राजन नागेंद्र से लेकर हमस लेखा तक अधिकांश संगीत निर्देशकों ने उन्हें अपनी शीर्ष रचनाएं दी। उन्होंने पीबी श्रीनिवासन, एसपी बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर राजकुमार के साथ रिकॉर्ड संख्या में युगल गीत गाए हैं। उन्हें 2014 में राज्योत्सव प्रशस्ति से सम्मानित किया गया था। कन्नड़ फिल्म और संगीत में उनके अपार योगदान के लिए उन्हें मैसूर विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। कन्नड़ सिनेमा में उनके कुछ शीर्ष हिट एकल भी हैं, जैसे शिव शिव एंद्रा, पूजी सालिंडे, गगनवु एलो, ओम्मे निन्ननु, नंबाइड निन्ना जो कि संध्या राग में गाया गया है, बरेंदे नीनु, दीपवनु निन्नड़े जैसे और भी कई सारे गीतों को इन्होंने अपने सुरों से सजाया। चलिए चलते हैं फिर इन्हीं के एक और गीत की ओर।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं एस जानकी जी की। चलिए फिर जानते हैं इनकी कलाकारी के क्षेत्रों के बारे में। बहुत ही लंबी कतार है, आप गिनते गिनते थक जाएंगे और हम आपको बताते बताते। पर हाँ, कुछ चुनिंदा बातें तो हम आपसे ज़रूर साझा करना चाहेंगे, जिसमें अब हम बात करेंगे मलयालम फिल्म की। जानकी जी ने पुणे में 2007 में अपना पहला मलयालम गीत 1957 में गाया था। उन्होंने सही उच्चारण और भाषा की बारीकियों का अभ्यास किया, जिससे वे 1970 के दशक से लेकर 80 के दशक के मध्य तक उद्योग की सबसे लोकप्रिय गायिका बन गईं। वे वी दक्षिणमूर्ति, एमएस बाबूराज, श्याम एमबी श्रीनिवासन, एटी उमर और सलील चौधरी जैसे कई लोकप्रिय संगीतकारों की चहेती थीं। जानकी ने 1960 के दशक की शुरुआत से लेकर 80 के दशक के मध्य तक हजारों गाने गाए। उन्हें 1970 में सर्वश्रेष्ठ गायिका के लिए पहला केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला और अगले 15 वर्षों तक लगभग हर साल यही पुरस्कार वे जीतती रहीं। मलयालम फिल्मों में कुछ हिट एकल इनके नाम हैं, जैसे कि थाली रिट्टा, सूर्यकांती, केशादी पदनम, ओरु कोचु स्वप्रथिन और ऐसे ही बहुत सारे गीत। इसके अलावा इन्होंने तमिल फिल्मों में भी अपनी आवाज़ दी है। जानकी ने अपना पहला तमिल गीत 1957 में ही गाया था। बताया नहीं मैंने आपको कि अपने करियर के पहले ही साल में इन्होंने 6 भाषाओं में गायन किया। तो चलिए जानते हैं और इनके बारे में। फिल्म कोंजुम सिलंगई का गीत सिंगार वेलने देवा ने उन्हें तमिल सिनेमा में प्रसिद्धि दिलाई। एमएस विश्वनाथन ने 60 के दशक और 70 के दशक के आरंभिक वर्षों में उन्हें हर साल कई हिट गाने दिए। फिल्म अवलु केंद्रु ओर मनम, जो कि 1971 का आया हुआ फिल्म है, में एक गीत था जिसके बोल हैं उन्नी दत्थिल।